आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।
1: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527 88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527 88291 या 95238 74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: अभी बज गई बात सुबह के 6। आज 6 बजते ही राव रेडियो दोस्त नेपाली हाजिर बड़ी वो प्रोग्राम लेके जौन हाँ आपन दे आपन देखभाल। तो सबसे पहले स्वीकार करी आपन दोस्त दीपाली के स्नेह भरल भोजपुरिया नमस्कार। दोस्त लोग रउआ तो जानत ही बानी कि ये प्रोग्राम में हम बतावेनी ढेर सारा हेल्थ टिप्स और ब्यूटी टिप्स। चली बिना देरी के लिए शुभ आरंभ कर लियो अपना कार्यक्रम के, जिमे हम बताएं सबसे पहले असरकारी कुछ घरेलू उपचार। जैसे जोड़ के दर्द में एक ग्लास गर्म पानी में नींबू निचोड़ के दिन में 8-10 बार पी, ऐसे जोड़ में आराम मिले। जोड़ पर नीम के तेल के हल्का मालिश करे पर आराम मिलेला। लौकी के गुद्दा तलवा पर मले से ओकर जलन शांत होला। शरीर में कोनो भी भाग या हाथ पैर में जलन होके पर तरबूज के छिलका के सफेद भाग में कपूर और चंदन मिला के लेप करे से जलन शांत होला। सरसों के तेल में बराबर के पानी मिला के फेट ली व घमौरी पर लगाई, ऐसे शीघ्र आराम मिली। सिर दर्द होके पर गुनगुना पानी में अदरक व नींबू के रस व थोड़ा सा नमक मिला के पिए से आराम मिलेला। बच्चा के काली खांसी ठीक ना होके पर बांस के एक टुकड़ा के जला के ओ भस्म के शहद में मिला के 3-4 बार चाटे से बच्चा की खांसी 3-4 दिन में ठीक हो जाए। तो दोस्त लोग ई तरह असरकारी कुछ घरेलू नुस्खा। अब चलिए हम बता दें कुछ लाभकारी घरेलू नुस्खा। जख्म पर पड़ल कीड़ा के नाश करे खातिर हींग पाउडर बुरक दी। दाढ़ दर्द खातिर हींग रुई के फाहा में लपेट के दर्द के जगह रखी। शीत ज्वर में ककड़ी खा के छाछ सेवन करी। शराब के बेहोशी में ककड़ी सेवन कराई। अरहर के पत्ता के रस पिलावे से अफीम के नशा कम हो जाला। छटाक अरहर दाल पानी में उबाल के ओकर पानी पिलावे से भांग के नशा कम हो जाला। अंजवाइन के कुछ देर चबावे के बाद 1 कप गर्म पानी पी लेवे से पेट दर्द से छुटकारा मिल जाला। नींद ना आवे के बीमारी में ज्यादा मात्रा में दही खाई या एक ग्लास पानी में दो छोटा चम्मच शहद मिला के पियल लाभप्रद होला। दाढ़ में दर्द होके तल लौंग के तेल लगावे से दर्द समाप्त होला। तेज सिर दर्द होके पर पिपरमेंट गर्म करके सिर पर लगावे से आराम मिलेला। हिचकी आवे पर तुलसी व शक्कर खा के पानी पिए से लाभ होला। मुंह में छाला होके पर नारियल खाए से छाला शीघ्र ठीक हो जाला। भूख ना लागत होके तसाफ के चूर्ण में शहद मिला के दिन में दो बार एक एक चम्मच खाएं। मसूड़ा फूल जाए पर सरसों के तेल में नमक मिला के आहिस्ता आहिस्ता मसूड़ा पर मसाज करे से तकलीफ खत्म हो जाला। बिना दूध व शक्कर के अदरक वाला चाय पिए से पेट दर्द ठीक होला। तो दोस्त लोग, अब हम बतावे जात पानी कुछ आसान उपाय सेहत बनावे खातिर। खान पान के गड़बड़ आदत, कसरत ना कैल और तनाव के अलावा धूम्रपान एवं शराब पिए से रक्तचाप बढ़ल, उच्च कोलेस्ट्रॉल और मधुमेह के खतरा युवा अवस्था में ही बढ़ रहल बा। जैसे दिल के दौरा पड़े के आशंका पैदा होला, रवा जीवन शैली में बदलाव लाके ये जोखिम के कम कर सकता नहीं। जैसे में अर्जुन के पेड़ के छाल भी धमनी में अवरोध दूर करे और रक्तचाप के नियंत्रित करे में काफी उपयोगी सिद्ध भइल बा। छाल के दो तरह से लिहल जाला, एकर 5 ग्राम चूर्ण खाली पेट ली या 10 ग्राम के 250 ग्राम दूध और 250 ग्राम पानी में खाली पेट रोज सुबह ली। स्वाद खातिर मिश्री या खंड मिलावल जा सकेला। ये मिक्सचर में शहद ना मिलाई, काहे कि एमे सैचुरेटेड फैट होला। और एक अन्य रसायन दिल के कमजोर करेला। अर्जुन के छाल से गर्मी निकलेला जबकि शक्कर से ठंडक आवेला। ये तरह दोनों के कोनो मेल नहीं के। ई प्राकृतिक उपचार के अलावा सेहतमंद जीवन जिए खातिर नियमित परहेज से रहल, नियमित शारीरिक व्यायाम कइल और डॉक्टर के नियम पूर्वक जांच करावे के भी सलाह भी दिहल जाला। हमेशा याद रखें कि दिल के दौरा पड़ल चिकित्सकीय आपातकालीन स्थिति होला। सीना में दर्द के शिकायत के अनदेखा ना करी और ना ही खुद से दवा उपचार ली, बल्कि हृदय के उपचार कोनो विशेषज्ञ के देखरेख में होके के चाहिए। तो दोस्तों, चलिए अब जानल जाओ खुजली के घरेलू इलाज। त्वचा में खुजली चले, दाद हो जाए, फोड़ा फुंसी हो जाए पर खुजला खुजला के हाल बेहाल हो जाला और लोग के सामने शर्म भी आवेला। यदि रुआ कोनो क्रीम या दवा लगावे के नहीं चाहत या लगावे पर भी आराम नहीं के होत, तो घर पर ही ई चर्म रोग नाशक तेल बना के लगाई, इसे ई व्याधि दूर हो जाये। जैसे में तेल बनावे के विधि ई है कि नीम के छाल, चिरैता, हल्दी, लाल चंदन, हरड़, बहेड़ा, आंवला और अडूसा के पत्ता सबके समान मात्रा में ली। तिल्ली के तेल आवश्यक मात्रा में। ये सब आठों द्रव के 5-6 घंटा तक पानी में भिंगा के निकाल ली और पीस के कल्क बना ली। चार गुना मात्रा में तिल के तेल और तिल से चार गुना मात्रा में पानी लेके मिला के एगो बड़ा बर्तन में डाल दी और एकरा के मंद आंच पर इतना देर तक उबाली कि पानी जल जाए, सिर्फ तेल बचे। ये तेल के शीशी में भर के रख ली और जहाँ भी खुजली चलत होके दाद होके वहाँ ये पूरा शरीर पर ये तेल के मालिश करी। ये तेल चमत्कारी प्रभाव करेला, लाभ होके तक ये मालिश जारी रखी। मालिश स्नान से पहले या सोते समय करी और एकर चमत्कार देखी। तो दोस्त लोग, अब उस समय आ गई बा जिमे दीपाली ली है रोज से जाए के अनुमति। तो रखी रो अपन सेहत के ख्याल, रही खुशहाल, आजमाई ई सब अचूक नुस्खा के। आज सुनत रही रेडियो रिमझिम 90.4। नमस्कार।
4: तो भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
5: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
4: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में।
6: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शाटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
7: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
8: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
9: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
10: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
11: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94395651 या 97-0-97-06-575।
12: मैंने धरती को देखा है, मैंने बदलते समय को देखा है, हर पल बदलती नियत, चेहरे और लोग देखें, क्योंकि मैं वो आंख हूं जो कभी नहीं झपके। मैं सदा ऊपर तनी हुई वो छत हूं जो कभी नहीं झुकी। मैं आकाश हूं और आज मैं आपको एक कहानी सुनाने आया हूं, और वो कहानी है महाभारत। महाभारत जो द्वापर में भी हुई और आज कलयुग में भी होती है, आपके भीतर हर पल, जिसके सारे पात्र आप में से हर एक के अंदर जीते हैं। जब आप सच को नहीं जान पाते तो आप धृतराष्ट्र हैं, और जब सच को जानकर भी आंखें बंद कर लेते हैं तो गांधारी। जब आप रिवेंज की आग में अपना सारा जीवन झोंक देने को तैयार हो तो आप शकुनी हैं, और जब आप ये जानते हुए भी कि आप गलत आदमी का साथ दे रहे हैं और अपने आप को नहीं रोकते, तब आप कर्ण हैं। जब आपकी अच्छाई आपका अहंकार बन जाए तब आप भीष्म हैं। अर्जुन भी हैं आप, और वो कृष्ण भी जो आपको रास्ता दिखाएगा। पर क्या आपने कभी ये समझने की कोशिश की है कि आपके भीतर का दुर्योधन कब सर उठाता है और कब आपके कदम टकमगाते हैं?
13: महीदेव, महीदेव, ध्यान से सुन लो महीदेव, आज तक ये दुर्योधन तुम्हारे द्वार पर सर पटकता रहा, रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, और तुम मंदिर के इस ऊंचे सिंहासन पर बैठे मुस्कुराते रहे, पर आज के बाद ये फिर कभी तुम्हारे द्वार पर पैर नहीं रखेगा महीदेव, नहीं गिड़गिड़ाएगा तुम्हारे सामने। बस बस बहुत कर ली तुम्हारी पूजा, बहुत कर ली तुम्हारी वंदना, तुम्हारी चाकरी, और इसके बदले में तुमने मुझे क्या दिया? हाँ, पराजय, अपमान, कुंठा, इंद्रप्रस्थ में हुए अपमान के बाद दुर्योधन अपना भाग्य स्वयं लिखेगा महीदेव, अपनी भुजाओं के बल से लिखेगा, क्योंकि अब मुझे तुम्हारी भक्ति से ज्यादा अपनी शक्ति पर विश्वास है। अब उन तुच्छ पांडवों का साहस नहीं होगा कि वो दुर्योधन का उपहास कर सके। आज तुम्हारे सामने इस वेदारक के शंखनाद से उन पांडवों का अंत करने का प्रण लेता है ये दुर्योधन।
14: पांडे, पांडे, लोमड़ी सा सोचो, बाघ सा नोचो। ऐसे तो प्रतिशोध की आग तुम्हें ही जला कर राख कर देगी।
13: नहीं मामो, नहीं। जब तक मैं पांडवों को खाक होते नहीं देख लूं, तब तक ये आग ठंडी नहीं होगी मामा।
14: शव खोदेंगे तो दुर्गंध उठेगी, इसलिए कहता हूं कि मिट्टी डालो, मिट्टी डालो।
13: मिट्टी डालो, तुम्हारे कलेजे को भी पांचाली की हंसी ने ऐसे ही छीला होता ना मामा?
14: छीला है भांजे, मेरे हृदय को भी छीला है उसकी खिलखिलाहट ने, पर क्रोध में किया फैसला सदा पछतावा देता है।

0: विद्वानों शास्त्रों का ज्ञातन ना सही, पर कम से कम अपनी बर्बादी की आहट तो समझ ही सकता है।
1: इंद्रप्रस्थ के ऊंचे सिंहासन पर बैठकर ना तो धर्मराज को उनके भाई दिखते होंगे और ना ये पांचाली। और दिखे भी क्यों, जब धर्मराज स्वयं अपने सर्वनाश का संकल्प लिए बैठे हों, तो तुम्हारे हमारे जैसे साधारण लोगों की बात कैसे समझ में आएगी उन्हें भी? हम जैसे आम जनों को क्या समझ राजनीति की? आज उनकी शक्ति इतनी बढ़ गई है कि काशी, पांचाल, द्वारका और मगध जैसे विशाल साम्राज्य उनके पीछे खड़े हैं। ऐसे में हम तो उन्हें बहुत बौने लगते होंगे ना?
2: भीम, पांचाली, ये क्या हो गया तुम्हें? ये क्या बोल रहे हो तुम? तुम तो मेरे अपने हो। भले ये सारा संसार मेरे निर्णय पर संदेह करे, पर कम से कम तुम तो मुझे समझते। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि मैं चाहता हूं कि मैं किसी तरह महामुनि व्यास की भविष्यवाणी को झूठा सिद्ध करके कुरुवंश के बीच इस बैर को मिटा सकूं। तुम सभी तो वहीं थे जब इंद्रप्रस्थ से प्रस्थान करते समय महामुनि व्यास ने कहा था कि महासमर का केंद्र मैं ही रहूंगा, और यदि मुझे केंद्र में रहना ही है तो मैं आगे बढ़कर उसका सामना क्यों ना करूं।
1: पर केशव ने भी तो कुछ कहा था, और केशव के वो वचन इस संसार का अंतिम सत्य है।
2: याद है पंचाली, मुझे उनके एक एक शब्द याद है।
3: कृष्ण की बात याद रखना धर्मराज, यदि तुम्हारे शत्रु का नाश हो सकता है तो तुम्हारा भी नाश हो सकता है। नियति नहीं है पूर्व निर्धारित, मानव निर्णय उसे हर क्षण बनाता मिटाता है। ये सृष्टि भाग्य नहीं कर्म से चलती है। इस नश्वर संसार का अंतिम सत्य केवल तुम्हारा कर्म है। तुम्हारा वो कर्म इस संसार का वो अंतिम सत्य है जो अविनाशी है, जो अजर है, जो अमर है।
2: और मैं भी बस अपना कर्म ही कर रहा हूं, क्योंकि मैं इस अनहोनी को रोकना चाहता हूं।
1: परंतु केशव ने ये तो नहीं कहा था कि जानबूझकर अपने विनाश को बुलाना भी कर्म है?
4: महाराज, क्या हुआ? महाराज, आप बड़े अशांत लग रहे हैं।
5: आश्चर्य है विदुर, आश्चर्य है कि जन्म से अंधा ये धृतराष्ट्र ऐसा स्वप्न कैसे देख सकता है।
4: पर आपने ऐसा क्या देख लिया महाराज?
6: बहुत सारे योद्धा ढोल नगाड़ों की थाप पर बेसुध नृत्य कर रहे थे। उन्होंने अपने सिरों को मशाल बना रखा था विदुर। उनके मुंड आग की लपटों से घिरे हुए थे, पर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि उन्हें थोड़ी भी पीड़ा हो रही है, बल्कि वो तो आनंद से नाच रहे थे। बताओ विदुर, बताओ क्या अर्थ हो सकता है इस स्वप्न का? हा?
4: मुझे आज्ञा दीजिए महाराज, आज तक मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला जो आपको अप्रिय लगे।
6: मैं अपने इस स्वप्न का अर्थ जानना चाहता हूं विदुर।
4: मुझे विवश ना करें महाराज।
6: रुको विदुर, तुम्हें बताना होगा, ये मेरा आदेश है।
4: तो सुनिए महाराज, ये द्यूत कुरुवंश का नाश कर देगा। आपने द्यूत का निमंत्रण पांडवों को नहीं काल को भेजा है, काल को।
6: विदुर,
4: आपके इस निमंत्रण की आंधी सारे कुरुवंश को उड़ाकर ले जाएगी महाराज, और आपका ये स्वप्न उसी काल के आगमन की चेतावनी थी।
6: तो तुम मुझे ये अब बता रहे हो जब सब कुछ हाथ से निकल चुका?
4: यदि मैं निमंत्रण भेजने से इनकार कर देता महाराज, तो क्या आप दुर्योधन को ना कह पाते?
7: यदि तुम्हें ज्ञात था युधिष्ठिर कि दुर्योधन तुम्हारा भला नहीं सोचने वाला, तो तुमने द्यूत का निमंत्रण स्वीकार ही क्यों किया? क्यों चले आए यहां? जबकि ये तुम भी जानते हो कि जब तक दुर्योधन तुम्हारी एक एक वस्तु छीन कर तुम्हें श्रीहीन नहीं कर देता, वो चैन से नहीं बैठेगा।

0: पितामह, यदि मैं इस निमंत्रण को अस्वीकार कर देता तो दुर्योधन हमारे विरुद्ध किसी भी बहाने से युद्ध की घोषणा कर देता। इस स्थिति से तो ये द्यूत ही सही है।
1: तुम जाओ युधिष्ठिर, जाओ। द्यूत सभा में तुम्हारी प्रतीक्षा हो रही है, पर ये याद रखना कि तुम उसे झुठलाने की कोशिश कर रहे हो जो ईश्वर पहले से ही तय करके बैठा है।
2: महाराज धृतराष्ट्र, पितामह, भीष्म और सभा सदों, मैं कुमार दुर्योधन और कुलराज की ओर से आप सबका स्वागत करता हूं। मैं पांडवों का आभारी हूं जिन्होंने आपसी सद्भाव के लिए कुमार दुर्योधन के निमंत्रण को स्वीकार किया। मैंने भांजे दुर्योधन को समझाया कि पांडवों और कौरवों के साथ होने में ही हम सबका हित है। अब मैं महाराज की ओर से प्रेम और सद्भाव के इस आयोजन को आरंभ करने की घोषणा करता हूं। पांडव श्रेष्ठ, आप सभी के स्वागत में भांजे दुर्योधन ने दरबार में नृत्य संगीत की सुंदर व्यवस्था की है, आनंद लीजिए।
3: तो भैया, मामला ऐसा रहा कि देर रात तक नाच गाना बजता रहा, सभा चलती रही। जहां पांडवों का मन कभी अनुभव करता था कि शायद दुर्योधन बिगड़े हुए रिश्तों को सुधारने की कोशिश कर रहा है, कई बार उन्हें यह भी लगता कि दुर्योधन और शकुनी के मुंह से टपकती है इतनी मिठास कहीं उन्हें किसी जाल में तो नहीं फंसा रहे। उधर पिछली रात के बुरे सपनों ने इस रात भी पांचाली का पीछा नहीं छोड़ा। अब सपने कहां पीछा छोड़ते हैं। सुबह हुई, पांडवों को बड़े सम्मान के साथ दरबार में लाया गया।
4: भैया भीम, देखिए कितनी विशाल चौसर तैयार की है इन्होंने।
5: ऐसे प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं है सहदेव, ये बात लिख कर रख लो कि हमारी बर्बादी का प्रपंच इसी चौसर पर रचा जाना है।
6: अरे भैया भी, आइए आइए, पधारिए, यहाँ इस आसन पर बैठिए, ये विशेष आपके लिए बनाई है मजबूत लकड़ियों से। प्रणाम बड़े भैया युधिष्ठिर, प्रणाम। अच्छा, पांडवों की ओर से तो आप ही चौसर खेलेंगे ना, तो आप यहाँ आइए मध्य स्थान पर फिराजी।
0: अवश्य, तुम्हारी ओर से कौन खेलेगा दुर्योधन?
6: अब चौसर के खेल में तो आपकी कोई बराबरी कर ही नहीं सकता भैया, तो मेरी तो बिसाती कहाँ है। ऐसे एक तरफा खेल में किसी को आनंद नहीं आएगा ना, इसलिए मेरी ओर से मेरे प्रिय मामा शकुनी खेलेंगे।
0: तो चलिए मामा, पहली चाल आप चलिए।
2: तुम कहते हो तो मैं ही चलता हूं। युधिष्ठिर, दाव पर क्या लगाते हो?
0: 100 घोड़े।
6: तो मामा, मेरी ओर से भी 100 घोड़े।
2: तो 100 घोड़ों के लिए आ जा। 6। हाँ, 2। पासे बेईमान, बेच दिया ईमान।
0: तो मैं 6 लाकर दिखाता हूं मामा। 6।
4: वाह वाह भैया वाह, अद्भुत भैया अद्भुत।
7: देखा भीम, तुम बड़े भैया को साधारण खिलाड़ी मान रहे थे ना, अब देखो उन्होंने पहली बाजी ही जीत के साथ शुरू की है।
3: तो भैया, जब सफलता आसानी से हाथ लगती दिखे तो समझ जाओ कि सामने बहुत बड़ा संकट आने वाला है, क्योंकि जीवन के सागर में मोती आसानी से नहीं मिलते, गोते तो लगाने ही पड़ते हैं। भैया, क्या कभी आपके कदम भी शुरुआती सफलता में बहके हैं? ठीक है, किसी को हमेशा संदेह से नहीं देखना चाहिए, लेकिन सावधान रहना हमें संकट से बचने के रास्ते देता है। एक बात बताते हैं आपको, वैसे भीम खामखा परेशान नहीं था भैया, वो दुर्योधन की बदनीयति जानता था, लेकिन फिर भी उसने युधिष्ठिर को इस जाल में फंसने से रोका नहीं। अब ये सवाल तो बनता है, इस सवाल का क्या है, मन हुआ बन गया, जवाब जवाब भी बन ही जाएगा। सुनते रहिए महाभारत।

0: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा, मिला ही नहीं
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
3: जी हाँ, कमल श्री। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
3: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
4: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
5: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
6: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
4: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
6: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
4: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
6: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
4: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
6: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
4: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।

0: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
1: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
0: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
1: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
0: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
3: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
3: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम इकडेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
3: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
4: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
5: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
4: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
5: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
6: दादी, आप घुटने पकड़ कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
7: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
6: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
7: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
6: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
7: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
6: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
8: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-88-8697।

0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
0: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

0: गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।

0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
3: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
4: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
3: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
4: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
3: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
4: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
3: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
5: नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल, पहले मुख्य हालचाल। कृषि जन कल्याण संवाद का हुआ शुभारंभ, राष्ट्रीय लोक अदालत का हुआ भव्य आयोजन, एक प्रखंड एक उत्पाद को लेकर किसानों को किया गया प्रेरित, सड़क हादसे में एक पिकअप चालक की मौके पर हो गई मौत, अलग अलग मामलों में आज कई लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार और कई आरोपियों को कोर्ट ने सुनाई सजा। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र, अब हालचाल विस्तार से। आज शहर के अम्बेडकर भवन में प्रभारी मंत्री सह बिहार सरकार के कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा के द्वारा किसानों के साथ कृषि जन कल्याण संवाद का शुभारंभ किया गया। इस दौरान मंत्री महोदय ने स्वरोजगार से रोजगार का वातावरण बनाने के लिए लोगों को प्रेरित किया, किसानों को बिचौलिए से मुक्त कर सीधे बाजार से जोड़ने की बात कही, भविष्य में पीढ़ियों के लिए स्वस्थ कृषि विरासत जरूरी बताते हुए किसानों को जागरूक किया, अतिक्रमण के कारण प्रभावित खेती पर अंकुश लगाने और अतिक्रमण मुक्त कृषि व्यवस्था को सुदृढ़ करने की बात कही। कृषि मंत्री ने किसानों को कृषि के क्षेत्र में बेहतर काम करते हुए प्राकृतिक खेती को अपनाने और अनुदान का लाभ लेने तथा रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण पर बल देते हुए किसानों को जागरूक किया। इस दौरान कृषि विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, सचिव, उप सचिव इत्यादि उपस्थित रहे। सभी लोगों ने किसानों की समस्याओं और सुझावों को भी सुना, कई का ऑन द स्पॉट निवारण भी किया गया। इस जन कल्याण संवाद कार्यक्रम में गोपालगंज के सांसद, विधान पार्षद, बिहार सरकार के उप मुख्य सचेतक जनक राम, जिलाधिकारी, बीस सूत्री के उपाध्यक्ष संदीप गिरी और बीस सूत्री के सदस्य प्रमोद पटेल सहित तमाम लोग मौजूद रहे। आज व्यवहार न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया था। इसका उद्घाटन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक सहित तमाम गणमान्य लोगों ने किया। इस दौरान भारी संख्या में लोग अपनी फरियाद को लेकर राष्ट्रीय लोक अदालत में आए थे। अलग अलग बेंचों पर अलग अलग मामलों की सुनवाई की गई। पूरे दिन भीड़ भाड़ लगी रही और लोग राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने मामलों को सुलझाने के लिए आते रहे। आज कृषि मंत्री ने कहा कि कृषि को केवल जीविका का साधन नहीं बल्कि स्वरोजगार और रोजगार सृजन का सशक्त माध्यम बनाना आवश्यक है। किसानों को आधुनिक कृषि तकनीक, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन एवं बाजार की बेहतर सुविधाओं से जोड़कर कृषि आधारित रोजगार के नए अवसर विकसित किए जाने पर उन्होंने विशेष जोर दिया। उन्होंने किसानों को कहा कि बिचौलियों से मुक्त होकर सीधे बाजार में जाकर अपने फसल को बेचें। सरकार भी इसमें सहायता करेगी। किसान अपने उत्पाद का उचित मूल्य प्राप्त करें इसके लिए बाजार तक सीधी पहुंच, कृषि उत्पादों के मूल्य संवर्धन तथा स्थानीय स्तर पर प्रसंस्करण को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। उन्होंने एक प्रखंड एक उत्पाद को प्रोत्साहित करने और उसे पहचान दिलाने के लिए उपस्थित किसानों से आह्वान किया। कृषि मंत्री ने भविष्य की पीढ़ियों के लिए स्वास्थ्य कृषि विरासत तैयार करने पर बल देते हुए प्राकृतिक एवं टिकाऊ कृषि पद्धतियों को अपनाने पर बल दिया। उन्होंने किसानों को प्राकृतिक खेती की ओर प्रोत्साहित करते हुए कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं एवं अनुदान का लाभ लेने तथा रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण प्राप्त करने की अपील की। कृषि मंत्री ने स्पष्ट किया कि कृषि भूमि का संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। अतिक्रमण के कारण खेती प्रभावित होने की स्थिति पर प्रभावी अंकुश लगाया जाएगा तथा कृषि भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने की दिशा में भी आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। कृषि योग्य भूमि का संरक्षण किसानों को और उनके आने वाली पीढ़ियों के लिए हित में आवश्यक है। आज कई अलग अलग मामलों में पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया तो कुछ लोगों को कोर्ट से सजा भी दी गई। एक मामला कुचायकोट से सामने आया जहां स्मैक जैसे मादक पदार्थ के साथ एक महिला को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसके पास से नगदी और स्मैक बरामद हुआ है। बताया जा रहा है कि पुलिस के अनुसार महिला स्मैक की बिक्री कर रही थी, इसी दौरान पुलिस ने इसे पकड़ लिया। पूछताछ में जावेद मंसूरी से मादक पदार्थ खरीदने की बात सामने आई है। पुलिस अब इसमें कांड दर्ज कर महिला को हिरासत में लेने के बाद आगे की कार्रवाई कर रही है। आज गोपालगंज के बंजारी थामे बाईपास पर एक सुबह में भीषण सड़क हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि एक मिनी पिकअप की ट्रक से भीषण टक्कर हो गई जिसमें पिकअप चालक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक मीरगंज थाना क्षेत्र के जिगना जगन्नाथ पंचायत के धोबई टोला गांव के रहने वाले 22 वर्षीय चंदन कुमार शाह थे। बताया जा रहा है कि चंदन ने कुछ ही दिन पहले लव मैरिज शादी की थी। उनकी पत्नी लगभग 5 महीनों की गर्भवती है। घटना बाद से इनके परिवारजनों में कोहराम मचा है। पिता जगदेव शाह का रो रो कर बुरा हाल है। पत्नी बेसुध पड़ गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया। बताया जा रहा है कि ट्रक को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। चालक मौके से फरार हो गया। ट्रक को कब्जे में लेकर अब जांच पड़ताल करते हुए आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ट्रक खड़ी थी, मिनी पिकअप चालक ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दिया। इस हादसे में पिकअप चालक की घटना स्थल पर ही मौत हो गई थी। जैसे ही टक्कर हुई तो भारी संख्या में लोग मौके पर पहुंच गए। पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। इधर कटिया थाना की पुलिस ने सिधरिया पुल के पास से 100 ग्राम गांजा जैसे मादक पदार्थ के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी कटिया के नटवा गांव का सीता सिंह बताया जा रहा है। पुलिस को देखकर यह भागने लगा। पुलिस ने खदेड़ कर इसको पकड़ा। इसके झोले की तलाशी ली गई तो उसमें से गांजा जैसा मादक पदार्थ मिला। अब पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर इस पर आगे NDPS एक्ट में कार्रवाई कर रही है और इसके मादक पदार्थों से जुड़े हुए दूसरे लोगों की भी पहचान की जा रही है। माझा थाना की पुलिस ने हत्या के प्रयास में फरार चल रहे एक प्राथमिकी अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने आरोपी मंजीत कुमार सिंह पिता श्री राम सिंह साकिन श्री रामपुर थाना माझागढ़ को गिरफ्तार किया है। अब इसे पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। बिशंभरपुर थाना की पुलिस ने 648 लीटर देशी शराब बरामद किया। एक पिकअप गाड़ी को जब्त की गई। इसमें बताया जा रहा है कि पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बिशंभरपुर के दियारा क्षेत्र में विजयपुर इलाके में छापेमारी की जहां बबलू शाह के खेत के सामने पक्की सड़क पर पुलिस ने वाहन जांच करते हुए एक महिंद्रा बोलेरो पिकअप को रोकने का प्रयास किया। वाहन चालक वाहन छोड़कर भागने लगा। पुलिस द्वारा पीछा करने का प्रयास किया गया परंतु अंधेरे का लाभ उठाकर वाहन चालक गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने पिकअप की तलाशी ली तो 648 लीटर देशी शराब मिली जिसके बाद गाड़ी और शराब को जब्त किया गया। उत्पाद विभाग की पुलिस ने जलालपुर कुर्म टोला थाना कुचायकोट में वाहन जांच करते हुए एक कार से 286 लीटर से अधिक विदेशी शराब पकड़ी है। इसमें हरियाणा के रहने वाले अब्दुल रहमान को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसकी कार और शराब को जब्त कर इस पर उत्पाद पुलिस आगे की विधिक कार्रवाई कर रही है। इधर नगर थाना में 2024 में हुए एक मामले में आरोपी को कोर्ट ने 5 वर्ष कैद और 1,00,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। बताया जा रहा है कि शराब तस्करी में 2024 में पुलिस ने इस आरोपी पर केस दर्ज किया था। पूजा नर्सरी के पास अवैध शराब की बिक्री करते हुए पुलिस ने इसको पकड़ा था। इसके पास से 27 लीटर से अधिक शराब मिली थी। इसी मामले में पुलिस ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजा था। अब अदालत ने इस मामले में दोनों पक्षों की सुनवाई करते हुए अपना फैसला सुनाया और आरोपी को 5 वर्ष कैद तथा 1,00,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई, जिसके बाद आरोपी को आज पुलिस ने जेल भेज दिया। बताया जा रहा है कि जिस आरोपी को सजा हुई उसकी पहचान गौतम कुमार, पिता राम नारायण चौधरी, साकिन सरया, थाना नगर के रूप में की गई है। आरोपी अगर 1,00,000 रुपए का जुर्माना नहीं भरता है तो इसे 1 माह की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। इसमें लोक अभियोजक अवधेश प्रसाद मणि की महत्वपूर्ण भूमिका पुलिस के द्वारा बताई गई है। मुचका गांव थाना क्षेत्र के एक डेरवा में एक युवती की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युवती का शव उसके ही कमरे में फांसी के फंदे से लटका हुआ मिला। पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लिया गया। FSL की टीम के माध्यम से भी इसकी जांच पड़ताल की गई। बताया जा रहा है कि मृत महिला राम नरेश प्रसाद की पुत्री थी। पिता लकवा के मरीज हैं। पिता का कहना है कि वे कुछ ही महीनों में रिटायर होने वाले हैं और वे चाहते थे कि वे लकवा के मरीज हैं अपने बेटी की शादी धूमधाम से कर दें, इसलिए उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए बेटी की शादी तय कर दी थी। पिता का कहना है कि बेटी पढ़ना चाहती थी, वह शादी नहीं करना चाहती थी और इसी वजह से नाराज थी। शायद उन्हें लगता है कि इसी वजह से उसने यह आत्मघाती कदम उठाया। घटना के बाद से युवती के परिवार में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है और इस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। कुचायकोट थाना की पुलिस ने महुआ मुर्गी फार्म के पास छापेमारी करते हुए 3 लोगों को स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी और पुलिस ने यहां छापेमारी की, जहां 3 लोगों को स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया। एक आरोपी प्रिंस उर्फ रेहान, जो कुचायकोट के महुआ के ही मोहम्मद इस्लाम का पुत्र है। दूसरा आसरानी पिता सोबराती मियां, यह भी महुआ का ही निवासी है। और सुग्रीव कुमार पिता सुरेश राम, यह मकसूदपुर थाना उचका गांव का रहने वाला है। तीनों को आज स्मैक के साथ गिरफ्तार कर पुलिस ने NDPS एक्ट में कार्रवाई करते हुए तीनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इधर थावे के पिठौरी गांव के रहने वाले एक आरोपी को कोर्ट ने आर्म्स एक्ट के मामले में 2.5 साल की सजा सुनाई। जिला एवं सत्र न्यायाधीश 5 की अदालत ने सुनवाई करते हुए पिठौरी गांव के अंकित माझी को 2.5 साल कारावास और 10,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। 3 साल पुराने आर्म्स एक्ट के मामले में दोनों पक्षों की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आरोपी को दोषी पाया और सजा का ऐलान किया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। फुलवरिया प्रखंड के एक किसान भवन को 24 घंटों के अंदर अवैध कब्जे से मुक्त कराने का कृषि मंत्री ने निर्देश दिया, जिसके बाद प्रशासन अलर्ट है और इसको अवैध कब्जे से मुक्त कराने की दिशा में आज प्रयास शुरू कर दिया गया। कृषि मंत्री विजय सिन्हा पालगंज आए थे। इस दौरान बैठक में 20 सूत्री के सदस्यों ने इस किसान भवन के अवैध कब्जे की बात कही, जिसके बाद उन्होंने तुरंत जिला प्रशासन को 24 घंटों के अंदर संज्ञान लेते हुए इसे खाली कराने का निर्देश दिया। इधर गन्ना यांत्रीकरण योजना 2026-27 को लेकर भारत सुगर मिल सिधवलिया और विष्णु सुगर मिल गोपालगंज में विशेष गन्ना यांत्रीकरण कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें सिवान, छपरा और पूर्वी चंपारण आरक्षित क्षेत्र के स्वीकृति पत्र प्राप्त करने वाले सैकड़ों किसानों ने उत्साह पूर्वक भाग लिया। साथ ही विभिन्न कृषि यंत्र निर्माता एवं अपने अधिकृत विक्रेता आधुनिक यंत्र के साथ खरीदारी की। कार्यक्रम में दोनों चीनी मिल के अधिकारी, सहायक निदेशक गोपालगंज के साथ साथ ही सभी क्षेत्रीय पदाधिकारी और कर्मचारी भाग लिए। इस दौरान जिन किसानों का कृषि यंत्र का परमिट प्राप्त है उसका वितरण विष्णु शुगर मिल लिमिटेड के उपाध्यक्ष सुरेंद्र उपाध्याय और भारत शुगर मिल सिद्धवलिया के कार्यपालक उपाध्यक्ष शैलेंद्र त्रिपाठी तथा सहायक निदेशक गोपालगंज द्वारा संयुक्त रूप से किया गया और मेला में उपस्थित किसानों को कृषि यंत्रों के बारे में विस्तृत जानकारी भी दी गई। जिले के विकास को नई गति और नई दिशा देने के उद्देश्य से प्रभारी मंत्री सह कृषि मंत्री विजय सिन्हा ने समाहरणालय सभागार में जिले के प्रबुद्ध जनों के साथ संवाद कर विभिन्न विषयों पर व्यापक मंथन किया। संवाद में समाज के विभिन्न वर्गों से जुड़े प्रबुद्ध नागरिकों, लोक सेवकों, जन सेवकों, धार्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत से जुड़े व्यक्तियों तथा व्यापारिक प्रतिनिधियों ने जिले के विकास से संबंधित महत्वपूर्ण सुझाव दिए। प्रभारी मंत्री ने कहा कि प्रबुद्ध वर्ग समाज का मार्गदर्शक और दिशा देने वाला वर्ग है। उनके अनुभव, ज्ञान और सामाजिक सरोकार से प्राप्त सुझाव विकास की योजनाओं को अधिक जनोपयोगी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक प्रयासों के साथ समाज की सक्रिय भागीदारी से ही समग्र एवं स्थायी विकास का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकेगा। संवाद के दौरान प्राकृतिक और जैविक कृषि, गुणवत्तापूर्ण खान पान और स्वस्थ जीवन शैली को लेकर विशेष चर्चा हुई। प्रभारी मंत्री ने कहा कि रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के अनावश्यक प्रयोगों को नियंत्रित करते हुए प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देना समय की आवश्यकता है और इससे मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के साथ गुणवत्तापूर्ण कृषि उत्पाद और स्वस्थ समाज के निर्माण में मदद मिलेगी। उन्होंने जिला कृषि पदाधिकारी को प्रखंडवार मृदा नमूनों की जांच कराने का निर्देश दिया ताकि मिट्टी की वास्तविक आवश्यकता के अनुरूप ही उर्वरक एवं कीटनाशकों का उपयोग सुनिश्चित हो सके। प्रभारी मंत्री ने कहा कि विकास का अर्थ केवल सड़क, भवन और अन्य आधारभूत संरचनाओं का निर्माण नहीं बल्कि स्वस्थ, संस्कारित, नैतिक और जिम्मेदार समाज का निर्माण भी है। उन्होंने भारतीय मूल भावनाओं, परंपरागत जीवन शैली, सामाजिक समरसता एवं नैतिक मूल्यों को जीवन में अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने प्रबुद्ध जनों से समाज के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए सामाजिक एवं नैतिक संकल्प को मजबूत करने और सकारात्मक बदलाव के लिए सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की। आज बसेरा 2 अभियान के तहत 72 भूमिहीन परिवारों को बासगीत का पर्चा दिया गया। इस दौरान विजयपुर प्रखंड कार्यालय परिसर में ग्रामीण कार्य मंत्री सुनील कुमार ने लाभुकों के बीच पर्चा का वितरण किया। पर्चा मिलने के बाद गरीब परिवारों के चेहरे पर खुशी दिखाई दी। मंत्री ने कहा कि गरीब और जरूरतमंद परिवारों को उनके अधिकार का लाभ दिलाना सरकार की प्राथमिकता है। बासगीत पर्चा मिलने से आवास निर्माण के लिए जमीन का अधिकार भी गरीबों को मिल गया। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी ICDS गोपालगंज के द्वारा विजयपुर परियोजना के अंतर्गत आंगनवाड़ी केंद्र संख्या 99 पर पोषण माह के परिपेक्ष में गोद भराई कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें दीप प्रज्वलित कर सभी को लाभान्वित किया गया। इस दौरान रंजना कुमारी द्वारा पोषण से संबंधित तथा गर्भावस्था के दौरान किन किन बातों पर ध्यान रखा जाना चाहिए उसे गर्भवती एवं उनकी सास को तथा उपस्थित सभी लाभुकों को अवगत कराया गया। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। कृषि जन कल्याण संवाद का हुआ शुभारंभ, राष्ट्रीय लोक अदालत का हुआ भव्य आयोजन, एक प्रखंड एक उत्पाद को लेकर किसानों को किया गया प्रेरित, सड़क हादसे में एक पिकअप चालक की मौके पर हो गई मौत, अलग अलग मामलों में आज कई लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार और कई आरोपियों को कोर्ट ने सुनाई सजा। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
7: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
8: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराएं नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
9: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
8: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704 34468 पे।
10: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
11: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
12: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आएं गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
13: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
14: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
3: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है, चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से।
14: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें, आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
3: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94-512-11-001।
15: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान, पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज, ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
16: दोस्तों, यह है मेरा शो जिसका नाम है टाइम मशीन विद नीलेश मिश्रा, माइथोलॉजिकल कहानियों का एक सफर। मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अब कहानी महिषासुर मर्दिनी। दैत्यों के राजा महिषासुर का दरबार सजा था, नशे में चूर दैत्यों की खुशी का ठिकाना नहीं था। हो भी क्यों ना, महिषासुर के सेनापतियों शुंभ और निशुंभ ने देवताओं के सम्राट इंद्र के सौदागरों को लूट लिया था, काफी दौलत हाथ आई थी। दैत्यों के दल ने इंद्र की सेना पर आक्रमण करके उनके हथियार भी लूट लिए और मनुष्यों से उन्हें यज्ञ में हासिल बलि यानी दान में मिले सारे सामान पर भी असुरों ने कब्जा कर लिया था। आज महिषासुर के दरबार में उसी का जश्न था। न जाने कितने किस्म के पकवानों, भोजन और मदिरा के दौर के बीच में ढोल मृदंग बज उठते, नर्तकियों के नूपुर झांझर बजने लगते, नृत्य शुरू हो जाता और दरबार में मौजूद हर असुर दरबारी तब तक नाचता जब तक कि थककर चूर नहीं हो जाता। शुंभ, निशुंभ, चंड, मुंड सभी राक्षस मौजूद थे वहां कि तभी महिषासुर की आवाज गूंजी थी।
17: आज तो इंद्र का आत्मविश्वास ही ढोल गया होगा, है ना?
16: महिषासुर की बात से असहमत होने का सवाल ही नहीं था। दरबारी चाटुकार तो थे ही, लूट में मिले हिस्से से खुश भी थे। चंड बोल उठा,
17: ऐ महाराज, अब काहे का इंद्र, अब तो आपको इंद्र की गद्दी पे बैठना चाहिए। बहुत हो गया देवों का शासन, अब यज्ञों से मिलने वाला दान आपके खजाने में जमा होना चाहिए।
16: महिषासुर को बात ठीक लगी। ये तय हुआ कि आज शाम या रात को इंद्र

रहता है। महिषासुर ने हमले की आज्ञा दे दी। दैत्य हमेशा रात में हमले किया करते थे। रात के अंधेरे में गुरिल्ला तरीके से हमला करना सुरक्षित था। हार दिख रही हो तो जंगलों में खिसक लेना आसान था, और जीत गए तो इलाके पे कब्जा तो खैर होता ही था। दैत्यों ने देवताओं की राजधानी स्वर्ग पर हमला कर दिया। दैत्यों का अचानक हुआ हमला देवता झेल नहीं पाए। इंद्र और उसके तमाम साथी देवताओं को स्वर्ग छोड़कर जाना पड़ा। महिषासुर इंद्र के सिंहासन पर बैठ गया। देवताओं के सामने ऐसी स्थिति कभी नहीं आई थी। इससे पहले जब भी असुरों के साथ युद्ध हुए थे तो उसके नियम कायदे पहले तय होते थे, युद्ध भूमि तय की जाती थी, लेकिन उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि दैत्य सीधे राजधानी पर ही आक्रमण कर देंगे। पराजित देवताओं और इंद्र का आत्मविश्वास डिग गया था। अब इस समस्या का समाधान सिर्फ शिव ही कर सकते थे। इंद्र देवताओं के साथ कैलाश पहुंचे तो वहां भगवान ब्रह्मा और विष्णु शिव के पास पहले ही मौजूद थे। इंद्र शिव के पैरों में गिर गया। शिव पहले से ही गुस्से में थे। विलासी राजाओं को शिव की याद तभी आती है जब वो समस्या में फंसे होते हैं। इंद्र के मुंह से बोल नहीं फूटे, भगवान देवलोक की रक्षा अब आपके हाथों में है। दैत्यों ने हमारे कुल की कई महिलाओं को कैद कर लिया है, समुद्रों के राजा वरुण ने कांपते हुए कहा था। अब तक इस पूरी बातचीत को शिव की पत्नी गौरी बड़ी खामोशी से सुन रही थी, लेकिन पराजितों के इस दर्द और महिलाओं को कैद किए जाने की बात सुनकर गौरी की आंखें लाल हो गई थी। उन्होंने झपट कर शिव का त्रिशूल उठा लिया। मैं दंड दूंगी उन दुष्टों को। गौरी को ऐसे गुस्से में देखकर शिव को लगा कि अब तक जिस सवाल का जवाब वो विष्णु जी और ब्रह्मा के साथ खोज रहे थे वो मिल गया है, लेकिन गौरी सेना का नेतृत्व करेंगी ये बात इंद्र के गले नहीं उतरी। जिन दैत्यों को देवों की सेना नहीं हरा पाई उनसे एक महिला कैसे जीत पाएगी। शिव का संयम टूटने लगा था। देवराज, आपने महिला को हमेशा भोग विलास की वस्तु समझा है, महिलाओं को कमतर आंकना आपकी भूल है। गौरी का भवानी रूप महाशक्ति है और आपके उद्धार की राह भी। शिव रुक कर थोड़ा मुस्कुराए और बोले, और आपके पास विकल्प भी नहीं है। इंद्र ने सर झुका लिया। तब तक गुस्से में तमतमाई गौरी अपनी जगह पे खड़ी हो गई थी कि झटके के साथ आसमान में बिजली कड़की और लगा कि शिव की देह से निकलती एक नीली ज्वाला गौरी की देह में जाके समा गई हो। साथ ही भगवान विष्णु और ब्रह्मा के शरीर से भी ऐसी ही एक ज्वाला गौरी की देह में समाने लगी थी। आसमान में कड़कती बिजली की चमक और तेज हवाओं के बीच बादल गरज रहे थे, और सबने देखा जहां गौरी खड़ी थी वहां अब एक धधकती हुई ज्वाला थी। धीरे धीरे यह ज्वाला एक नारी में बदल गई और वहां गौरी नहीं थी। काले लंबे लहरदार बाल, सर पर सोने का मुकुट, कवच, लाल साड़ी में सजी इस देवी की बड़ी बड़ी आंखों में क्रोध और करुणा दोनों भाव एक साथ थे। सारे देवता अपलक इस देवी को देखते रह गए थे। शिव बोले, ये देवी दुर्गा हैं, इनकी जय हो। महिषासुर के साथ युद्ध में देवताओं को जीत देवी दुर्गा ही दिलाएंगी। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थ हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। विपत्ति नाश के लिए यह श्लोक जैसे ही शिव ने पढ़ा सारे देवताओं ने एक साथ जय घोष किया, दुर्गा मैया की जय। महिषासुर इंद्र के सिंहासन पर बड़े ठसके के साथ बैठा था कि गुप्तचर चंड ने उसे एक सूचना दी, महाराज देवों ने फिर से अपनी सेना खड़ी कर ली है। महिषासुर ने उसकी बात को ज्यादा अहमियत नहीं दी, बस इतना कहा, अच्छा। निशुम ने चंड से पूछा, कौन है उनका नया सेनापति, स्कंद, विष्णु या खुद शिव? नहीं सेनापति जी, इस बार उनकी अगुवाई कोई नारी कर रही है, चंड ने नजरें नीची करके कहा। गुप्तचर की बात सुनकर महिषासुर ठठा कर हंस पड़ा, सारे देवताओं ने क्या चूड़ियां पहन ली हैं दूत? क्या ऐसे दिन आ गए हैं कि विश्व विजेता महिषासुर को एक नारी से युद्ध करना होगा? गुप्तचर चंड कुछ नहीं बोला। महिषासुर की आवाज अचानक गंभीर हो गई, शुंभ, निशुंभ। जी महाराज, महिषासुर के दोनों

सेनापति अनुशासित सिपाहियों की तरह झटके से उठ खड़े हुए। जाओ उस नारी को हरा कर उसे पकड़ लो, चाहो तो उससे विवाह कर लो। सारे दरबार में एक बार फिर हंसी की लहर फूट पड़ी। शुंभ और निशुंभ सेना सजाकर उस ओर चल पड़े जहां देवी दुर्गा ने अपनी सेना का शिविर बनाया था। शुंभ निशुंभ ने गुप्तचर से फिर पूछा, कौन है देवताओं की नई सेनापति? सेनापति जी, उसका नाम दुर्गा है। उसकी सेना में उस जैसी न जाने कितनी योद्धा है। देवों के अलावा शायद 700 महिलाएं हैं। सूचना यह है कि सभी एक जैसी दिखती हैं, एक जैसे वस्त्रों में, एक जैसे हथियारों के साथ। भवानी, भवमोचनी, जया, आद्या, काली, शांभवी, कुष्मांडा, उनमें से कुछ के नाम है ये, और सबकी सब भयंकर युद्ध करती हैं। निशुंभ सोच में पड़ गया, ये सब आई कहां से? महाराज, दुर्गा शिव विष्णु और ब्रह्मा के तेज से पैदा हुई हैं। शिव ने उनको अपना त्रिशूल, विष्णु ने सुदर्शन चक्र, अग्नि ने शक्ति, वायु ने धनुष बाण, यमराज ने कालदंड, इंद्र ने वज्र दिया है। सभी देवताओं ने कोई ना कोई हथियार दुर्गा को दिए हैं। महाराज, जब दुर्गा ने अपनी सेना के साथ जयघोष किया था तो सारी धरती डोलने लगी थी, पहाड़ हिलने लगे थे और उनके सभी सैनिक उनकी स्तुति कर रहे थे। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयेभ्यस्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। दुर्गा की स्तुति सुनकर दोनों दानव सेनापति चढ़ गए। उन्होंने डपट कर गुप्तचर को चुप करा दिया। शुंभ और निकुंभ पैदल योद्धा थे और अपने भारी हथियारों, ढाल और कवचों के साथ वो उस जगह पे आ खड़े हुए जहां से दुर्गा का शिविर दिखता था। दोनों ने देखा, दुर्गा किसी बड़े जानवर पर सवार थी और पूरे शिविर का मुआयना कर रही थी। गुप्तचर के मुंह से चीख निकल गई, अरे वो तो शेर पे बैठी है। शुंभ की आंखें भी चौड़ी हो गई, ओह तो दुर्गा शेर की सवारी करती है, उसे कमजोर समझना गलती होगी, हम आज रात में ही जोरदार हमला करेंगे। लेकिन निशुंभ ने युद्ध से पहले एक दूत को दुर्गा के पास भेजने का फैसला किया। निशुंभ का दूत जब दुर्गा के सैन्य शिविर में पहुंचा तो महिलाओं की सेना की तैयारियां देखकर हैरत से उसकी आंखें फटी रह गईं। लेकिन वो अपनी हैरानी को मन में छिपाए दुर्गा के सामने पेश हुआ। दुर्गा अपने उस आसन पर बैठी थीं जिसके दोनों तरफ शेर बने थे। असली अर्थों में वही तो था सिंहासन। दूत बोला, देवी, दैत्यराज महिषासुर इस समय तीनों लोकों के परमेश्वर हैं। वो सभी देवताओं को हरा चुके हैं। मैं उनका दूत हूँ। उन्होंने कहा है कि देवताओं की सबसे बढ़िया चीजें उनके पास हैं और हम लोग आपको भी नारियों में सबसे उत्तम मानते हैं। इसलिए सुंदरी, आप हमारे सेनापति शुंभ की सेवा में आ जाइए, या फिर चाहे तो स्वयं महाराज की पत्नी बनकर स्वर्ग की सभी सुविधाएं हासिल कर लें। सिंहासन पर बैठी दुर्गा दूत की बात सुनकर गंभीर भाव से मुस्कुराने लगी थी। दूत, तुमने सही कहा कि तुम्हारे स्वामी बहुत महान है, लेकिन अपनी कम बुद्धि के कारण मैंने पहले ही प्रतिज्ञा कर रखी है कि जो मुझे युद्ध में हरा देगा मैं उसी से विवाह करूंगी। तो शुंभ हो या निशुंभ या खुद महिषासुर, उनसे कहना युद्ध भूमि में पधार कर मुझे हरा दें और मेरे हाथों वरमाला ग्रहण करें, इसमें देरी क्यों? दूत भिनभिनाता हुआ वहां से निकल पड़ा। अब युद्ध आन पड़ा था। दुर्गा और शुंभ निशुंभ की सेना के बीच युद्ध हुआ और दुर्गा ने दोनों योद्धाओं को युद्ध भूमि में मार गिराया। पलक झपकते ही खबर महिषासुर तक पहुंच गई। महिषासुर शुंभ और निशुंभ के वध की खबर सुनकर सन्न रह गया। उसे अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था कि एक महिला ने शुंभ और निशुंभ जैसे उसके महायोद्धा सेनापतियों को मार डाला था, और वो भी आमने सामने के युद्ध में। दुर्गा और उनकी सभी साथिनों ने जबरदस्त लड़ाई लड़ी थी। शुंभ और निशुंभ औरतों को कमजोर मानने की भूल कर बैठे थे। युद्ध के मैदान में खून की नदियां बहाने से पहले दुर्गा और उनकी दूसरी सेनापतियों ने एक जाल में दैत्यों को उलझा लिया था। दुर्गा और बाकी की देवियों के पास नए किस्म के धातु लोहे के हथियार थे। दैत्यों के कांसे के हथियार उन नए किस्म के अस्त्रों और शस्त्रों के सामने बेकार साबित हुए।
लोहे से बनी भारी तलवारों और फरसों ने दैत्यों के कांसे के कवचों को कागजों की तरह चीर डाला था। महिषासुर ने तय कर लिया, दुर्गा से इस हार का बदला लिया जाएगा हर कीमत पर। कितनी मुश्किलों से और न जाने कितनी कोशिशों के बाद देवताओं के इलाके की वैभवशाली राजधानी स्वर्ग पर असुरों का कब्जा हो पाया था और ये दुर्गा असुरों से स्वर्ग छीन लेना चाहती है। महिषासुर दल बल के साथ निकल पड़ा। महिषासुर बड़ा और ताकतवर था और इसीलिए उसको महिष असुर यानी भैंसा भी कहते थे। ये मशहूर था कि उसे पल भर में अपना रूप बदल लेने में महारत हासिल थी और छिपकर छल से युद्ध करने में, अचानक हमला करके दुश्मन को हैरत में डाल देने में महिषासुर बेहद कुशल था। महिषासुर ने इस बार अपनी सारी सेना इकट्ठी करके एक साथ जोरदार हमला करने का फैसला किया था। वो ठान के आया था कि देवताओं के कुल के हरेक सदस्य को वो जान से मार देगा और उस देवी दुर्गा को भी, जिसके दम पर ये देवता शुंभ निशुंभ के मारे जाने के बाद से बहुत उछल रहे थे। सामने की हरी भरी घाटी में दुर्गा के शिविर को देखते ही उसने तुरंत कूच करने का आदेश दिया। रुक कर, थम कर और सोच कर रणनीति तैयार करना और फिर हमला बोलना, ये महिषासुर के स्वभाव में ही नहीं था। असुर सेनाएं आगे बढ़ी तो उनके जूतों से उड़ी धूल आसमान में बादल की तरह छा गई। सूरज की रोशनी धूल के बगुलों में छिप गई। लेकिन ये क्या, शेर पर सवार दुर्गा अपनी सेना के सबसे आगे थी और उनकी देह से निकले तेज से तीनों लोक प्रकाशित हो रहे थे। महिषासुर ये देखकर सन्न रह गया कि दुर्गा की सेना में पैदलों के अलावा घुड़सवार भी थे। वो जानता था कि आर्य सैनिक घोड़ों का बेहतरीन इस्तेमाल जानते हैं और इसी दम पर उन लोगों ने गंगा सिंधु के मैदान के बहुत बड़े इलाके पर कब्जा भी कर लिया है। उधर सामने दुर्गा दृढ़ खड़ी थी, जिनके माथे के मुकुट से निकली रोशनी आसमान में रेखा की तरह खिंच रही थी और उनके धनुष के टंकार से सातों पाताल हिल रहे थे। महिषासुर ठीक उनके सामने परशुतान कर जा खड़ा हुआ। महिषासुर के आगे बढ़ते ही दोनों तरफ की सेनाएं आपस में गुत्थम गुत्था हो गईं। महिषासुर जब अपना परशु यानी फरसा तानकर दुर्गा के सामने जा डटा तो आसपास के पहाड़ों पर मौजूद ऐसे देव दानव भी सांस रोककर युद्ध देखने लगे जो सीधे तौर पर युद्ध में हिस्सा नहीं ले रहे थे। जिस तरफ कान जाते उधर सिर्फ अस्त्रों शस्त्रों हथियारों के टकराने की आवाज, चीख चिल्लाहट की आवाज। भवानी ने महिषासुर के हाथियों की सेना के प्रमुख चिक्षुर को तलवार से काट डाला था। 60,000 हाथी की ताकत वाले उदग्र और तलवार की तरह तीखे रोयों वाले महादैत्य महाहनु का दुर्गा ने अपने हाथों वध किया था। युद्ध भूमि में दुर्गा ऐसे लगती थी मानो बिजली की चमक हो। महिषासुर जिधर नजरें घुमाता उसे दुर्गा ही नजर आती। उसने अभी अपने एक सेनापति के साथ दुर्गा को युद्ध करते देखा तो दुर्गा इतनी तेजी से और इतने सारे हथियार चला रही थी कि लग रहा था उनके शरीर में 12 हाथ हों और 12 हाथों में अलग अलग हथियार हों। दुर्गा का वाहन शेर भी दैत्यों की सेना में ऐसे हमले करता घूम रहा था जैसे जंगल की आग हो। आज कुछ भी महिषासुर के पक्ष में नहीं था। युद्ध से पहले हुई बारिश ने हाथियों को बेकाम कर दिया था। उल्टी दिशा से बहती हवा से उसके तीरंदाज बेकार हो गए थे। दुर्गा जिधर भी जाती न जाने किधर से उनके पीछे से उनके हजारों गण और भट आते और दैत्यों पर आगे और पीछे दोनों तरफ से हमला बोल देते। लहू के इस उत्सव में न जाने कितने ही गण मृदंग और शंख नगाड़े और तुरही फूंक रहे थे। अपनी सेना को ऐसे गाजर मूली की तरह कटते देखकर महिषासुर गुस्से से भर उठा। उसने तय किया कि जीत के बाद इन शंख और तुरही फूंकने वालों को वो जलती भट्टी में फेंकवा देगा। महिषासुर ने तुरंत भैंसे का भयंकर रूप धरा और देवी के गणों को कुचलने मथने लगा। किसी को थूथन से मारकर, किसी को खुरों से कुचलकर, कुछ को सींगों से चीरकर, कुछ को सींगों पर उठाकर हवा में उसने नचा मारा। गुस्से में भरे महिषासुर ने अब खुरों से मिट्टी खोदनी शुरू कर दी थी और अपने सींगों पर बड़े बड़े पत्थर उठाकर देवी दुर्गा की तरफ फेंकना शुरू कर दिया।
दुर्गा ने जैसे ही उसकी ओर उसे बांधने के लिए मोटे रस्से से बना ब्रह्म पाश फेंका, वो जल्दी जल्दी रूप बदलने लगा। कभी शेर के रूप में, कभी तलवारबाज आदमी के रूप में, तो कभी बड़े हाथी के रूप में वो दुर्गा पर हमले करने लगा। तो दुर्गा ने तलवार के वार से उसकी सूंड काट दी। अब महिषासुर एक बार फिर से भैंसा बन गया और दुर्गा पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। गुस्से से भरी दुर्गा बोली,

अरे मूर्ख, जब तक मैं मधु पीती हूँ तब तक गरज ले, अभी तेरी मौत मेरे हाथों होगी, फिर देवता भी खूब गर्जा करेंगे। इतना कहकर दुर्गा उछल कर उस भैंसे पर चढ़ गई और उसको पैरों से दबाकर त्रिशूल को उसके कंठ पर दे मारा। ये ऐसा वार था कि महिषासुर तड़प कर अपने दूसरे रूप में भैंसे से बाहर आने लगा। फिर दुर्गा ने अपने फरसे के एक वार से महिषासुर का अंत कर दिया। अच्छों और सच्चों को सताने वाले और महिलाओं को कमजोर समझने वाले महिषासुर का अंत हो चुका था। विजय का प्रतीक बन चुकी देवी दुर्गा फिर से अपने वाहन सिंह पर सवार होकर युद्ध छोड़कर कल्याणकारी रूप में आ चुकी थीं। और तब युद्ध भूमि में ही शिव ने जोर से पाठ किया। सर

0: दोस्तों ये कहानी बस इतनी ही। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी, कि इस कहानी से आपको प्रेरणा मिली होगी। उम्मीद है कि चाहे आप पुरुष हों या महिला, आपका महिलाओं को देखने का अपना नजरिया इस कहानी को सुन के बदला होगा। आप जब चाहेंगे, जितनी बार चाहेंगे, मैं यहीं मिलूंगा आपको एक और माइथोलॉजिकल यात्रा पर चलने को तैयार, एक और कहानी सुनाने को तैयार, क्योंकि ये है टाइम मशीन।
1: दादी, आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
2: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
1: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
2: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
1: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
2: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
1: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
3: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-86973।
4: सुनिए सुनिए सुनिए,
5: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
4: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
5: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
4: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
3: त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
1: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
3: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
1: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
3: और सबसे खास बात ये है ऑन रोड कीमत, यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
1: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
3: अभी कॉल करें 9289-22567 या 9779-14-86165
1: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 चैन पट्टी, गोपालगंज।

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
3: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
4: ओ माई गॉड, आज फिर से भूल गई।
3: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
4: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
5: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
4: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
5: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
4: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
5: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
6: ठक ठक।
4: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
5: अच्छा, मिला ही नहीं।
4: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
5: जी हाँ, कमल श्री। याद रखिए, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
4: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
5: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।

0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
3: सोहन मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
4: अरे टीना टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL जियो एयरटेल VI जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
3: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
4: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF लेमिनेशन प्रिंट फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ 1 रुपए प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है, माया क्लासिकल सिनेमा रोड शिव मंदिर के ठीक सामने गोपालगंज, प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99 399 66 999।
0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
2: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोपराइटर। पहले आए पहले पाए।
2: अभी कॉल कीजिए 90 066 7231।
0: कॉल कीजिए 90 066 7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
5: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
6: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
5: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
6: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
5: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
7: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
8: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
7: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
8: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
7: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
8: जानकारी है तो कॉल करें 6205-62112 पे।

0: त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
1: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
0: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
1: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
0: और सबसे खास बात ये है ऑन रोड कीमत यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
1: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
0: अभी कॉल करें 92899-22567 या 97714-8665
1: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH27 चैन पट्टी, गोपालगंज।
2: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
3: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलता पूर्वक किया है।
3: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99,554-97,644।
4: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
5: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज या कॉल करें 86034-48652 पे।
6: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

0: मेरा इंडिया।
1: बिल्कुल आई लव माय इंडिया, ये मेरा इंडिया।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हुए आतंकवाद कतई बर्दाश्त न करने का आह्वान। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव पर चिंता व्यक्त की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सम्मेलन के अवसर पर कजाकिस्तान, फिलीपींस, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपतियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने पूर्वी मेदिनीपुर जिले में DRDO का हथियार और मिसाइल परीक्षण केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव स्वीकार किया। मौसम विभाग का गुजरात में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी। एलिना रायबाकीना ने आरेना सबालेंका को हराकर अमरीकी ओपन टेनिस के महिला सिंगल्स का खिताब जीता। और एशिया कप महिला क्रिकेट के फाइनल में आज भारत का सामना मौजूदा चैंपियन श्रीलंका से। नई दिल्ली के भारत मंडपम में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में कल ब्रिक्स नेताओं ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। नई दिल्ली घोषणा पत्र में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाने की प्रतिबद्धता भी दोहराई गई। घोषणा पत्र में कहा गया कि आतंकवाद का कोई भी रूप आपराधिक और अनुचित है।
3: नई दिल्ली घोषणा पत्र में पिछले वर्ष 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले की कड़े शब्दों में निंदा की गई। इस हमले में 26 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। बाद में इस हमले के तार पाकिस्तान से समर्थन और प्रशिक्षण प्राप्त आतंकवादियों से जुड़े पाए गए। घोषणा पत्र में आतंकवादियों की सीमा पार आवाजाही, आतंकवाद के वित्त पोषण और आतंकवादियों को पनाह देने वालों के खिलाफ कार्रवाई का आह्वान किया गया। ब्रिक्स देशों के नेताओं ने सदस्य देशों से आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने और आतंकवाद से निपटने में दोहरे मापदंडों को खारिज करने का आग्रह किया। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित सभी आतंकवादियों और आतंकी संगठनों के खिलाफ मिलकर कार्रवाई करने की भी अपील की। ब्रिक्स टीम के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र के समापन भाषण में कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र सदस्य देशों के साझा संकल्प को स्पष्ट दिशा प्रदान करता है।
4: हमारे समक्ष ब्रिक्स न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 का ड्राफ्ट प्रस्तुत है। इसमें हमारी चर्चाओं का सार प्रमुख वैश्विक और क्षेत्रीय विषयों पर हमारे दृष्टिकोण शामिल है। साथ ही ब्रिक्स कोऑपरेशन को और सुदृढ़ करने की प्राथमिकताएं समाहित है। किसी सदस्य की ओर से आपत्ति व्यक्त नहीं की गई है। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 को सर्वसम्मति से एडॉप्ट किया जाता है।
2: श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स देशों को अगले 20 वर्ष के लिए एक नई और महत्वाकांक्षी एजेंडे पर काम करना होगा।
4: अब समय है कि हम ब्रिक्स में हमारी एकता और सहमति को वैश्विक मंच पर ठोस परिणामों में बदले। अगले 20 वर्षों के लिए हमें एक नए और एम्बिशियस एजेंडा पर काम करना होगा। इसकी शुरुआत हमें अपने खुद के वर्किंग सिस्टम से करनी होगी। ब्रिक्स की अध्यक्षता हर वर्ष बदलती है, किंतु इसकी वजह से हमारा इंस्टीट्यूशनल मोमेंटम नहीं रुकना चाहिए।
2: विदेश मंत्रालय के सचिव सुधाकर दलेला ने कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र स्वीकार करना भारत की अध्यक्षता के प्रमुख परिणामों में से एक था। उन्होंने कहा कि आज के सत्र में ब्रिक्स नेताओं ने अपने अपने राष्ट्रीय दृष्टिकोण से बात की, लेकिन बहुपक्षवाद को मजबूत करने और वैश्विक संस्थानों को अधिक प्रतिनिधि, समावेशी, प्रभावी और वर्तमान वास्तविकताओं के लिए उत्तरदायी बनाने की आवश्यकता पर व्यापक सहमति थी।
5: I would like to say that the outcome document.
6: मैं ये कहना चाहूँगा कि यदि आप नई दिल्ली घोषणा पत्र को देखें, तो ब्रिक्स देशों ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की स्पष्ट रूप से निंदा की है। ब्रिक्स नेताओं ने पिछले साल जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले की भी कड़े शब्दों में निंदा की है।
5: जम्मू एंड कश्मीर दैट टुक प्लेस लास्ट ईयर।
2: प्रधानमंत्री मोदी आज सम्मेलन के अवसर पर कजाकिस्तान, फिलीपींस, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपतियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। एक रिपोर्ट।
7: ब्रिक्स सम्मेलन में आज ब्रिक्स के सदस्य और साझेदार देश समावेशी वैश्विक विकास के भविष्य को आकार देने संबंधित विषय पर आयोजित सत्र में हिस्सा लेंगे। ब्रिक्स के 10 साझेदार देश हैं बेलारूस, बोलिविया, कजाकिस्तान, क्यूबा, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान और वियतनाम। इस सत्र के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कजाकिस्तान, फिलीपींस, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री नाइजीरिया और युगांडा के उपराष्ट्रपति से भी वार्ता करेंगे। यह ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भारत की अध्यक्षता में आयोजित किया जा रहा है और इस वर्ष सम्मेलन की थीम है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: नई दिल्ली के भारत मंडपम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स नेताओं के लिए कल रात्रि भोज का आयोजन किया। इसमें विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम नवरस द यूनिवर्स ऑफ शेयर्ड इमोशंस प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम में ब्रिक्स सिम्फनी एक लय कई संस्कृतियों के माध्यम से सदस्य और साझेदार देशों के संगीतकारों ने मिलकर प्रस्तुति दी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
8: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
9: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
8: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
10: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल सरकार ने पूर्वी मेदिनीपुर जिले में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के हथियार और मिसाइल परीक्षण केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है।
11: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में हथियार और मिसाइल परीक्षण केंद्र स्थापित करने के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह केंद्र पूर्वी मेदिनीपुर जिले के तटीय गांव जुनपुट में स्थापित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह केंद्र पश्चिम बंगाल के विकास के लिए एक बड़ी परियोजना होगा और उड़ीसा की चांदीपुर परीक्षण रेंज के अलावा आंध्र प्रदेश में प्रस्तावित परीक्षण केंद्र के बाद DRDO का तीसरा प्रमुख केंद्र होगा। समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
2: गृह मंत्री अमित शाह आज मुंबई एशियाटिक सोसाइटी में श्री गणेश ध्यानार्थी नाम की पांडुलिपियों की विशेष प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। गृह मंत्री पुस्तकालय का दौरा भी करेंगे और एशियाटिक सोसाइटी की पांडुलिपि संरक्षण प्रयोगशाला के कार्यों का निरीक्षण करने के बाद उपस्थित जनसमूह को संबोधित करेंगे। श्री शाह आज बांद्रा रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद के पुरस्कार समारोह में शामिल होंगे। वे लाल बागचा राजा के दर्शन के लिए भी जाएंगे। गृह मंत्री कल से मुंबई के 3 दिन के दौरे पर हैं। इराक ने मेसान प्रांत में सैन्य अभियान कमांडर को बर्खास्त कर दिया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि शलामचे सीमा चौकी को भी एहतियात के तौर पर अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। एक रिपोर्ट।
12: सऊदी अरब की ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन पर ड्रोन हमलों की जांच के बाद ये कार्रवाई की गई है। इससे पहले सऊदी अरब ने कहा था कि ये हमले इराक की ओर से किए गए थे, लेकिन उसने जवाबी कार्रवाई की जगह इराकी सरकार के प्रयासों को समर्थन का फैसला किया है। यमन में हौसी विद्रोहियों ने दावा किया है कि सऊदी अरब ने 48 घंटे के दौरान यमन में 100 से अधिक हवाई हमले किए। इस मामले में कूटनीतिक स्तर पर भी बातचीत के संकेत मिले हैं। अबू धाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पजश्कियन से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने तनाव कम करने, शांति स्थापित करने और क्षेत्रीय स्थिरता मजबूत करने के प्रयासों को समर्थन देने के महत्व पर बल दिया। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
2: और अब खेल खबरों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
13: महिला T20 क्रिकेट एशिया कप के फाइनल में आज दुबई में भारत का मुकाबला मौजूदा चैंपियन श्रीलंका से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा। वहीं पुरुष क्रिकेट में आज भारत अफगानिस्तान के साथ 3 T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच खेलेगा। ये मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शाम 7 बजे से शुरू होगा। टेनिस में एलिना रायबकीना ने महिला सिंगल्स अमरीकी ओपन टेनिस का खिताब जीत लिया है। न्यूयॉर्क में खेले गए फाइनल में कजाकिस्तान की रायबकीना ने बेलारूस की आरेना साबालेंका को 6-4, 5-7, 6-2 से हराकर खिताब अपने नाम किया। रायबकीना का यह पहला अमरीकी ओपन खिताब है और तीसरा ग्रैंड स्लैम खिताब है। इससे पहले अमरीका के क्रिस्टियन हैरिसन और ब्रिटेन के नील स्कूपस्की की जोड़ी ने जर्मनी के केविन क्रेविट्स और टिम पुएट्स की जोड़ी को हराकर पुरुष डबल्स का खिताब अपने नाम किया। वहीं पुरुष सिंगल्स के फाइनल में आज न्यूयॉर्क में दूसरी वरीयता प्राप्त जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव का मुकाबला अमरीका के बेन शेल्टन से होगा। उधर भारत के प्रज्वल देव और फ्रांस के कॉन्स्टेंटिन बिटुन कोज़ेमिन की जोड़ी ने एटीपी टेनिस चैलेंजर का डबल्स का खिताब जीत लिया है। इस जोड़ी का ये दूसरा खिताब है।
2: नेपाल में बाढ़ प्रभावित 8 जिलों से और शव बरामद होने के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 1386 हो गई है। 26 अगस्त को नेपाल तिब्बत सीमा के पास आई बाढ़ ने उत्तर और मध्य नेपाल के कस्बों और गांवों में भारी तबाही मचाई थी। मौसम विभाग ने गुजरात में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने बताया कि मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र और कच्छ में तेज वर्षा का अनुमान है। तटीय आंध्र प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा हो सकती है। विभाग ने कहा कि बिहार, झारखंड और अंडमान निकोबार में गरज चमक के साथ वर्षा की आशंका है। दिल्ली में अगले 5 दिन तक कुछ स्थानों पर तेज वर्षा के आसार हैं। इस बीच केरलम और माहे में आज गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
14: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और YouTube पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
2: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
15: धन्यवाद मुकेश। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आम सहमति से घोषणा पत्र की मंजूरी की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, टैरिफ के नाम पर दादागिरी बंद हो, सीमा पार आतंकवाद और वित्त पोषण पर जीरो टॉलरेंस का संदेश। नवभारत टाइम्स के अनुसार पश्चिम एशिया संघर्ष बातचीत से खत्म हो। जनसत्ता लिखता है, मोदी और चिनफिंग में द्विपक्षीय वार्ता, सीमा मुद्दों पर दोनों पक्ष स्वीकार्य समाधान के लिए प्रतिबद्ध। दैनिक जागरण के अनुसार पहलगाम में आतंकी हमले की निंदा से आतंकवाद से भारत के रुख को बल मिला। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार पर भी समर्थन। लोकसत्ता के मुताबिक डॉलर के मुकाबले ब्रिक्स देशों ने चुना स्थानीय मुद्राओं का रास्ता। साझा मुद्रा से पीछे हटकर भुगतान व्यवस्था मजबूत करने पर जोर। पंजाब केसरी की सुर्खी है, 21 ब्रिक्स देशों की जुबानी भारत लिखेगा नई कहानी। 20 साल का हुआ ब्रिक्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अगले 20 वर्ष के लिए हमें नई और महत्वाकांक्षी कार्य योजना पर काम करना होगा। नवभारत टाइम्स के अनुसार राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने कहा, पाकिस्तान में है आतंकी हाफिज सईद। जम्मू की विशेष अदालत में दी जानकारी, जम्मू कश्मीर में आतंकी नेटवर्क पर छापेमारी। कुपवाड़ा, कुलगाम, बांडीपुरा और सोपोर में कई जगह तलाशी। डोडा में जैश आतंकी का शव मिला। अमर उजाला की सुर्खी है, जिहाद के लिए युवाओं को जोड़ रहा अलकायदा का आतंकी गिरफ्तार। एटीएस ने आजमगढ़ से दबोचा, आतंकी संगठन की विचारधारा से जुड़े लोगों के ग्रुप में कोर्ट में होती थी बातें। हथियार चलाने और बम बनाने की ट्रेनिंग लेने वाला था मोहम्मद नबील। राजस्थान पत्रिका के अनुसार समंदर से बुझेगी मुंबई की प्यास। रोज 40 करोड़ लीटर मिलेगा पानी, चेन्नई के बाद दूसरा प्रमुख शहर बनेगा। संयंत्र में समुद्री पानी को आरओ तकनीक से खारा पानी मीठा होगा। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, कम रैंक वाले कॉलेजों के ग्रेजुएट हार्वर्ड जैसा कमा रहे, अच्छी कमाई के लिए नामचीन डिग्री जरूरी नहीं। पत्र के अनुसार कॉलेज चुनने में कमाई को आधार न बनाएं। हिंदुस्तान का शीर्षक है, दिल्ली में 2.5 लाख निर्माण श्रमिकों को मिलेगा मुफ्त इलाज, निगरानी के लिए समिति गठित होगी।
2: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हुए आतंकवाद कतई बर्दाश्त न करने का आह्वान। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव पर चिंता व्यक्त की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सम्मेलन के अवसर पर कजाकिस्तान, फिलीपींस, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपतियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने पूर्वी मेदिनीपुर जिले में DRDO का हथियार और मिसाइल परीक्षण केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव स्वीकार किया। मौसम विभाग का गुजरात में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी। एलिना रायबाकीना ने आरेना सबालेंका को हराकर अमरीकी ओपन टेनिस की महिला सिंगल्स का खिताब जीता और एशिया कप महिला क्रिकेट के फाइनल में आज भारत का सामना मौजूदा चैंपियन श्रीलंका से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
16: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण। अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
17: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
16: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
17: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
16: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
17: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
16: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
18: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523-52599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99 39 41 51 51 पे।
19: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
20: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं, कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
19: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
20: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीठ की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
19: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
21: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
22: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय, अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
21: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज, और लखपतिया मोड़, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
23: घर में कोई नहीं मान रहा है, तुम मान जाओ, भूल जाओ मुझे,
24: याद करो कि मुझे।
23: जब जब बारिश होगी तब

0: मेरा पेट दर्द।
1: अरे तो उसे डांटते क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
2: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
3: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
0: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
4: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
5: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
4: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
5: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
4: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
5: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
4: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
5: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।

0: ठक ठक।
1: काजी आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा मिला ही नहीं
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
3: जी हाँ कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
3: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
4: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
5: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से।
4: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें, आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
5: पता जंगलिया मोहल्ला नूर मेडिकल के पास गोपालगंज, कॉल करें 94512111001।

0: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं। दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
1: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
2: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
3: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
4: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
2: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
1: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
2: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
4: कॉल करे 87894 18744।
5: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
6: मैं बनूंगा।
5: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर? अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80029-94921 पे, हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में, ओनली ऑन रेडियो रमझे 90.4 अमरजैट पर।
7: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
8: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करे 86034 48652 पे।

0: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
1: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
2: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
3: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
2: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
4: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
5: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
4: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
5: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
4: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी, जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
6: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
6: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
6: जानकारी है तो कॉल करें 6252 6112 पे।

0: कब भौजी? आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना?
0: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में। महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
3: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
4: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
3: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
4: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
3: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
5: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
6: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
5: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
6: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
0: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी।
6: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
0: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
6: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
0: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हुए आतंकवाद कतई बर्दाश्त नहीं करने का आह्वान। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव पर चिंता व्यक्त की गई। न्यायमूर्ति वी कामेश्वर राव आज पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे। राज्य सरकार ने चीनी मिल लगाने वाले निवेशकों के लिए प्रोत्साहन योजना घोषित की। ₹1 की टोकन राशि पर भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। और प्रदेश में बाढ़ की स्थिति में धीरे धीरे हो रहा है सुधार, अब भी 48 लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित। अब समाचार विस्तार से। ब्रिक्स नेताओं ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में अप्रैल 2025 में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। नई दिल्ली घोषणा पत्र में आतंकवाद के विरुद्ध कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाने की प्रतिबद्धता दोहराई गई। घोषणा पत्र में कहा गया है कि आतंकवाद का कोई भी रूप आपराधिक और अनुचित है, चाहे उसकी वजह कुछ भी हो और उन्हें अंजाम देने वाला कोई भी हो। ब्रिक्स नेताओं ने सदस्य देशों से आतंकवाद के खिलाफ बिना किसी दोहरे मापदंड के कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाने की बात कही है। साथ ही संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित सभी आतंकवादियों तथा आतंकी संगठनों के विरुद्ध मिलकर कार्रवाई करने का आग्रह किया है। संयुक्त घोषणा में पश्चिम एशिया में लगातार बढ़ते तनाव पर भी गहरी चिंता व्यक्त की गई है। इसमें सभी पक्षों से संयम बरतने और ऐसी कार्रवाइयों से बचने का आह्वान किया गया है जिनसे स्थिति और बिगड़ सकती है। ब्रिक्स देशों ने संवाद और कूटनीति के माध्यम से क्षेत्र में दीर्घकालिक समझ और स्थायी शांति, सुरक्षा तथा स्थिरता के लिए प्रयास तेज करने पर बल दिया है। ब्रिक्स ने दुनिया के कई हिस्सों में जारी संघर्ष तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में बढ़ते ध्रुवीकरण और विखंडन पर भी चिंता व्यक्त की है। आज ब्रिक्स सम्मेलन का दूसरा और अंतिम दिन है। ये सम्मेलन कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ था। सभी ब्रिक्स देशों के समर्थन से कल नई दिल्ली घोषणा पत्र 2026 जारी किया गया। ब्रिक्स देशों ने अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिए आपसी बातचीत, परामर्श और कूटनीतिक प्रयास के अपने संकल्प को दोहराया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में चल रहे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से द्विपक्षीय मुलाकात की। श्री मोदी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी साझा की है। अपने पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने भारत चीन संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा की। साथ ही अगले साल शुरू होने वाली चीन की ब्रिक्स अध्यक्षता के लिए राष्ट्रपति जिनपिंग को शुभकामनाएं भी दी। न्यायमूर्ति वी कामेश्वर राव आज पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे। लोक भवन में आयोजित समारोह में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। न्यायमूर्ति वी कामेश्वर राव पटना उच्च न्यायालय के 49वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। इससे पहले वे दिल्ली उच्च न्यायालय में न्यायाधीश थे। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में आयोजित होने वाले 69वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में भाग लेंगे। ये सम्मेलन कल से 18 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन में राष्ट्रमंडल देशों की संसद के पीठासीन पदाधिकारी, संसदीय लोकतंत्र, सुशासन और समसामयिक वैश्विक चुनौतियों से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा करेंगे। बिहार गन्ना उद्योग निवेश प्रोत्साहन नीति के अंतर्गत प्रदेश में चीनी मिल लगाने वाले निवेशकों को सरकार ₹1 की टोकन राशि पर 40 एकड़ भूमि उपलब्ध कराएगी। सरकार ने 5 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य में बंद पड़ी चीनी मिलों को खोलने के साथ ही 25 नई चीनी मिल लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय कमेटी भी बनाई गई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि नई चीनी मिल लगाने वाले निवेशकों को सरकार की ओर से 70 करोड़ रुपए की अनुदान राशि दी जाएगी।
प्रदेश के विश्वविद्यालयों में सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति के नियम और प्रक्रिया में बदलाव के लिए उच्च स्तरीय कमेटी गठित की गई है। राज्यपाल सह कुलाधिपति लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने मौजूदा नियुक्ति प्रक्रिया की समीक्षा कर सुधार और सुझाव देने के लिए 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। ये कमेटी 90 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंप देगी। लोक भवन ने समिति गठित करने के लिए अधिसूचना भी जारी कर दी है। प्रदेश के सभी 38 राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेजों और 46 पॉलिटेक्निक संस्थानों में विद्यार्थियों को जर्मन, फ्रेंच और जापानी भाषा का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसका उद्देश्य छात्रों को विदेशों में रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराना है। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और तकनीकी शिक्षा मंत्री शीला कुमारी ने इस सिलसिले में पटना में पॉलिटेक्निक संस्थानों के प्राचार्यों के साथ समीक्षा बैठक की। विभागीय मंत्री ने कहा कि राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेजों और पॉलिटेक्निक संस्थानों का रिसर्च फंड 3 लाख से बढ़ाकर 30 लाख रुपए करने का प्रस्ताव है। उन्होंने कहा कि वित्त विभाग की सहमति के बाद इसे कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने साइबर ठगी के लिए अवैध सिम उपलब्ध कराने वाले नेटवर्क के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। सीबीआई ने वैशाली जिले के महुआ से एक निजी टेलीकॉम कंपनी के क्षेत्रीय वितरक पंकज कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार वितरक पर 700 से अधिक सिम निर्गत करने का आरोप है। अवैध सिम बॉक्स संचालन और साइबर ठगी की घटनाओं में सिम का इस्तेमाल किया गया है। जांच में अधिकतर सिम कार्ड बिहार और उड़ीसा से जारी किए जाने की बात सामने आई है। पटना उच्च न्यायालय समेत प्रदेश की सभी अदालतों में राष्ट्रीय लोक अदालत का कल आयोजन किया गया। पटना के गांधी मैदान में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में चालान जमा करने को लेकर वर्ष 2021 से लंबित मामलों की सुनवाई हुई। इस दौरान 25,297 चालान का निपटारा किया गया, जिसमें 2,19,00,000 रुपए जमा किए गए हैं। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रदेश में बाढ़ की स्थिति में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। हालांकि अभी भी 15 जिलों के 87 प्रखंडों की 575 ग्राम पंचायतों में 48 लाख से अधिक लोग बाढ़ की चपेट में हैं। केंद्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार गंगा और पुनपुन नदी के जलस्तर में लगातार गिरावट आ रही है। पिछले 24 घंटों में बक्सर, भोजपुर, पटना के दीघा घाट, गांधी घाट, हाथीदह, सुल्तानगंज और भागलपुर समेत गंगा के सभी निगरानी केंद्रों पर जलस्तर में कमी दर्ज की जा रही है। पुनपुन नदी के जलस्तर में भी कमी दर्ज की गई है। मनेर में सोन नदी का जलस्तर घटा है, जबकि कोयलवर में नदी के जलस्तर में 1 सेंटीमीटर की मामूली वृद्धि दर्ज की गई है। कोसी नदी का जलस्तर खगड़िया जिले के बलतारा में खतरे के निशान से 121 सेंटीमीटर, कटिहार के कुर्सेला में 144 सेंटीमीटर ऊपर रिकॉर्ड किया गया। बागमती नदी का जलस्तर मुजफ्फरपुर के बेनीबाद में खतरे के निशान से 84 सेंटीमीटर और घाघरा नदी का जलस्तर सीवान के दरौली में 62 सेंटीमीटर ऊपर दर्ज किया गया है। आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए 1,248 सामुदायिक रसोई केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। 13 राहत शिविरों में प्रभावित लोगों के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। राहत और बचाव कार्यों के लिए SDRF की 27 और NDRF की 10 टीमें विभिन्न जिलों में तैनात हैं। प्रदेश में मानसून कमजोर पड़ने से बारिश की गतिविधियों में कमी आई है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इस दौरान मेघ गर्जन और वज्रपात की भी चेतावनी जारी की गई है।
1: राज्य के औरंगाबाद, अरिया, भभुआ, पूर्वी चंपारण, किशनगंज, मधुबनी, पूर्णिया, रोहतास, शिवहर, सीतामढ़ी, सुपौल एवं पश्चिम चंपारण जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। सबसे अधिक 44.6 मिलीमीटर बारिश मुजफ्फरपुर के बोचहा में रिकॉर्ड की गई। रेलवे ने त्योहारों के मद्देनजर कई स्पेशल ट्रेनों के परिचालन को मंजूरी दी है। ये रेलगाड़ियां 1 अक्टूबर से 30 नवंबर के बीच चलाई जाएंगी। पटना जंक्शन, पाटलिपुत्र जंक्शन, मुजफ्फरपुर और जोगबनी से सबसे अधिक विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी। पहले चरण में 16 स्पेशल ट्रेनों की समय सारणी तय कर दी गई है। इन ट्रेनों में पटना चंडीगढ़, पटना फिरोजपुर कैंट, पटना आनंद विहार, जोगबनी आनंद विहार, सीतामढ़ी दिल्ली और मुजफ्फरपुर ऋषिकेश के बीच चलाई जाने वाली ट्रेनें शामिल हैं। इधर रेलवे ने भीड़ को देखते हुए पटना से नियमित ट्रेनों में 1 या 2 अतिरिक्त स्लीपर कोच जोड़ने का भी निर्णय लिया है। प्रदेश के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अब्दुल जलील मस्तान का कल नई दिल्ली के एम्स में निधन हो गया। वे पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे थे। जलील मस्तान अमौर से 6 बार विधायक रहे हैं। वर्ष 2015 में विधानसभा चुनाव में जीत के बाद नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार में वो मंत्री बने। उनके निधन पर कई वरिष्ठ नेताओं और अन्य गणमान्य लोगों ने गहरा शोक व्यक्त किया है। रोहतास जिला मुख्यालय सासाराम के टकसाल संगत गुरुद्वारा में गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाशोत्सव श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर कीर्तन दरबार, गुरुवाणी पाठ और अरदास का आयोजन किया गया। अरवल जिला समाहरणालय परिसर में मिशन शक्ति योजना के तहत पालना घर की शुरुआत की गई है। कामकाजी महिलाओं को सुविधा देने के लिए जिला प्रशासन की ओर से शहर में अन्य स्थानों पर भी पालना घर स्थापित किए जाएंगे। सुपौल जिले के बसंतपुर प्रखंड अंतर्गत हृदयनगर गांव के समीप एक ट्रैक्टर ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। हादसे में मोटरसाइकिल सवार 3 लोगों की मौत हो गई। भोजपुर जिले के बड़हरा प्रखंड के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में महिला विकास निगम की ओर से महिलाओं के बीच सैनिटरी नैपकिन का वितरण किया गया। भागलपुर संग्रहालय के ऑडिटोरियम में चर्चित लघु फिल्म सूर्यमुखी का सफल स्क्रीनिंग किया गया। जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी अंकित रंजन ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। ये फिल्म राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सवों में प्रभावशाली उपस्थिति दर्ज करा रही है। और अब खबरें खेल जगत से। महिला T20 एशिया कप क्रिकेट का फाइनल मुकाबला आज भारत और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। दुबई में भारतीय समय अनुसार मैच रात 8 बजे शुरू होगा। महिला एशिया कप के इतिहास में भारत सबसे सफल टीम है। 7 बार की चैंपियन भारतीय महिला टीम टूर्नामेंट में अब तक अजेय रही है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में खेली गई 29वीं सब जूनियर राष्ट्रीय सेपक टाकरा चैंपियनशिप में बिहार ने एक स्वर्ण समेत चार पदक जीते हैं। बिहार की बालिका टीम ने डबल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता, जबकि बालक टीम ने रेगू, टीम इवेंट और क्वाड तीनों स्पर्धाओं में रजत पदक प्राप्त किया। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, ब्रिक्स में आम सहमति से घोषणा पत्र को मंजूरी दी, सीमा पार आतंकवाद और वित्त पोषण पर जीरो टॉलरेंस का संदेश। दैनिक भास्कर ने इस खबर को अपनी लीड बनाते हुए लिखा है, ब्रिक्स का संदेश, ट्रंप टैरिफ बर्दाश्त नहीं। दैनिक जागरण ने विदेशी मुद्रा भंडार से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए लिखा है, भारत सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा भंडार वाला दुनिया का चौथा देश। प्रभात खबर लिखता है, पटना में महाराष्ट्र मंडल की ओर से 14 से होगा गणेश उत्सव, 55 लाख रुपए की मुकुट से सुशोभित होंगे बप्पा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हुए आतंकवाद कतई बर्दाश्त नहीं करने का आह्वान। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव पर चिंता व्यक्त की गई। न्यायमूर्ति वी कामेश्वर राव आज पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे। राज्य सरकार ने चीनी मिल लगाने वाले निवेशकों के लिए प्रोत्साहन योजना घोषित की, 1 रुपए की टोकन राशि पर भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। और प्रदेश में बाढ़ की स्थिति में धीरे धीरे हो रहा है सुधार, अब भी 48 लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
1: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
2: सुनिए,
3: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
2: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
3: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
0: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
4: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
2: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
5: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
2: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
6: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
7: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
6: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
7: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
6: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी, जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
8: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
8: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम एक डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
8: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
9: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
10: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
11: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
9: आरआर मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
11: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
9: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
11: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
9: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
11: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, आरआर मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
9: कॉल करें 70-70-75-6300 या 70-70-75-4200 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
12: Now pick it up,
13: hello.
12: Now pick your phone up,
13: hello.
12: Pick it up,
13: hello.
12: Now pick your phone up,
13: hello.
14: जब फोन की घंटी बजती है तो कहते हैं
15: नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूँ आप सबकी दोस्त मनोरमा और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और समय हो गया हेलो माई चॉइस कार्यक्रम का, तो समय के साथ बिल्कुल हाजिर हूँ। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
16: हेलो
17: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
16: ठीक है, नमस्ते मैम।
17: नमस्ते,
16: और ठीक ठाक है?
17: सब बढ़िया है, आप कैसे हैं?
16: मैं ठीक हूँ।
17: तो क्या हो रहा था?
16: मैम इलाज कर रहे थे।
17: अच्छा, और ऐसे कहाँ से बोल रहे हैं आप?
16: अयोध्या से, अयोध्या के गुंधौर ग्राम से।
17: अच्छा जी, और आपका नाम?
16: सूरज प्रजापति। एक गाना सुनना था।
17: बता दीजिए।
16: गाना है जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास आए।
17: क्या दो लाइन गा के बता सकते हैं?
16: मैम गाय सुनना है?
17: ये गाना आप किसी को सुनवाना भी चाहते हैं?
16: सबसे पहले आपको और जितने सुनने वाले हैं सबसे।
17: ओके जी, तो फिर प्ले करते हैं गाना आपका, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM। नमस्ते,
16: नमस्ते।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
0: हमको गाना सुनना था, तो आप सुनाएंगे गाना? मैडम दीदी, आपकी क्या गाना दीजिएगा? भोजपुरी वही जो प्यार में नई देवा का। कौन सुन के गाना सुना दीजिएगा दीदी? आपकी फैमिली
1: और ये गाना
0: मेरे सबको सुनवाना चाहेंगे।
1: जी जी, और वैसे आपका नाम?
0: जय किशोर प्रसाद। हम छपरा के रहने वाले, छपरा बिहार के।
1: जी, तो फिर प्ले करते हैं गाना। जी।

0: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
1: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 8604348652 पे।
2: दादी, आप घुटने पकड़ कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
3: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
2: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
3: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
2: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा, जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
3: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
2: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
4: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
5: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
6: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
5: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
6: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
7: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
6: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
7: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
6: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
7: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
8: दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
9: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
10: नमस्कार मैम।
9: नमस्कार,
10: बरारी जगदीश से बोलते हैं।
9: कहाँ से?
10: बरारी।

0: बता दी।
1: चले कोनो बात नहीं, चलो ये बता दी।
2: हम तो फरमाइश करम पर या साड़ी अलग सिल्की रख के बाद में
1: तो दुलाइन गा के सुनाई थी तो ठीक रही
2: ना। दूसरा मेरी गाय
1: ना कहे अभी कोनो दिक्कत बा?
2: कोनो दिक्कत नहीं के।
1: हाँ तो जाए
2: ना ठीक है, कोनो बात नहीं के, सुना दूंगा ना मैं।
1: कौन सा?
2: ये करिया साड़ी वाला।
1: चली तरह गाना प्ले करते नहीं जी,
2: पहली बार जी
1: गाना आज ना तो कल बाजी हो जाए। ठीक बात, प्ले करते नहीं, सुनत रही सबके साथ रेडियो रिंग 90.4 FM।

0: रेडियो रेंज 90.4 है ना।
1: नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार,
1: अमर कुमार पारनावादा से बोल रहे हैं मैडम
0: जी। क्या हाल चाल बा?
1: ठीक बा मैडम। गाना सुनना है हमको,
0: बता दीजिए।
1: ये गाना नहीं है ये एक साथ छोड़ देला, भोजपुरी गाना, जब समय होला कमजोर कोई साथ छोड़ देला।
0: जी जी,
1: ये गाना हमको सुनना है मैडम। आप लोग को भी सुनवाना चाहते हैं। हमारा लड़का का नाम है राजा गुलशन, अप्पू मेरा भाई है, इन सब दोस्त को सुनाना चाहते हैं मैडम।
0: ओके जी, तो फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
1: किस दिन बजेगा मैडम?
0: आज नहीं तो कल बजी जाएगा, दोनों दिन में।
1: मतलब टाइम पे बताइए एक बार जी, मतलब किस टाइम पे बजाते हैं थोड़ा।
0: 5 से 7 के बीच बज जाएगा शाम।
1: आज के दिन?
0: आज भी बज सकता है और कल भी। आप 5 से 7 के बीच सुन लीजिएगा।
1: जी मैडम।
0: ओके।

0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी। लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोपराइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
0: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
2: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
0: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
0: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
0: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710-3992 या 90765-6750।
3: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
4: मैं बनूंगा।
3: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर? अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80029-94921 पे,
5: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
3: ओनली ऑन रेडियो रमझिम 90.4 AMZ पर।
6: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
7: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में। आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
6: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
7: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ 1 रुपए प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है, माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99-399-66-999।
8: Now pick your phone up.
9: दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80029-94911। जी हाँ, 80029-94911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
10: हेलो
9: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजीम 90.4 FM में।
10: नमस्ते मैडम जी।
9: नमस्ते,
10: नेहा बोल रहे भोरे से।
9: जी जी, कैसी है नेहा जी?
10: क्या समाचार है आपका, नाश्ता पानी हो गया?
9: जी मेरा भी बढ़िया है, और नाश्ता पानी भी हो गया है। और आपका?
10: मेरा भी अच्छा है।
9: तो क्या कर रही थी अभी आप?
10: आपका इंतजार, काम को कैसे फोन लगा रहे हैं तो अभी लगे।
9: चलिए,
10: काम करते हैं आप फोन लगाते हैं।
9: चलिए बढ़िया। तो क्या है फिर आज की फरमाइश?
10: फरमाइश अलका याग्निक का गाना।
9: गाने के बोल?
10: अलका याग्निक कोई भी गाना।
9: अच्छा, कोई भी?
10: जी।
4: चलिए बढ़िया। और ये गाना आप डेडिकेट भी करना चाहती हैं?
10: जी आपको, जितना रेडियो रिज्यूम आगे सब सुनता है, डायरेक्टर और जो अंकल जी है उसको बहुत अच्छा लगता है, अभी सब दोस्त सब सुनते हैं उसके साथ।
4: जी वैसे आपके घर परिवार में सब कोई ठीक है?
10: सब कोई अच्छा है, आप लोग अच्छा है, हमारे परिवार रेडियो रिज्यूम सब।
4: जी जी सब कोई बढ़िया है।
10: तो गाना शाम के चलेगा कल चलेगा?
4: आज नहीं तो कल बज ही जाएगा।
10: आज बजे है मेरा गाना, कल 8 बजे।
4: अब ये तो नहीं बता सकते, आज या कल दोनों दिन में बज ही जाएगा, सुन लीजिएगा।

0: वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में। जी बढ़िया है, आप बताइए।
1: हमारा भी ठीक है।
0: वैसे नाम बता दीजिए अपना।
1: रामा पंजारी।
0: जी जी, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है, अपना सुनाइए। आरोशी।
0: जी मैं भी अच्छी हूँ।
1: और रेडियो रिमझिम के परिवार अभी क्या है?
0: जी जी सबको बढ़िया।
1: हमको एक गाना सुनना था।
0: बता दीजिए।
1: गाने का बोल है छोटी सी उम्र।
0: कौन सा?
1: छोटी सी उम्र में अल्लाह को कहते हैं। और ये गाना आपको जितने सुनने वाले रोते हैं सबको सुनवाना चाहता हूँ।
0: ओके जी, तो फिर प्ले करते हैं गाना आपका। सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम।
2: छोटी सी उम्र में लग गया रोग, छोटी सी

0: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
1: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
1: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
3: ठक ठक।
4: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
5: अच्छा मिला ही नहीं।
4: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
6: जी हाँ, कमल श्री। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
4: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
6: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
7: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
8: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
9: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
10: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
9: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
10: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
9: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
10: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94-512-11001।
11: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
12: Now pick it up, pick it up.
13: Hello.
12: Now pick your phone up.
13: Hello.
12: Pick it up, pick it up.
13: Hello.
12: Now pick your phone up.
13: Hello.
14: जब फोन घंटे बजते हैं तो कहते हैं हेलो,
13: हेलो, हेलो, हेलो, हेलो।
15: तो दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009294911। जी हाँ, 8009294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
16: हेलो, नमस्ते जी।
17: नमस्ते,
16: कैसे हैं?
17: मैं बढ़िया हूँ।
16: पहचान रही हैं?
17: जी, आप रानी बोल, कैसे हैं?
16: जी मैं बढ़िया। और बताएं, नाश्ता उठा हो गया? जी मेरा भी हो गया है, आज नाश्ता में कोई लेट नहीं हुआ है, अच्छे से हो गया है। आप बताएं, आप अच्छे से किए ना? आपसे ज्यादा देर तक लोग बात करता है ना, तो आपको थोड़ा सा पानी और खाना दोनों जरूरी है ज्यादा देर बात करने के लिए।
17: कितना ख्याल रख रही है मेरा?
16: ख्याल तो रखना पड़ेगा ना, मतलब कुछ रिश्ता अपने दूर से बनाया ना बनाए, बड़ी दूर के रिश्ता अपना से कम नहीं होता है, उसके एक रिश्ता वो भी एक अलग होता है ना।
17: जी जी।
16: तो और बताएं, मौसम कैसा है?
17: मौसम तो ठीक है, कभी धूप कभी छांव हो रहा है।
16: हाँ, दोनों लगी रही है। और भी वो शो क्यों नहीं हो रहा है 12 बजे वाला? और आज भी नहीं चलेगा?
17: नहीं।
16: और आप लोग के चक्कर में बताइए, हम लोग रेडियो ऑन नहीं रहे यार, करते करते अब आवाज सुनने के मिले, अब मिले, अब मिले, बाकी केवल गाने सुनने के मिल रहा है।
17: अब क्या करिएगा?
16: अच्छा,
17: अभी जो रिकॉर्डिंग,
16: हाँ वो तो बात है दीपा जी, आधी आधी तो आप पूरी तीनों को सुनकर बहुत अच्छा लगता है और बात सही है, जब तक अगर उधर से ऑर्डर ना मिले तो आप लोग भी तो कुछ नहीं कर सकती हैं।
15: जी जी, ऑर्डर तो है ही, अगर हम बारह बजे वाला शो चलाए तो फिर ये छूट जाएगा ना।
16: हाँ हाँ, मुझे ये दो रिकॉर्डिंग आप 12 बजे तक में करेंगी जी?
15: नहीं, 12:30 बजे तक होता है।
16: 12:30 बजे तक, और अच्छा करती हैं, आपसे सारे लोग बात करने के लिए बेकरार रहता है और टाइम निकाल कर आता है। और आज मैं बताऊँ तो आज मेरा घर थोड़ी सी खुशियाँ है और आज मेरे एक भतीजा है प्यारा सा क्यूट सा, आज उसका जन्मदिन है दी।
15: तो मेरी तरफ से जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई।
16: और बाबू की तरफ से, उसका नाम है अभिमन्यु कुमार, तो बाबू की तरफ से आपको मेरी तरफ से थैंक यू सो मच बर्थडे विश करने के लिए। और मैं बताऊँ तो आज मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब है, मेरी हालत थोड़ी डाउन है
15: जी।
16: आज मैं बताऊँ आज की तरह थोड़ी सी मेरी तबीयत खराब है, बाकी आज बाबू के लिए थोड़ी सी टाइम निकाल कर मैंने सोचा था कि आज तो एक गाना बन रहा है उसके लिए।
15: जी जी, वैसे क्या हो गया, अपना ख्याल रखा करिए
16: जी। और ख्याल तो रख ही रही थी,
15: तो
16: दिखाने तो जाना पड़ेगा इसकी
15: जी।
16: तो जा दीजिए बिना देरी किए, जो एक फूल दो मालिन का मूवी है ना, उसमें एक सॉन्ग है बहुत प्यारा, ने मन में से परिश्ता तुमसे कैसा है ना था।
15: जी जी
16: जी, एक सॉन्ग बजा दीजिए।
15: ओके जी, तो फिर प्ले करते हैं गाना आपका
16: जी। और ये गाना सभी को रानी की तरफ से, आपको भी तरफ से, और सभी की तरफ से, मेरे तरफ से भी
15: जी।
16: और भी कोशिश करिएगा लोग शो को चलाने के लिए, इसलिए आप सभी के लिस्टनर सब बेचैन रहते हैं सब।
15: जी जी बिल्कुल,
16: अगर आप भी आती तो शो अच्छे लगता, आप भी शो करती तो आपको भी सुनकर तो अच्छा लगता।
15: कोशिश रहेगा,
16: चलिए और भी ना देरी की आगे भी कर लीजिए, और बीच बीच में पानी पीते रहिएगा और अपना भी ख्याल रखिएगा, आप है तो हम लोग भी है।
15: अच्छा।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
2: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
3: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ENT केयर सेंटर, सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
4: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
5: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
4: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
5: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
4: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया, बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
5: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय, अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
4: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज, और लखपतिया मोड़, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
6: दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009294911। जी हाँ, 8009294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगिन 90.4 FM में।
7: जी नमस्कार।
6: नमस्कार,
7: कैसन बने रहूगा?
6: जी बिल्कुल बढ़िया बनी। अपन
7: नाश्ता पानी बढ़िया से भइल?
6: हाँ हाँ, हो गई बार और भइल।
7: हाँ तो हो गई बटे, तो मौसम कैसन बा?
6: मौसम ठीक बा, ना ना बारिश तो नहीं है। ना वैसे नाम बता दिया अपन?
7: ना, दिल्ली से, दिल्ली राम।
6: अच्छा जी, वैसे क्या होता?
7: हम गाड़ी चलाए थे, गाड़ी लेकर निकल कौनिया के 11 पहुंच गल बा, तो कहना थोड़ा ट्राई करल जा। बुझाता था कि ये तीसरा कॉल है हमारे, एक मतलब
6: ना दूसरा कॉल है?
7: दूसरा कॉल है? हाँ, तो काफी देर से बात हो तो लखा ना, तो ऐसे कौनिया कहीं हो सकता है तीसरा कॉल हो?
6: दूसरा कॉल
7: कम से कम रोगे आई ना, दिन में कम से कम रोगे, थोड़ा बहुत प्रोग्राम चलाई।
6: जी जी, हम तो जरूर चलाई थी, लेकिन फिर जाना है 5 बजे के जन सो चले ला, ओकरो को भी तो चलावल जरूरी बाने।
7: सुनो भाई, दिन में रहबे ना करो लाइन,
6: कौन बताए 2-3 दिन और ही के बाद चलता।
7: हाँ, तो सोमवार के बाद तक कोई प्रोग्राम चल जो करी, जैसे कुछ कहल ना जा सकेला, मान लेने की समय जो बात कह के ना आवेला केहू के ना, सब जैसे के बैठे। तो कल सोनो भाई गौरव तो कहा तू साइकिल से, साइकिल कहा तू लड़ा ले रहो वही तो हम कौन है, तो कहे ना सोनू भाई के गनवा डेडिकेट कर दिया कि साइकिल से साइकिल लड़ावे ली तो दुनिया देख। आगे बता दिया ला
8: जी जी।
7: गाना में सबसे पहले अपने के भारतीय सोनू भाई के स्पेशल डेडिकेट भाई आप आगे जितना के सुनी जैसे साइकिल में कालू लड़ाई लड़ान जाके था डेडिकेट हुआ बाकी और भी कोई लाइन लागल बात है ज्यादा टाइम ना लगे हम तो नमस्कार
8: नमस्कार
7: आपका दिन शुभ हो दिल्ली से
8: जी प्ले करते हैं सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4 FM
7: जी नमस्कार।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगिंग 90.4 एफएम में।
0: मैडम जी प्रणाम।
2: प्रणाम।
0: हम तो पता नहीं है कि हमारा जो अब सेंटर है का।
2: ना ना बिल्कुल ना।
0: हाँ, कम से कम 185,000 के छोड़ दिलो नहीं। अगले देखो नहीं तो 3 बात कनेक्शन लगाई न तो आज हमार दिन खराब चल गयी।
2: अभी दिन खराब ना दे, देखी फोन लाग गई।
0: फोन लाग गई ये बड़का बात बा। तो सुनाई
2: सब बढ़िया बा, कैसे बानी?
0: बस ठीक है बानी। रोड लोग ध्यान में वो बना 11 बजे बानी। हम कहने की इतना पूछा था कि आज बात नहीं हो पाई।
2: अच्छा,
0: लेकिन रोखे वाला रोला तो होइए गए।
2: क्या होता रहा अभी?
0: काम होता पूरा दो दिन से थोड़ा बिजी रहनी, वही में टाइम निकाल के वो जरूरी था। मैंने की हाजिरी कम से कम लाग जाए ना तो आज एब्सेंट चल गई। हाँ, एको दिन एब्सेंट नहीं छे।
2: आज ना भैया,
0: आज ना भैया। कब तक चली रिकॉर्डिंग?
2: अभी लास्ट
0: रोला। लास्ट रोला तो क्या हुई?
2: देखा जाता क्या होता।
0: अरे चलाई वही ना टूटल फूटल। टूटल फूटल अगर सर कहत तो चलाई हो, अपना से ना कहो चलाई। बाकी सर अगर कहत तो टूटल फूटल डर भाई छोड़ के चलाई।
2: अच्छा ठीक बा, सर कहे तो चलबे करी।
0: सर कहे तो चलाये, मानना की ना चलाये टूटल फूटल वही हो। कोशिश करे, कोशिश करे तो कोशिश करे वाला की कभी हार तो होला ना। ऐसे कोशिश ना छोड़े के।
2: नाम बता दिया तुम?
0: गणेश कुमार मिश्रा दिल्ली से। फरमाइश ले ली शिल्पी राज के नया धमाल मचौले बा। भतरा तो के होता की तो गरदा उड़ा दे हो। ये सुना दम
2: जी। हर के सुनाए के भी बा।
0: पहला नंबर तो रोड़ा के सुनाए के बा, बाकी भारती जी के भी सुना देवे के बा, सोनी जी के भी सुना देवे के बा, और जितना हमारा नाम से जाने वाला वही सबके सुना देवे के बा।
2: ओके जी, ओके चलिए प्ले करते हैं रोड़ा गाना।
0: करिए
2: जी, सुनाते रहिए सबके साथ रेडियो रिंजिंग 90.4 एफएम।

0: रोज का पेट दर्द।
1: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
2: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
3: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
0: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
4: तब भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना।
5: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
4: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में।
2: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
6: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
7: Now pick your phone up.
8: Hello.
7: Pick it up, pick it up.
8: Hello.
7: Now pick your phone up.
8: Hello.
9: The phone ring, they touch the head, don't get it.
10: दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
11: हेलो
12: जी मैम, नमस्ते।
11: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंकिन 90.4 FM में।
12: जी मैम, धन्यवाद। कैसी हैं मैम?
11: जी मैं बढ़िया हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं?
12: तब आपकी दुआ है मैम, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। आप लोग बताइए आप।
11: जी जी बोलिए।
12: बोल रहे हैं, आप लोग बताइए आप लोग कैसी हैं? आप लोग ठीक ठाक है ना?
11: जी जी, हम लोग भी बढ़िया है, सबको यहाँ पे ठीक ठाक है।
12: चलिए, ऊपर वाला की दुआ रहे कि आप लोग और अच्छा से अच्छा रहे।
11: जी वैसे कहाँ से बोल रहे हैं आप?
12: मैम मैं आपका पुराना श्रोता हूँ, कटिया गोपालगंज से बोल रहा हूँ।
11: यार आपका नाम?
12: मेरा नाम संगम पासवान।
11: अच्छा
12: मैम, एक गाना गुनगुनाना चाहता हूँ।
11: बिल्कुल,
12: आज बोल रहा हूँ कि एक गाना गुनगुनाना चाहता हूँ।
11: जी जी बिल्कुल।
12: बेटी ऐसे चलो ताटे दुनिया।

0: बेटिए नरंगी है तो चली कैसे दुनिया, तू ही समझाओ ऊपर वाला दुश्मन बा दुनिया, तू ही समझाओ ऊपर वाला अरे दुश्मन बा दुनिया। बेटी के जितने लोग जान से भी जानी, कर घूमे ऊंचाउन करे नाम खूब जानी, बेटी के जान से ज्यादा जितने लोग जानी, कर घूमे जाए खाती ऊंचा नाम गानी, बेटी के कबो नहीं अरे करया अपमान हो, बेटी के कबो नहीं अरे करया अपमान हो, होली पराया उनकर अतने बकाम हो, होली पराया उनकर अतने बकाम हो। धन्यवाद मैम, हमारा ही लेखनीय शब्द था मैम, अगर कोई त्रुटि होगा तो मैं माफी चाहूंगा।
1: जी बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छा ही था और बहुत अच्छा ही गाया आपने।
0: जी मैम, अब मैं यहाँ पे पूना में हूँ, फिर भी मैं जब भी टाइम मिलता है तो कुछ ना कुछ छोट मोट लिखता रहता हूँ समाज के लिए, दुनिया के लिए, कि कुछ नया किया जाए, कुछ भेजा जाए। और रेडियो म्यूजिक के माध्यम से बहुत लोग सुनने वाले हैं, थोड़ा मेरा शब्द को भी लोग सुनेंगे तो शायद अच्छा लगे।
1: बहुत ही अच्छा गाया आपने।
0: जी मैम, खाना वाना खाई कि नहीं मैम?
1: जी जी हो गया। और आपका?
0: मैम हम लोग तो सुबह 8 बजे ड्यूटी जाते हैं तो 7:30 बजे तक खाना खा लेते हैं।
1: अच्छा चलिए बढ़िया, तो आज की फरमाइश यही है?
0: नहीं मैम, फरमाइश वो लेखनीय गाना था, गाना नहीं है, मैं खुद बनाया था उस गाने को। और गाना में मैं खुद गाना को मैंने लिखा था उसको, तो कोई गाना नहीं है मैम। और गाना हमको सुनवा दीजिए अपना जिला को, अनु दुबे का जो सॉन्ग है तुम मेरे बाद मोहब्बत को तरस जाओगे।
1: क्या आप ये भी गा के बता सकते हैं?
0: तुम मेरे बाद मोहब्बत को तरस जाओगे, तुम मेरे बाद मोहब्बत को तरस जाओगे, तुम मेरे बाद मोहब्बत को तरस जाओगे। दिल तो बच्चा है इसको ना समझ पाओगे, तुम मेरे बाद मोहब्बत को तरस जाओगे। यही सॉन्ग है मैम।
1: जी जी बहुत अच्छा गाते हैं आप।
0: मैम मैं तो क्या करूँ, मेरे को भी तो चॉइस था कि कुछ करूँ, लेकिन कुछ कंडीशन ठीक ठाक नहीं रहा मैम, इसलिए हमको छोड़कर परदेश आना पड़ा, नहीं तो मेरे को संगीत में बहुत मन लगता है मैम।
1: जी जी बहुत ही प्यारा गा रहे हैं।
0: वो तो इतना प्यार देने के लिए मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपको, कि हमारे जैसे आदमी को इतना आप लोग प्यार दुलार दे रहे हैं, तो मेरे लिए इससे बड़ा कुछ नहीं है मैम। मैं खुश हूँ, बहुत अच्छा हूँ कि आप लोग के जैसे मन हमारे मनोबल को बढ़ा रहे हैं। और अंजा आगे भी मैं कुछ ना कुछ रेडियो रूम जिम पे आऊंगा तो कुछ ना कुछ नया ही लेकर आऊंगा और सुनाऊंगा।
1: की और ये गाना जो बताया वो किसी को सुनवाना भी चाहते हैं?
0: अरे एकदम हमारा मित्र लोग है, एक दुबई में बिट्टू है उनको, और एक मध्य प्रदेश में है सोनू भाई को, और शशिकांत को, वो भी कुवैत में है, इन्हीं लोगों को मैम। तो लोग भी रेडियो ना मोबाइल के माध्यम से वो भी लोग सुनता है, तो लोग भी बोले थे कि अगर कभी फोन लगेगा तो यार मेरा भी मुझे भी डेडिकेट करना है, तो मैंने बोला ठीक है भाई, याद आएगा तो जरूर करूंगा। वहाँ बहुत दूर दूर से लोग जुड़े हैं मैम। और हम लोग

0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन, मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट दे

0: कर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी। लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
1: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोपराइटर। पहले आए पहले पाए।
0: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
1: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
2: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
3: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
2: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
3: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
4: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
3: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
4: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
3: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
4: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
5: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
6: भरोसे वाले चलेंगे,
5: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
6: और कीमत भी।
5: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
7: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
8: प्योरिटी यानी मामी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन तो मेरा सर्टिफिकेशन।
9: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
3: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर की करे खरीदारी।
9: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स, जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज।
10: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच, मेन रोड गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
9: कॉल करें 85070-32042 पे।
11: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
12: मैं बनूंगा,
13: मैं बनूंगा, मैं भी बनूंगा।
9: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
11: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80029-94921 पे,
9: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
11: ओनली ऑन रेडियो रमझिम 90.4 आमजेड पर।
14: Now pick it up, hello. Now pick your phone up, hello. Pick it up, hello. Now pick your phone up.
15: दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80029-94911। जी हाँ, 80029-94911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
16: हेलो, सलाम अलैकुम मैम।
15: वालेकुम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंजन 90.4 एफएम में।
16: गोपाल में
15: जी, कैसी हैं आप?
16: मैम आपने बताया, कैसी हूँ
15: जी? मैं भी बढ़िया हूँ। तो क्या कर रही थी
16: आप? आपके पास कॉल लगा रही हूँ, के साथ मिनट से कॉल कर रही हूँ। लाइब्रेरी दिया बहुत ऐसे मौसम कैसा है मैम? यहाँ तो बारिश हो रहा है,
15: हल्का धूप निकला हूँ।
16: हाँ, इधर भी बारिश हुआ था, बहुत देर हुआ था, करीब 10 बजे करीब हुआ। अभी भी धूप हल्का गुजर भी हुआ, मतलब मौसम ठंडा है
15: जी। तो वैसे कहाँ से बोल रही हैं आप?
16: गोपालगंज से बोल रहे हैं।
15: गोपालगंज में कहाँ?
16: गोपालगंज में पड़ता
15: है। चलिए ठीक है, तो फिर क्या है आपकी फरमाइश?
16: गाना सुनना है।
15: बता दीजिए।
16: देखा चाहिए गाना सुनना, क्या होता है जो गाना सुनना,
15: और गाना
16: कैसे कर सुनने वाले भाई अभियानी को सबसे सुनाना चाहती हूँ अपने घर वाले को।
15: बोलना जी, तो फिर आपको
16: बाय
15: बाय, सुनते रहिए सबका रेडियो 90.4 FM।

0: हेलो,
1: नमस्कार
0: नमस्कार जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगम 90.4 FM।
1: जी मैम, धन्यवाद। मैं सुनील कुशवाहा बात कर रहा हूँ आपसे।
0: जी ना।
1: बस ठीक है मैम, बस बैठे थे आपका फोन लगाते हुए मैम, तो बहुत मुश्किल से तो अभी तो फोन लगा मैम, 1 घंटा हो गया ट्राई चलते चलते मैम।
0: अच्छा
1: जी जी जी, बहुत बिजी जा रहा मैम।
0: जी जी।
1: और मैम वहाँ का मौसम तो क्या हाल चाल है मैम?
0: मौसम धूप निकला हुआ है।
1: बारिश नहीं है मैम?
0: नहीं, बारिश तो नहीं हो रही है
1: जी। हमारे यहाँ भी बारिश नहीं है मैम, अभी धूप है। अच्छा, मौसम बहुत अच्छा लग रहा है मैम। तो आज एक फरमाइश है मैम, हम आपके हैं कौन और गाने के बोल है दीदी तेरा देवल दीवाना, और सुनवाएंगे कितने रेडियो रिंगिंग दोस्त लोग सुनते, सभी दोस्तों के साथ सुनना चाहते हैं मैम।
0: ओके जी, तो फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
1: ओके मैम, धन्यवाद।

0: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94395461 या 97-0975-675।
4: सोहन मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
5: अरे टीना टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
4: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
5: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है, माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज, प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99-399-66-999।
3: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
2: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
3: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
2: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
3: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
3: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
2: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
6: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
4: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं, कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
6: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
4: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
6: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99-554-97-644।
7: दोस्तों ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
8: हेलो
9: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगिंग 90.4 FM में।
8: नमस्ते दीदी।
9: नमस्ते, ना आप नाम बता दी। चीनतनी नाम बता दी, फिर भी हम
8: बताएंगे।
9: तो हमारे तो बता दी की गणेश बोला नहीं ना, अरे कहा ना कि कहीं गलती से की और के नाम रख देती तो दिक्कत हो जाती ना।
8: और
9: सब बढ़िया बा, लेकिन ऐसा मत पूछी कहे के रहुआ जगह पर की बोरिंग है, पूछी जाओ दिखरा और नाम धरन
8: सकते। अब क्या होता है?
9: कुछ ना, बस रहुआ सभी से बातें होता।
8: अच्छा,
9: तो हम चला ले, लेकिन आप इंटरन कॉल रिकॉर्ड पता नहीं करो कि तो बनावा जरूरी
8: बने। तो दोपहर के बाद में क्या बना सको, दोपहर बाद में क्या बना सको, समाचार बाद
9: जी, तो समाचार के बाद भी तो सोच रहे था ना,
8: चले रहता ना चल रही थी।
9: अच्छा,
8: लेकिन कोनो काम से हार ना मान रहा, ठीक है, हिम्मत बात ना हम कहेंगे
9: जी जी रे, कभी बानी ना तो फिर हम कहा हिम्मत हारे।
8: चलो ठीक बात, मेला का सहारा के बाद कल बोला था प्यार का है के कई जो।
9: अच्छा, और गाना
8: के सुनवाए के सोनी दीदी के, आरती दीदी के और दिव्या दीदी रखे हम और कृष्णा को भी, और जितना रेडियो सुन रहे हैं सब लोग को रिक्वेस्ट करना
9: था। ओके, तो फिर प्ले कर।
8: ठीक बात, हम सुन रहे हैं, ठीक बात, ये गाना बजाए।
9: हाँ बिल्कुल, ठीक बात, प्ले कर देना, सुनते रहें सबके साथ रेडियो 90.4 FM।

0: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंकिन 90.7 में।
1: नमस्ते दीदी,
0: नमस्ते।
1: क्या हाल है?
0: जी बढ़िया बा, आपन बताइए।
1: सुना कहना उठाएंगे?
0: अभी तो अभी फोन होता तो अभी तो उठाई नहीं है।
1: कॉबे रिंग करा कर कॉबे से।
0: अच्छा, इससे पहले बात होत रहा।
1: हेलो मनोरमा दीदी है की भारती दीदी? मुझे आते नहीं की होती है।
0: रउआ पहचाने की हम की बोलते हैं?
1: लागत है मनोरमा दीदी।
0: हाँ
1: कहते नहीं लागत है। बोलिए, आज सब खाना हो गए?
0: हाँ हो गए बारा। और भैया?
1: हाँ हमने भी हो गए
0: जी। वैसे नाम बता दिया अपन।
1: करिश्मा कुमारी तीसरे नारायण से
0: आ रहा। और भैया कैसन बनी?
1: भैया ठीक बन। भैया ठीक बना। हम सब फूल लागत रहो सलाई नहीं है तब अंजाम धारा है तो देनी है। एक ही बार में लाग गए लेंगे।
0: देखिए हम भी हमके भी पता चल गया कि रउआ फोन करता है, वैसे उठा लेनी है जल्दी। नंबर तो ना पहचानिए लेकिन आवाज से पहचान लेनी है। बहुत ही अच्छा बोले नी
1: रुआ। भी बहुत अच्छा बोले
0: नी।
1: सबसे मोर समाज राहुल लगेला एगो भारतीय दीदी से।
0: हम तो बता दीसन की हमने के दोनों जानी से अच्छा रहुआ बात करे नी।
1: रहुआ करे नी बोली अच्छा लगेला रे। तो तू चली है बेरा?
0: तू तो ना चली। कहे से की
1: ना चली?
0: ना कहे से की अब हम ई जन कॉल रिकॉर्ड करते हैं एकरो के तो बनावल जरूरी बना।
1: हाँ बिहानो ना चली से
0: तो दो दिन तक बंदे रही।
1: कौन तारीख चले?
0: अब देखिए जब भारती जी आ जाए तो स्टार्ट हुए। अगर हमारे टाइम मिले तो कहीं हम ही स्टार्ट करें।
1: क्या करें
0: अब टाइम के हिसाब से देखा जाता।
1: मेला घूमा चली
0: ना? कहाँ पुरसद मेला घूमे के। मेला घूमे चल जाए तो फिर रउआ लोग के फरमाइश पूरा करी।
1: मेला घूमे मेला चल जाए घूमे।
0: रउआ कह रही है की ना
1: हमी गाँव का भी नव आई मेला तक नव जान सन 25-26 ले बाटे हमी गाँव का मेला।
0: अच्छा अच्छा बहुत मेला से उठाई ले ले हैं।
1: हाँ ले ले हैं
0: जी। चलिए तो क्या बात की फरमाइश?
1: फरमाइश रहुआ पसंद से अपना पसंद से
0: ना ना रहुआ लो इतना मुश्किल से कॉल कैले बानी लो तो रहुए लो बताई थी तो ठीक रही।
1: आज रहुआ पसंद से सुन ले करनी।
0: अच्छा
1: कौन को जा दी अपना पसंद?
0: हिंदी की भोजपुरी?
1: भोजपुरी को जा दी कौन?
0: चलिए ठीक बा क्योंकि सुनवाई के भी चाहते
1: नहीं। हाँ सबसे पहले रहुआ के भारती दीदी के स्वर्ण दीदी के जितना सुनता है वहाँ लगे।
0: चलिए ठीक बात गाना प्ले करता नहीं।
1: ठीक है बाय
0: बाय। सबके साथ रेडियो रिंग 90.4 FM।

0: Pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
0: Pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
2: तो श्रोताओं, अभी आप हेलो माई चॉइस सुन रहे थे और अब समय हो चुका है शो को समाप्त करने का। तो यदि आप चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना तो आप भी जुड़ सकते हैं। नंबर है 8009294911 पर कॉल करके। तो अब हमें दीजिए जाने की इजाज़त और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM। नमस्कार।
3: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527-88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527-88291 या 95238-74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है। तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
4: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

0: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
1: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
2: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
3: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
2: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
4: त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
5: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
4: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
5: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
4: और सबसे खास बात ये है, ऑन रोड कीमत यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
5: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
4: अभी कॉल करें 92899-22567 या 97714-8665
5: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 चैन पट्टी, गोपालगंज।

0: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा, मिला ही नहीं
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ, कमल श्री। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
2: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
3: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
4: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
5: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल।
4: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
5: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
4: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
5: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेष टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
4: संपर्क करें 84 7 10 30 9 92 या 90 7 65 65 7 50।

0: सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
1: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है, केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
0: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
2: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
3: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
2: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
3: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
2: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।

0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
3: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
1: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
1: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
1: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, MBBS, MS, सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा, MBBS, MD, DNB, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
1: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
0: कॉल करें 7070-7563-100 या 7070-7542-400 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।

0: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
1: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9939365923।
3: त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
0: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
3: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
0: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में, और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
3: और सबसे खास बात ये है ऑन रोड कीमत, यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
0: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
3: अभी कॉल करें 92899-22567 या 97714-8665,
0: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 चैन पट्टी, गोपालगंज।

0: दादी, आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
1: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
0: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
1: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
0: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
1: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
0: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
2: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388894 या 9198886973।
3: तो भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
4: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
3: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में।
5: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
6: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर,

0: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
1: मैं बनूंगा।
2: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
0: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029-94921 पे,
2: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
0: ओनली ऑन रेडियो रमझे 90.4 अमर जेड पर।

0: कसमानों खाने नचते ने सारे
1: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
2: मैं बनूंगा।
3: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
1: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029-94921 पे,
3: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
1: ओनली ऑन रेडियो रमझिम 90.4 आमज़ ज़ैट पर।
4: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
5: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
4: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
5: अभी कॉल कीजिए 90-066-7231।
4: कॉल कीजिए 90-066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
6: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
7: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
8: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
9: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
8: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
9: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
8: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
9: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
8: संपर्क करें 84710-30992 या 9765-65750।
1: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
2: मैं बनूंगा।
3: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
1: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029-94921 पे,
3: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
1: ओनली ऑन रेडियो रमझिम 90.4 आमज़।

0: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
1: मैं बनूंगा।
2: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
0: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029-94921 पे,
2: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
0: ओनली ऑन रेडियो रंजन 90.4 AMZ पर।
3: दादी, आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
4: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
3: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
4: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
3: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
4: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
3: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
5: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-86973। गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
3: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
5: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
3: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
5: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
3: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
5: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
3: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
6: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
7: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
6: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
7: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
6: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99-554-97-644।

0: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
1: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
0: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
1: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
0: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
3: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
3: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम इक डिरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपाल।

0: 67 या 97714-8665
1: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स NH 27 चैन पट्टी गोपालगंज।
2: दादी आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
3: अरे बेटा घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
2: दादी किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
3: हाँ बेटा डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
2: दादी अब डरने की जरूरत नहीं है, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
3: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
2: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
0: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-86973।
4: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
5: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
1: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करे 86034 48652 पे।
2: ठक ठक
3: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
4: अच्छा मिला ही नहीं।
3: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
5: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
3: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
5: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
6: प्रसाद क्लिनिक,
7: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
6: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंज स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास गोपालगंज,
7: बाकी दिन जादवपुर बाजार।

0: दौरान मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूं?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
2: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
3: मैं बनूंगा।
4: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
2: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029-94921 पे,
4: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
2: ओनली ऑन रेडियो रमझेन 90.4 आमजेड पर।
5: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में, आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527-88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527-88291 या 95238-74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।

0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोपराइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 90-066-7231।
0: कॉल कीजिए 90-066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
0: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
1: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
0: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
1: और सबसे खास बात ये है ऑन रोड कीमत, यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
0: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
1: अभी कॉल करें 9289-22567 या 9774-86165
0: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH27 चैन पट्टी, गोपालगंज।
3: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
3: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
4: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
1: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 9439456 या 97-0-97-06-575।
5: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
6: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं, कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
5: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
6: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
5: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99-554-97-644।

0: दादी, आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
1: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
0: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
1: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
0: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
1: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
0: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
2: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-86973।
3: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
4: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करे 7070-7563-100 या 7070-7542-100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करे www.shalyamhospital.com।
2: त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
0: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
2: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
0: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
2: और सबसे खास बात ये है ऑन रोड कीमत यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
0: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
2: अभी कॉल करें 92899-22567 या 97714-8661
0: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स NH 27 चैन पट्टी गोपालगंज।
5: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
6: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
7: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
8: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
7: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।

0: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
1: तो फिर देर क्यों, चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9939365923।
3: ठक ठक।
4: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
5: अच्छा मिला ही नहीं।
4: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
6: जी हाँ, कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
4: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
6: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
5: तो भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
4: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
5: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में।
6: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
7: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
8: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: शादी की ज्वेलरी लेनी है। हाँ,
1: भरोसे वाले से लेंगे,
0: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
1: और कीमत भी।
0: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
2: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
3: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन तो मेरा सर्टिफिकेशन।
2: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
4: 22 कैरेट 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
2: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने स्टेशन रोड गोपालगंज,
5: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
2: कॉल करें 85070-32042 पे। बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट

0: क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523 52599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99 39 39 51 51 पे।
1: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
2: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
1: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
2: अभी कॉल कीजिए 90 066 7231।
1: कॉल कीजिए 90 066 7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
1: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
2: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
2: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
1: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
3: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
4: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
5: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
4: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
5: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
4: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
5: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
4: संपर्क करें 84710309 या 9765065750।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
2: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
1: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
2: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
1: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
1: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
2: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।
1: त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
2: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
1: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
2: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
1: और सबसे खास बात ये है ऑन रोड कीमत, यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
2: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
1: अभी कॉल करें 92899-22567 या 97714-8665
2: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH27 चैन पट्टी, गोपालगंज।
3: दादी, आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
4: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
3: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
4: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
3: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर, गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा, जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
4: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
3: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
1: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच, गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-88-89793।

0: रोज रोज का पेट दर्द।
1: अरे तो उसे डांटते क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
2: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
3: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
0: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
4: ठक ठक।
5: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
6: अच्छा मिला ही नहीं।
5: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ, कमल श्री। याद रखें, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
5: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
2: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
7: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
8: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
7: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
8: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल

0: सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड शिव मंदिर के ठीक सामने गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527-88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527-88291 या 95238-74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
1: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
2: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
1: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
2: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
1: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
1: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
2: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
2: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
1: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
3: श्रोताओं, आप सुन रहे रेडियो रिमझिम 90.4 FM। अभी आप कुछ ही देर में सुनेंगे आकाशवाणी के नई दिल्ली केंद्र से दोपहर 4:15।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ब्रिक्स में ग्लोबल साउथ के देशों का विश्वास बढ़ा। प्रौद्योगिकी और महत्वपूर्ण खनिजों को हथियार बनाने के खिलाफ चेतावनी दी। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ता असीसी से द्विपक्षीय वार्ता की। रेलवे ने इस वर्ष अगस्त महीने में माल ढुलाई में 5.4% की वृद्धि दर्ज की। गुजरात के उकाई क्षेत्र में 11 इंच से अधिक बारिश हुई। राज्य के कई दक्षिणी जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी। इंडोनेशिया में 240 से अधिक यात्रियों वाली नौका के पलटने से लगभग 140 लोग और चालक दल लापता। और दुबई में एशिया कप महिला T20 क्रिकेट के फाइनल में आज रात भारत का मुकाबला वर्तमान चैंपियन श्रीलंका से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ब्रिक्स में ग्लोबल साउथ के देशों का विश्वास बढ़ा है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के आज दूसरे और अंतिम दिन भागीदार देशों के मुख्य सत्र में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स के भीतर विकसित समाधानों के लाभों को विकासशील देशों की जरूरतों के अनुसार ढाला और उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
1: कि ब्रिक्स में ग्लोबल साउथ के देशों का विश्वास बढ़ा है क्योंकि ब्रिक्स में उनकी आवाज सुनी जाती है, उनके अनुभव का सम्मान होता है और सॉल्यूशन उनके लिए ही नहीं, उनके साथ मिलकर बनाए जाते हैं। ब्रिक्स की शक्ति हमारी डायवर्सिटी और कोऑपरेशन में है। वी मे बी रूटेड इन डिफरेंट रियलिटीज बट टुगेदर वी राइज थ्रू कोऑपरेशन एंड ब्लॉसम फॉर ह्यूमैनिटी। हमारी विविधता हमारी पहचान रहे, हमारा सहयोग हमारी प्रेरणा बने और हमारी प्रगति पूरी मानवता के काम आए।
0: प्रधानमंत्री ने आगाह किया कि प्रौद्योगिकी और महत्वपूर्ण खनिजों यानी क्रिटिकल मिनरल्स का हथियार की तरह प्रयोग प्रगति के मार्ग में बड़ी बाधा बन सकती है। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स देशों ने नई तकनीकों को अपनाने में समावेशिता पर विशेष जोर दिया है। श्री मोदी ने कहा कि आपदाओं और बाधाओं ने यह साबित किया है कि आज की परस्पर जुड़ी दुनिया में कोई भी संकट किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता।
1: आज के इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में कोई भी संकट एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता, इसलिए हमने ब्रिक्स समूह में रिजिलियंस बढ़ाने पर विशेष बल दिया है। चुनौतियों को समय रहते पहचानना, उनके लिए तैयार रहना और तुरंत कार्रवाई करना भी उतना ही आवश्यक है। इसी सोच के साथ इन्फेक्शियस डिजीज के प्रिवेंशन और रिस्पॉन्स के लिए ब्रिक्स इंटीग्रेटेड अर्ली वार्निंग सिस्टम पर सहमति बनी है। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए अर्ली वार्निंग डेटा इंटीग्रेशन गाइडलाइन तैयार की गई है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि छोटे उद्यमों को ज्ञान, वित्त और नए बाजारों से जोड़ने के लिए ब्रिक्स एमएसएमई सहयोग पोर्टल स्थापित करने की पहल का प्रस्ताव रखा गया है। उन्होंने बताया कि शहरों के बीच बेहतर तौर तरीकों को साझा करने की सुविधा के लिए ब्रिक्स अर्बन मोबिलिटी हब का गठन किया गया है।
1: अर्बन मोबिलिटी हब की स्थापना की गई है। भारतीय सभ्यता में प्रकृति को माँ का दर्जा दिया गया है। सदियों से हमारी मान्यता रही है कि विकास और पर्यावरण एक दूसरे के विकल्प नहीं पूरक है। ब्रिक्स में भी हमने मानव विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन पर बल दिया है। यही सस्टेनेबिलिटी का आधार है। ये भावी पीढ़ियों के प्रति हमारा दायित्व भी है। इस दिशा में हमने कई पहलुओं पर प्रगति की है।
0: श्री मोदी ने बताया कि स्मार्ट ग्रिड और ऊर्जा भंडारण के लिए ब्रिक्स से डिजिटल उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई है।
1: स्मार्ट ग्रिड और एनर्जी स्टोरेज के लिए हमने ब्रिक्स डिजिटल सेंटर ऑफ एक्सलेंस बनाया है। यह हमारे क्लीन एनर्जी सिस्टम्स को अधिक रिलायबल, एफिशिएंट और एक्सेसिबल बनाने में मदद करेगा। एग्रो इकोलॉजी और रीजेनरेटिव एग्रीकल्चर के सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस पारंपरिक ज्ञान को मॉडर्न साइंस से जोड़ेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स नेटवर्क ऑन डिजिटल एग्रीकल्चर किसानों की जरूरतों को पूरा करेगा।
1: ब्रिक्स नेटवर्क ऑन डिजिटल एग्रीकल्चर किसानों के लिए नई संभावनाएं तैयार करेगा। इसके माध्यम से AI, जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी और

0: डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को किसानों की वास्तविक आवश्यकताओं के साथ जोड़ा जाएगा। टेक्नोलॉजी और क्रिटिकल मिनरल्स का वेपनाइजेशन हमारी साझा प्रगति में बाधा बन सकता है, इसलिए हमने टेक्नोलॉजी के एडॉप्शन में इंक्लूसिविटी पर बल दिया है।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारत ने ब्रिक्स के मंच से मित्रता, सहभागिता और सहयोग को आगे बढ़ाया है।
0: भारत ने ब्रिक्स के मंच से मित्रता, सहभागिता और सहयोग को आगे बढ़ाया है। हमारा प्रयास रहा है कि ब्रिक्स कोऑपरेशन केवल सरकारों तक सीमित न रहे। हमारे एंटरप्रेन्योर्स, फार्मर्स, रिसर्चर्स, विमेन, यूथ और सामान्य नागरिक भी इसके सक्रिय भागीदार बने।
1: अब चलते हैं भारत मंडपम, जहां हमारे संवाददाता दीपेंद्र मौजूद हैं। दीपेंद्र, सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन की मुख्य बातें क्या हैं?
2: देखिए जिसकनक, आपको बता दूं कि वर्ष 2006 में चार देशों के साथ शुरू हुए इस ब्रिक्स समूह में अभी 11 सदस्य देश और 10 साझेदार देश शामिल हैं। ब्रिक्स देश दुनिया की करीब 50% आबादी और वैश्विक व्यापार के लगभग 25% से अधिक का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत के लिहाज से बात करें तो ब्रिक्स देशों के साथ व्यापार जो है पिछले 5 सालों में 2 गुने से ज्यादा बढ़ा है, जो दर्शाती है कि ब्रिक्स समूह भारत के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक और व्यापारिक साझेदार के रूप में उभर रहा है। ब्रिक्स की स्थापना की बात करें तो 20 वर्ष पूरे हो चुके हैं और भारत चौथी बार जो है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है और इस कड़ी में अलग अलग विषयों पर लगभग 350 से अधिक बैठकें हो चुकी हैं। इस शिखर सम्मेलन के पहले ही दिन कल सर्वसम्मति से नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाया गया, जो भारत के लिहाज से एक महत्वपूर्ण उपलब्धि रही। इसमें ब्रिक्स देशों ने अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिए आपसी बातचीत, परामर्श और कूटनीतिक प्रयास के अपने संकल्प को दोहराया। आपको बता दूं कि भारत की अध्यक्षता में हो रहे इस शिखर सम्मेलन में भारत ने ग्लोबल साउथ की एक प्रमुख आवाज और समर्थक के रूप में अपनी वैश्विक भूमिका को और मजबूत किया है। जी कनक,
1: संबोधन की मुख्य बातें क्या थी प्रधानमंत्री की?
2: देखिए संबोधन में प्रधानमंत्री ने कई सारे बातें की, जिसमें सभी देशों को साथ लेकर चलने की बात थी। उसमें सबसे जो प्रमुख बात थी वो थी साउथ की आवाज, जो वैश्विक भूमिका जो है ग्लोबल साउथ, उस पर उनकी रही। जी
1: जानकारी के लिए धन्यवाद दीपेंद्र। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ता असीसी से द्विपक्षीय वार्ता की। श्री मोदी कजाकिस्तान, फिलीपींस, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपतियों सहित नाइजीरिया और युगांडा के नेताओं के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। और जानकारी के साथ है हमारे संवाददाता अक्षित वैद्यान। अक्षित, इन बैठकों में किन प्रमुख मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है?
3: जी कनक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से लेकर आज भी कई अहम द्विपक्षीय बैठकें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी पिछले 2 दिनों से लगातार दुनिया के अलग अलग नेताओं के साथ मुलाकात कर रहे हैं और आज भी बैठकों का ये सिलसिला जारी है। अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अलसीसी के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी आज कजाकिस्तान, फिलीपींस, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपतियों से के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। वहीं नाइजीरिया और युगांडा के उपराष्ट्रपतियों के साथ भी प्रधानमंत्री की अहम बैठकें निर्धारित हैं। यानी आज का दिन भी कूटनीतिक लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। इन बैठकों पर सबकी नजर टिक, जिनके माध्यम से भारत को द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने और क्षेत्रीय और वैश्विक विकास के विषयों पर अपना पक्ष रखने का अवसर मिलेगा। कुल मिलाकर ब्रिक्स के मंच से इतर प्रधानमंत्री मोदी की ये द्विपक्षीय मुलाकातें भारत की कूटनीति सक्रियता और वैश्विक साझेदारियों को नई दिशा देने के लिहाज से बेहद अहम मानी जा रही है। जी कनक,
1: धन्यवाद अक्षित। पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा है कि ब्रिक्स की सफल बैठक और नई दिल्ली घोषणा पत्र का अपनाया जाना भारत और वैश्विक व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपने सभ्यतागत मूल्यों में दृढ़ विश्वास रखते हुए एक बार फिर अपनी कूटनीति की शक्ति का प्रदर्शन किया है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि ब्रिक्स में ऐसे कई ठोस कदम उठाए गए जिससे भारत विकसित देश बनने की राह पर तेजी से अग्रसर होगा।
4: भारतीय हितों की सर्वाधिक रक्षा हो, भारतीय हितों का संरक्षण हो, यही मूल उद्देश्य होता है किसी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म का, कोई ऑर्गेनाइजेशन होता है। ये भारत के लिए गर्व का विषय है कि भारत में 11 देशों के राष्ट्राध्यक्ष आए और बहुत से विषयों पर चर्चा हुई, भारत विकसित भारत बने, इस दिशा में बहुत से ठोस कदम भी ब्रिक्स में भी उठाए गए।
1: भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ब्रिक्स में भारत की विदेश नीति सफल हुई है।
5: ये बहुत ही ऐतिहासिक सफलता है ब्रिक्स सम्मेलन की। इतनी बड़ी बड़ी जो कंट्रीज हैं, उन्होंने एक वैकल्पिक बहुत प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय मंच रखा है और राष्ट्रपति पुतिन ने एक बहुत बड़ी बात कही कि आज ब्रिक्स का जीडी

0: मिजोरम में बैराबी सैरांग रेलवे लाइन को शुरू हुए आज एक वर्ष हो गया है। इस रेलवे लाइन का उद्घाटन पिछले वर्ष आज ही के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। गृहमंत्री अमित शाह ने आज मुंबई में श्री गणेश ज्ञानरात्रि शीर्षक वाली पांडुलिपियों की एक विशेष प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। श्री शाह ने कहा कि भारत एक समृद्ध और तेजस्वी ज्ञान परंपरा का स्वामी है।
1: तो जो राष्ट्र अपनी स्मृति, इतिहास, संस्कार, भाषा, अभिलेख, परंपराओं की रक्षा नहीं कर सकता, वो कितना भी शक्तिशाली हो, उसको समाप्त होने में देर नहीं लगती है। और जो राष्ट्र अपनी स्मृति, इतिहास, परंपराएं, संस्कार, अभिलेख, भाषाएं, व्याकरण की रक्षा करता है, वो कितने भी साल गुलाम रहे, उसको कोई गुलाम नहीं बना सकता है। भारत इसका उदाहरण।
0: गुजरात के उकाई क्षेत्र में 11 इंच से अधिक बारिश हुई है। राज्य के कई दक्षिणी जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: मौसम विभाग ने दक्षिण गुजरात के नवसारी, वलसाड और केंद्र शासित प्रदेश दमन एवं दादरा और नगर हवेली में अत्यंत भारी बारिश की आशंका जताई है। अमरेली, भावनगर, भरूच, सूरत, तापी और डांग जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान किया गया है। अहमदाबाद, वडोदरा, राजकोट और गिर सोमनाथ सहित 13 अन्य जिलों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। आज सुबह 6 बजे तक राज्य के 193 तहसील में बारिश दर्ज की गई। हर्षल पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: मौसम विभाग ने आज गुजरात में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। आज मध्य महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, कच्छ, तेलंगाना, विदर्भ और मध्य प्रदेश में भी तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 2 दिवसीय ब्रिक्स सम्मेलन आज नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। इस दौरान महत्वपूर्ण नई दिल्ली घोषणा पत्र अपनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समापन समारोह में प्रतिभागी देशों की सहभागिता के लिए उनका आभार व्यक्त किया। श्री मोदी ने अगले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए चीन को शुभकामनाएं भी दी। भारत ने नेपाल के बाढ़ प्रभावित बेतरावती क्षेत्र में यातायात और संपर्क व्यवस्था को बहाल करने के लिए 70 मीटर लंबे बेली ब्रिज के पुर्जों की पहली खेप भेजी है। नेपाल में भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने बताया कि पुल के पुर्जों की ये पहली खेप कल हेटौड़ा में नेपाल के सड़क प्रभाग को सौंप दी गई। इंडोनेशिया में आज जावा सागर में खराब मौसम के कारण 240 से अधिक यात्रियों वाली एक नौका के पलटने से लगभग 140 लोग और चालक दल के सदस्य लापता हैं। बचाव दल ने बताया कि कम से कम 102 लोगों को बचा लिया गया है और एक यात्री का शव बरामद किया गया है। दुबई में एशिया कप महिला T20 क्रिकेट के फाइनल में भारत का मुकाबला वर्तमान चैंपियन श्रीलंका से आज रात 8 बजे होगा। सेमीफाइनल में भारत ने बांग्लादेश को और श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराया था। भारत और अफगानिस्तान के बीच पहला T20 क्रिकेट मैच आज शाम 7 बजे से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ब्रिक्स में ग्लोबल साउथ के देशों का विश्वास बढ़ा। प्रौद्योगिकी और महत्वपूर्ण खनिजों को हथियार बनाने के खिलाफ चेतावनी दी। 2 दिवसीय ब्रिक्स सम्मेलन आज नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। प्रधानमंत्री ने सम्मेलन से अलग मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ताह अस्सीसी से द्विपक्षीय वार्ता की। रेलवे ने इस वर्ष अगस्त महीने में माल ढुलाई में 5.4% की वृद्धि दर्ज की। गुजरात के उकाई क्षेत्र में 11 इंच से अधिक बारिश हुई। राज्य के कई दक्षिणी जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी। और दुबई में एशिया कप महिला T20 क्रिकेट के फाइनल में आज रात भारत का मुकाबला वर्तमान चैंपियन श्रीलंका से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: दोपहर न्यूज के बाद स्वागत है आप सभी का रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं आगे का प्रसारण।
4: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
5: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
6: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
5: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
6: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर

0: बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता: शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अंबेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
0: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लवराज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710309 या 9765655750। गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
0: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
1: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
0: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
1: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
0: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
1: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
0: कॉल नाउ 9656 या 9656 57902।
2: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
3: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
0: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
1: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।

0: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
1: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
1: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
3: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
4: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
3: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
4: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
5: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
4: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
5: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
4: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
5: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
1: दादी आप घुटने पकड़ कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
6: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
1: दादी किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
6: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
1: दादी अब डरने की जरूरत नहीं है, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा, जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
6: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
1: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें, और चलने फिरने में परेशानी हो रही है तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
7: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच, गोरखपुर। संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।

0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
3: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
3: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
3: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
3: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
4: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें बातें सब कुछ बदल गया है।
3: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
2: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से।
3: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें, आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद ल्यूको क्लिनिक हर शनिवार समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
2: पता जंगलिया मोहल्ला नूर मेडिकल के पास गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
5: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5 से 25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं श्रृंगार वाटिका।
6: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज या कॉल करें 86034 48652 पे।
7: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
1: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
0: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट प्रभु मार्केट, मोनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
2: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
3: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9939365923।
4: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
5: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
4: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
5: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ 1 रुपए प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399।

0: तब भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
0: ई बात बा तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में। महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
3: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
4: भरोसे वाले से लेंगे,
3: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
4: और कीमत भी।
3: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
0: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
5: प्योरिटी यानी मामी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन्स तो मेरा सर्टिफिकेशन।
0: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
6: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर की करे खरीदारी।
0: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज।
7: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
0: कॉल करें 85070-32042 पे। बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523-52599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99 39 41 51 पे।

0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोपराइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
0: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
0: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
1: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
0: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
1: और सबसे खास बात ये है ऑन रोड कीमत यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
0: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
1: अभी कॉल करें 9289-22567 या 9774-86165
0: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH27 चैन पट्टी, गोपालगंज। अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।

0: दादी, आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
1: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
0: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
1: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
0: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
1: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
0: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
2: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388894700 या 9198886973। गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
0: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
2: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
0: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
2: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
0: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
2: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
0: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
3: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
4: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
5: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
2: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।

0: रहिए।
1: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
2: त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
3: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
2: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
3: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
2: और सबसे खास बात ये है ऑन रोड कीमत यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
3: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
2: अभी कॉल करें 9289-22567 या 9779-14-8661
3: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 चैन पट्टी, गोपालगंज।
4: दादी, आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
5: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
4: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
5: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
4: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
5: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
4: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से

0: परामर्श करें।
1: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-86973।
2: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है। लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
0: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
0: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
2: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9939365923।
3: ठक ठक।
4: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
5: अच्छा मिला ही नहीं,
4: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमलश्री में।
6: जी हाँ, कमलश्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
4: आप भी आए कमलश्री, कमलश्री, कमलश्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
6: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
7: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
2: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98-527-88-291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98-527-88-291 या 95-238-74-088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
3: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
4: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2,00,000 रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी। लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4-5 किलोमीटर के अंदर।
3: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोपराइटर। पहले आए पहले पाए।
4: अभी कॉल कीजिए 90-066-7231।
3: कॉल कीजिए 90-066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
1: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
2: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
2: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
1: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
3: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
4: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
5: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
4: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
5: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
4: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
5: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
4: संपर्क करें 84710392 या 9765065750।

0: गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।
2: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
3: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
1: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
0: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
4: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
1: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं, उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
0: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है, चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से।
1: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें, आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय 10:00 से 2:00 तक।
0: पता जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94-512-11001।

0: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
1: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
2: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
3: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
2: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
4: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
5: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
2: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
6: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड गोपालगंज।
4: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
7: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
8: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
7: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में दो नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
9: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा, मिला ही नहीं
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
3: जी हाँ, कमल श्री। याद रखें, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
3: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
4: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523 52599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99 39 39 51 51 पे।
5: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रूपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
6: हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रूपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रूपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
5: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
6: अभी कॉल कीजिए 90 066 7231।
5: कॉल कीजिए 90 066 7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
2: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
1: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
2: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
1: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
1: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
2: कॉल नाउ 9656 या 9656 57902।
3: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
4: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
1: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94395461 या 97-0975-675।
5: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
6: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
5: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
6: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी या दाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
5: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99-554-97-644।

0: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
1: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
0: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
1: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
0: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
3: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
3: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरियावाड़ नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
3: जानकारी है तो कॉल करें 6205-62112 पे।
4: दादी, आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
5: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
4: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
5: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
4: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
5: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
4: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
6: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-86973।
7: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल।

0: अभी विशेषज्ञों द्वारा
1: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
1: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
2: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें बातें सब कुछ बदल गया है।
0: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से।
0: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें, आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद ल्यूको क्लिनिक। हर शनिवार समय 10 बजे से 2 बजे तक।
1: पता जंगलिया मोहल्ला नूर मेडिकल के पास गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
3: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ किससे इलाज कराऊँ कुछ समझ नहीं आ रहा।
4: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास जो है ENT स्पेशलिस्ट।
5: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुँचिए इस्मत ENT केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
3: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
6: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
7: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
8: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
7: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।

0: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
1: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
0: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में दो नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट प्रभु

0: मार्केट मोनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोड़ गोपालगंज, S2 बाजार होलसेल मार्ट गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
1: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
2: तो फिर देर क्यों, चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
1: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
3: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
1: संपर्क करें 9939365923।
4: ठक ठक।
5: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
6: अच्छा मिला ही नहीं।
5: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
7: जी हाँ, कमल श्री, याद रखिए सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
5: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
7: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।

0: प्रसाद क्लिनिक।
1: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
0: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंग स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज।
1: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
2: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
3: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
2: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
3: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
4: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98-527-88-291 या ईमेल ID radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98-527-88-291 या 95-238-74-088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।

0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोपराइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
0: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
0: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
0: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
0: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
3: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
4: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं, कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
3: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
4: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी या दाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
3: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554 97644।

0: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
1: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
0: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
1: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
0: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
3: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
3: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
3: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
4: त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
5: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
4: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
5: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
4: और सबसे खास बात ये है ऑन रोड कीमत यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
5: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
4: अभी कॉल करें 92899-22567 या 97714-8661
5: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स NH 27 चैन पट्टी गोपालगंज।
6: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
7: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
4: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
6: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
4: यहां आयुष्मान कार्ड से 5,00,000 रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
6: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
4: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
6: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
4: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
6: कॉल करें 70705763100 या 70705042100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
8: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें बातें सब कुछ बदल गया है।
5: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
4: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
5: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
4: पता जंगलिया मोहल्ला नूर मेडिकल के पास गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
9: नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के रोमांचकारी खेल हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। तो दोस्तों, हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में भाग लेने के लिए आपको कॉल करना होगा हर रविवार 12 बजे से हमारे स्टूडियो के नंबर 8029-94921 8029-94921 पर। तो दोस्तों आइए जान लेते हैं रेडियो रिमझिम के इस रोमांचकारी खेल के रूल्स को। इस हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में आपसे पूछे जाएंगे 10 प्रश्न, हर प्रश्न के होंगे 3 ऑप्शन जिसमें से होगा 1 सही जवाब और आपको मिलेंगे 10 सेकंड का समय। यदि आप 10 सेकंड में जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो आप इस खेल से बाहर हो जाएंगे। 10 प्रश्न के सही जवाब देने वाले प्रतिभागी को मिलेगा रेडियो रिमझिम के तरफ से एक एक्साइटिंग गिफ्ट और हमारे स्टूडियो में आने का मौका। तो दोस्तों आपको अपने तरफ से इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपके मोबाइल में पर्याप्त बैलेंस हो। साथ ही हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट के दौरान शांत जगह से कॉल करें और सबसे महत्वपूर्ण बात, किसी से सहायता ना लें और इंटरनेट पर जवाब सर्च ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं रेडियो रिमझिम के रोमांचकारी खेल हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट को और लेते हैं पहले प्रतिभागी का कॉल।
10: जी नमस्ते मैम।
9: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम में क्विज कॉन्टेस्ट में।
10: बहुत बहुत धन्यवाद।
9: नाम बता दीजिए।
10: शिवम
9: जी। कहाँ से बात कर रहे हैं शिवम जी?
10: पटना से बोल रहे हैं
9: जी। क्या करते हैं?
10: तैयारी करते हैं बीपीएससी का।
9: ओके, तो आप हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किए हैं तो तैयार हैं आप आज के पहले प्रश्न के लिए?
10: जी हाँ बिल्कुल।
9: आप अपने मम्मी पापा का नाम बता दीजिए।
10: माँ का नाम है मनोरमा देवी।
9: जी।
10: पापा का नाम है मनोज सिंह।
9: ओके, क्या करते हैं पापा जी?
10: प्राइवेट जॉब करते हैं।
9: ओके, तो लिया जाए आपसे आज का पहला प्रश्न। ओके, तो चलिए शिवम जी आपसे आज का पहला प्रश्न ये है

0: 1857 की क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? 1857 की क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, बी जलियांवाला बगीचा, सी स्वदेशी आंदोलन। आपका समय श्रोता
1: ये होगा
0: कन्फर्म है?
1: हाँ
0: लॉक कर दूँ?
1: हाँ
0: ओके। तो चलिए शिवम जी, आपके पहले प्रश्न का उत्तर को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। तैयार है आप दूसरे प्रश्न के लिए?
1: हाँ दूसरे के लिए तैयार।
0: आपसे आपका दूसरा प्रश्न ये है, टेलीविजन का आविष्कार सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन ए थॉमस एडिसन, बी जॉन लगी वेयर्ड और सी अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। आपका समय शुरू होता है अब।
1: टेलीविजन
0: टीवी।
1: ग्राहम बेल को करिए।
0: कंफर्म है?
1: हाँ थोड़ा बहुत नहीं तो कंफर्म ही है।
0: ओके तो लॉक कर दो।
1: हाँ
0: ओके। तो चलिए शिवम जी, आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी अलेक्जेंडर ग्राहम बेल को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल गलत है। सही उत्तर होगा जॉन लगी वेयर्ड। ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था।
1: कंफ्यूजन हो गया, टेलीफोन
0: जी। कोई नहीं, हेलो क्विज को टेस्ट में कॉल किए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले संडे फिर ट्राई करिएगा।
2: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में।
2: yes.
0: नाम बता दीजिए।
2: अंशु कुमार
0: जी। कहाँ से बात कर रहे हैं अंशु?
2: सालारपुर से
0: जी। क्या करते हैं आप?
2: पढ़ाई करते हैं
0: जी। किस क्लास में पढ़ते हैं?
2: 9th क्लास में
0: जी। आपका आगे का लक्ष्य क्या है?
2: आगे का लक्ष्य अभी सोचे नहीं।
0: तो आप हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किए हैं, तैयार हैं आप आज के पहले प्रश्न के लिए? ओके। आप अपने मम्मी पापा का नाम बता दीजिए।
2: पिताजी का नाम जितेंद्र यादव, मम्मी का नाम बासमती देवी
0: जी। क्या करते हैं पापा जी आपके?
2: मिल्क मैन है।
0: ओके लिया जाए पहला प्रश्न।
2: यस
0: ओके। अंशु जी, आपसे आपका पहला प्रश्न आज का ये है,

0: झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके खिलाफ युद्ध किया था? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके खिलाफ युद्ध किया था? ऑप्शन ए मुगल, बी अंग्रेज, सी मराठा। आपका समय शुरू होता है अब।
1: अंग्रेजों के खिलाफ।
0: कंफर्म है?
1: कंफर्म तो नहीं है।
0: चलो कर दो। ओके, तो चलिए अंशु जी, आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी को लॉक करते हैं। और बता दे कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर सही है। तैयार है आप दूसरे प्रश्न के लिए?
1: यस।
0: ओके, आज से आपका दूसरा प्रश्न ये है, अठारह सौ सत्तावन की क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, बी जलियांवाला बगीचा और ऑप्शन सी स्वदेशी आंदोलन। आपका समय शुरू होता है अब।
1: ऑप्शन फिर से बोलिएगा।
0: ऑप्शन ए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, बी है जलियांवाला बगीचा, सी है स्वदेशी आंदोलन।
1: ऑप्शन नंबर ए
0: प्रथम स्वतंत्रता संग्राम।
1: यस।
0: कंफर्म है?
1: कंफर्म नहीं है।
0: लॉक कर दो।
1: यस।
0: ओके, तो चलिए अंशु जी, आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए को लॉक करते हैं। और आपको बता दे कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर भी सही है। तैयार है आप तीसरे प्रश्न के लिए? ओके, आज से आपका तीसरा प्रश्न ये है, रेडियो का आविष्कार कब हुआ था? ऑप्शन ए 1908, बी 1895, सी 1687। आपका समय शुरू होता है अब।
1: ऑप्शन बी।
0: कंफर्म है?
1: बी कितना था मैम?
0: 1895।
1: और ए?
0: 1908।
1: ऑप्शन नंबर ए
0: 1908।
1: यस।
0: कंफर्म है?
1: कंफर्म तो नहीं है, लेकिन
0: फिक्स कर दो।
1: यस कीजिए।
0: ओके, चलिए अंशु जी, आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए 1908 को लॉक करते हैं। और आपको बता दें, आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल गलत है। सही उत्तर होगा 1895, ना कि 1908। हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल के बहुत बहुत धन्यवाद। अगले संडे की कोशिश, वेलकम, फिर कोशिश करिएगा।
2: हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं आप सबसे हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में। सुनते रहे रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
3: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
4: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
5: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ENT केयर सेंटर, सिसवन ढाला के उत्तर, RK मॉडल स्कूल के बगल, सिवान में।
3: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
6: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
7: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
8: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
7: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
9: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
10: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
9: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में दो नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट प्रभु मार्केट मौनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोड़ गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
11: ठक ठक।
12: काजी आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
13: अच्छा मिला ही नहीं।
12: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
7: जी हाँ कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
12: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
7: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
2: ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है रेडियो रिमझिम के रोमांचकारी खेल हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। अगर आप भी हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं और आजमाना चाहते हैं अपने ज्ञान और लक को, तो हर रविवार दोपहर 12 बजे से कॉल करें 8029-94-21 8029-94-21 पर। आइए लेते हैं अगले प्रतिभागी का कॉल।
14: हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में।
14: उसके लिए दिल से धन्यवाद है आपको। मैं रामविलास प्रसाद कुशवाहा बोल रहा हूँ, क्रीतपुर बघापुर की चंपारण से।
0: जी क्या करते हैं आप?
14: जी बिजनेस व्यापार है।
0: जी क्या कर रहे थे?
14: अभी तो दुकान पे हूँ और रेडियो रिमझिम से प्रोग्राम सुन रहे थे और समय देखे तो समय था अभी कॉन्टेस्ट का, तो सोचे की उसमें भी भाग ले लें।
0: चलिए अच्छा किया। की पढ़ाई कहाँ तक हुई है?
14: मैं ठीक ठाक।
0: ओके तो आप क्या करते हैं अभी?
14: बिजनेस व्यापार है अपना।
0: ओके
14: दुकानदारी।
0: चलिए अच्छी बात है। तो तैयार हैं आप आज के पहले प्रश्न के लिए?
14: जी।
0: ओके आप अपने मम्मी पापा का नाम बता दीजिए।
14: स्वर्गीय श्रीमती चंपा देवी और पिताजी का नाम है स्वर्गीय श्री बंसी प्रसाद कुशवाहा।
0: जी तो लिया जाए आपसे आज का पहला प्रश्न।
14: जी
0: तो रामविलास जी आपसे आपका पहला प्रश्न ये है

0: झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके खिलाफ युद्ध किया था? और आपको मैं बता दूं कि आप कॉल किए हैं, वहाँ आपके दोस्त लोग हैं, आप वहाँ से हट के बात करें, नहीं तो फिर मैं कॉल कट कर दूंगी।
1: जी हट गए हैं।
0: जी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके खिलाफ युद्ध किया था? ऑप्शन ए मुगल, बी अंग्रेज, सी मराठा। आपका समय शुरू होता है अब।
1: मुगल के खिलाफ।
0: कंफर्म है?
1: नहीं, गेस है।
0: ओके, तो लॉक कर दूं?
1: जी लॉक कर दीजिए।
0: ओके, तो चलिए रामविलास जी, आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी मराठा को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल गलत है। सही उत्तर होगा अंग्रेज। हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में कॉल किया, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले संडे फिर कोशिश करिएगा।
2: हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगजिंग के कार्यक्रम हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में।
2: जी नमस्ते मैडम।
0: नमस्ते, नाम बता दीजिए।
2: पीयूष, मेरा नाम है।
0: पीयूष
2: जी,
0: कहाँ से बात कर रहे हैं? पीयूष
2: नवादा से। जो शिवान घर है मेरा, नवादा में रहती हूँ।
0: जी जी, क्या करते हैं?
2: पढ़ाई करते हैं।
0: किस क्लास में पढ़ते हैं?
2: ग्रेजुएशन में।
0: ओके, आप इससे पहले भी हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में कॉल किए हैं?
2: पहले ना 2022 में किए थे, एक दो बार किए थे 2022।
0: ओके, आप आज किए हैं हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में कॉल, तो तैयार हैं आप आज के पहले प्रश्न के लिए?
2: जी तैयार हैं, पूछिए।
0: ओके, आप अपने मम्मी पापा का नाम बता दीजिए।
2: मम्मी का नाम गीता देवी, पिता का नाम उमेश ठाकुर।
0: जी, लिया जाए आपसे आज का पहला प्रश्न।
2: जी सुनाई दे रहे हैं मैम, पूछिए।
0: आज से आपका पहला प्रश्न ये है

0: 1857 की क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? 1857 की क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, बी जलियांवाला बगीचा, सी स्वदेशी आंदोलन। आपका समय शुरू होता है अब।
1: ऑप्शन नंबर ए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम।
0: लॉक कर दूं?
1: जी।
0: ओके, तो चलिए आपके पहले प्रश्न के उत्तर ऑप्शन ए को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप दूसरे प्रश्न के लिए?
1: जी तैयार।
0: ओके, आपसे आपका दूसरा प्रश्न ये है, टेलीविजन का आविष्कार सर्वप्रथम किसने किया था? टेलीविजन का आविष्कार सर्वप्रथम किसने किया था? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए थॉमस एडिसन, बी जॉन लगी वेयर्ड, सी अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। आपका समय शुरू होता है अब।
1: ऑप्शन नंबर बी होगा।
0: ऑप्शन बी जॉन लगी वेयर्ड। लॉक कर दूं?
1: जी लॉक कर दीजिए।
0: ओके, पीयूष जी आपके दूसरे प्रश्न के उत्तर को लॉक करते हैं। और आपको बता दे कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर भी सही है। तैयार हैं आप तीसरे प्रश्न के लिए?
1: जी तैयार।
0: आज से आपका तीसरा प्रश्न ये है, रेडियो का आविष्कार कब हुआ था? रेडियो का आविष्कार कब हुआ था? ऑप्शन ए 1908, बी 1895, सी 1687। आपका समय शुरू होता है अब।
1: एक बार और बोलिएगा मैडम
0: क्वेश्चन। ऑप्शन 1908, बी 1895, सी 1687।
1: ऑप्शन नंबर ए कर दीजिए। 1908। जी
0: कंफर्म है?
1: ना कंफर्म।
0: तो चलिए पीयूष जी आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए 1908 को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर गलत है। सही उत्तर होगा 1895, ना कि 1908।
1: 1895 नहीं पता
0: जी। कोई बात नहीं, हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किया, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले संडे फिर कोशिश करिएगा।
1: ठीक है।
0: ओके,
2: हेलो,
0: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट।
2: नमस्ते।
0: नमस्ते, नाम बता दीजिए।
2: रंजन।
0: कहाँ से बात कर रहे हैं रंजन जी?
2: आजमापुर से।
0: जी क्या करते हैं?
2: पढ़ाई करते हैं बीएड।
0: बीएड करके क्या करना है आगे, क्या सोचा है आपने?
2: गवर्नमेंट जॉब, कोई भी जॉब।
0: ओके, आप अपने मम्मी पापा का नाम बता दीजिए।
2: पिताजी नाम इंदर यादव और मम्मी का नाम बलराम सिक्की।
0: क्या करते हैं आपके पापा?
2: फार्मर।
0: ओके, दिया जाए आपसे आज का पहला प्रश्न। ओके, चलिए रंजन जी आपसे आपका आज का पहला प्रश्न ये है,

0: 1857 की क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? 1857 की क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, बी जलियांवाला बगीचा, सी स्वदेशी आंदोलन। आपका समय शुरू था अब।
1: इसको बी को क्लियर,
0: जलियांवाला बगीचा
1: नहीं, इसको हाँ उसी को
0: जलियांवाला बगीचा को फिक्स करें।
1: कंफर्म तो नहीं लग रहा है, बी को फिक्स कीजिए।
0: स्वदेशी आंदोलन कंफर्म है?
1: कंफर्म तो नहीं है,
0: तो लॉक कर दूं?
1: कर दीजिए। पहला ऑप्शन है स्वतंत्र संग्राम
0: जी,
1: तो इसी को फिक्स कीजिए।
0: किसको?
1: ऑप्शन ए को।
0: ओके, तो चलिए रंजन जी आपके पहले प्रश्न के उत्तर ऑप्शन ए को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप दूसरे प्रश्न के लिए? आपसे आपका दूसरा प्रश्न ये है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई किसके खिलाफ युद्ध की थी? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके खिलाफ युद्ध किया था? ऑप्शन ए मुगल, बी अंग्रेज, डी मराठा। आपका समय शुरू होता अब।
1: मराठा का किस कीजिए।
0: कंफर्म है?
1: हाँ, इसमें थोड़ा बहुत कंफर्म है, लग रहा है यही होगा।
0: ओके, तो चलिए लॉक करते हैं आपके दूसरे प्रश्न के उत्तर को। और आपको बता दें कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी मराठा बिल्कुल गलत जवाब है। सही जवाब होगा आपका अंग्रेज,
1: अंग्रेज के खिलाफ
0: जी।
2: हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं आप सबसे हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। सुनते रहे रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
3: सुनिए सुनिए सुनिए,
4: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
3: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
4: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
3: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
5: तब भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
6: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना?
5: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में।
3: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
7: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
3: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523 5599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99 39 41 51 51 पे।
8: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
9: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
8: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोपराइटर। पहले आए पहले पाए।
9: अभी कॉल कीजिए 90-066-7231।
8: कॉल कीजिए 90-066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
2: ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है रेडियो रिमझिम के रोमांचकारी खेल हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। अगर आप भी हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं और आजमाना चाहते हैं अपने ज्ञान और लक को, तो हर रविवार दोपहर 12 बजे से कॉल करें 8029-94-21 8029-94-21 पर। आइए लेते हैं अगले प्रतिभागी का कॉल।
0: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगम के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में।
10: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, नाम बता दीजिए।
10: ज्योति कुमारी
0: जी। क्या करती हैं ज्योति जी?
10: मैम मैं पढ़ाई करती हूँ, मैरवा से बोल रही हूँ।
0: किस क्लास में पढ़ती हैं?
10: ग्रेजुएशन कर रही हूँ।
0: अच्छी बात है
10: जी।
0: उसके अलावा और भी कुछ करती हैं?
10: कंपटीशन लाइन में हूँ, उसी का तैयारी करती हूँ।
0: तो आप हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल की है तो तैयार हैं आप आज के पहले प्रश्न के लिए?
10: जी मैम।
0: आप इससे पहले भी हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में जुड़ी हैं?
10: नहीं, फर्स्ट बार हूँ।
0: ओके, आप अपने मम्मी पापा का नाम बता दीजिए।
10: मम्मी का नाम गीता देवी, गीता का नाम उमेश ठाकुर।
0: जी, क्या करते हैं आपके पापा?
10: जॉब करते हैं
0: जी। किस चीज का?
10: रेलवे में
0: है। जी, अच्छी बात है। आपका आगे का लक्ष्य क्या है?
10: क्लीन सर्विस है मैम।
0: ओके, तो लिया जाए ना आज का पहला प्रश्न।
10: जी मैम।
0: ओके ज्योति जी, आपसे आज का पहला प्रश्न ये है,

0: रेडियो का आविष्कार कब हुआ था? ऑप्शन ए 1908, बी 1995, सी 1687। आपका समय शुरू होता है अब।
1: एक बार और ऑप्शन बोलिएगा मैम।
0: ऑप्शन ए 1908, बी 1895 और सी 1687।
1: 1895 को ही लॉक कर दीजिए।
0: कंफर्म है आप?
1: जी मैम।
0: ओके, तो लॉक कर दो ना।
1: जी
0: ओके। तो चलिए ज्योति जी, आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी 1895 को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार है अब दूसरे प्रश्न के लिए?
1: जी।
0: ओके, आपसे आपका दूसरा प्रश्न ये है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके खिलाफ युद्ध किया था? ऑप्शन ए मुगल, बी अंग्रेज, सी मराठा। आपका समय शुरू होता है अब।
1: अंग्रेजों के साथ में।
0: कंफर्म है?
1: जी।
0: ओके, तो चलिए ज्योति जी, आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर को लॉक करते हैं। और आपको बता दे कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर भी सही है। तैयार है आप तीसरे प्रश्न के लिए?
1: जी मैम।
0: ओके, आपसे आपका तीसरा प्रश्न ये है, अठारह सौ सत्तावन की क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, बी जलियांवाला बगीचा और सी स्वदेशी आंदोलन। आपका समय शुरू होता है अब।
1: ऑप्शन ए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम।
0: कंफर्म है?
1: जी मैम।
0: लॉक कर दूं?
1: हाँ।
0: ओके, तो चलिए ज्योति जी, आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को लॉक करते हैं।

0: जेंडर ग्राहम बेल
1: कंफर्म है
0: जी मैम,
1: तो लॉक कर दो।
0: हाँ, 1876 में किए थे
1: जी। तो चलिए ज्योति जी, आपके चौथे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी को लॉक करते हैं। और आपको बता दे कि आपके चौथे प्रश्न का उत्तर भी सही है। तैयार हैं आप पांचवे प्रश्न के लिए?
0: जी मैम।
1: ओके, आपसे आपका पांचवा प्रश्न ये है। बिजली का बल्ब किसने बनाया था? ऑप्शन ए माइकल फैराडे, बी थॉमस एडिसन और सी जेम्स वाट। आपका समय शुरू होता है अब।
0: ऑप्शन बी मैम बोली है आप, थॉमस एडिसन है
1: जी। थॉमस एडिसन
0: अमेरिका के थे।
1: कंफर्म है?
0: जी मैम।
1: तो लॉक कर दो।
0: जी।
1: ओके, चलिए आपके पांचवे प्रश्न के उत्तर को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पांचवे प्रश्न का उत्तर भी सही है। तैयार हैं आप छठे प्रश्न के लिए?
0: जी मैम।
1: ओके, आपसे आपका छठा प्रश्न ये है। किस तत्व को ब्लैक गोल्ड कहा जाता है? ऑप्शन ए कोयला, बी पेट्रोलियम, सी यूरेनियम। आपका समय शुरू होता है अब।
0: पेट्रोलियम को।
1: कंफर्म है?
0: जी मैम।
1: लॉक कर दो।
0: जी मैम।
1: ओके, तो चलिए ज्योति जी, आपके छठे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी को लॉक करते हैं। और बता दें कि आपके छठे प्रश्न का उत्तर भी सही है। तैयार हैं आप सातवें प्रश्न के लिए?
0: जी।
1: ओके, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? ऑप्शन ए बुलर झील, बी चिल्का झील, सी नैनी झील। आपका समय शुरू होता है अब।
0: बुलर झील मैम।
1: कंफर्म है?
0: क्या ऑप्शन बोले हैं?
1: ऑप्शन ए बुलर झील, बी चिल्का झील, सी नैनी झील।
0: चिल्का झील होगा मैम का।
1: कंफर्म है?
0: जी मैम।
1: लॉक कर दो।
0: हाँ।
1: ओके, तो चलिए ज्योति जी, आपके सातवें प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी चिल्का झील को लॉक करते हैं। और बता दे कि आपके सातवें प्रश्न के उत्तर भी सही है। तैयार है आप आठवें प्रश्न के लिए?
0: जी मैम। कितना सवाल होता है मैम?
1: 10 होता है। आपसे आपका आठवां प्रश्न ये है। इंटरनेट पर पहली वेबसाइट कब बनी थी? ऑप्शन ए 2000, बी 1991, सी 1989। आपका समय शुरू होता है अब।
0: ऑप्शन दो को ही बोली है।
1: ऑप्शन ए 2000, बी 1991, सी 1989।
0: ऑप्शन बी 1991 बोली है। यही होगा शायद। यही होगा मैम।
1: कंफर्म है?
0: थोड़ा थोड़ा।
1: तो लॉक करूं?
0: जी मैम, कर दीजिए।
1: ओके, तो चलिए ज्योति जी, आपके आठवें प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके आठवें प्रश्न का उत्तर भी सही है। तैयार है आप नौवे प्रश्न के लिए?
0: जी।
1: ओके, आपसे आपका नौवा प्रश्न ये है। भारत में किस जगह पर ऐसी मंदिर है जहां प्रतिमा की परछाई दिन में किसी भी समय जमीन पे नहीं पड़ती? ऑप्शन ए उड़ीसा, बी केरल, सी गुजरात। आपका समय शुरू होता है अब।
0: फिर एक बार ऑप्शन बोलिएगा मैम।

0: ऑप्शन ए उड़ीसा, बी केरल, सी गुजरात। समय आपका 10 सेकंड का ही है।
1: केरल को ही तो ब्लॉक कर दीजिए।
0: कंफर्म है?
1: नहीं कंफर्म नहीं है। ये एक बृहदेश्वर मंदिर है तमिलनाडु में, शायद हमको वहीं पता नहीं कि वो इस पे छाया नहीं चलता है, छाया नहीं पड़ता है।
0: अच्छा तो लॉक करूँ केरल को?
1: जी।
0: ओके तो चलिए ज्योति जी, आपके 9वें प्रश्न के उत्तर ऑप्शन बी केरल को लॉक करते हैं। और बता दे कि आपके 9वें प्रश्न का उत्तर गलत है। सही उत्तर होगा गुजरात, सोमनाथ मंदिर है।
1: ठीक है
0: जी। हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल की बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं आप सबसे हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में। सुनते रहे रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
4: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
5: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
4: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
5: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीठ की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
4: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
6: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
7: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
6: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
7: अच्छा तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
6: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
8: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
9: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
8: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
9: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
8: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
9: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
10: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
11: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
10: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
11: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
8: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी।
11: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार्य एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
8: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
11: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
8: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
2: ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है रेडियो रिमझिम के रोमांचकारी खेल हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में। अगर आप भी हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं और आजमाना चाहते हैं अपने ज्ञान और लक को, तो हर रविवार दोपहर 12 बजे से कॉल करें 8029-94921 8029-94921 पर। आइए लेते हैं अगले प्रतिभागी का कॉल।
12: हाँ जी मैडम, नमस्कार।
0: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंजन के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में।
12: जी गुड्डू कुमार यादव
0: जी, हम तो बात कर रहे हैं गुड्डू जी। जी क्या करते हैं आप?
12: हम पढ़ाई करते हैं
0: जी। किस क्लास में पढ़ते हैं?
12: अभी तो हम ग्रेजुएशन पास आउट हो गए हैं, जनरल कॉम्पिटिशन में तैयारी करते हैं।
0: जी, तो आपका आगे का लक्ष्य क्या है गुरु जी?
12: आगे बढ़ो।
0: चलिए अच्छी बात है। लिया जाए आपसे आज का पहला प्रश्न
12: जी।
0: आप अपने मम्मी पापा का नाम बता दीजिए।
12: पिताजी का नाम उमा शंकर यादव और माता जी का नाम
0: जी। क्या करते हैं आपके पापा?
12: काम करते हैं कंस्ट्रक्शन लाइन में।
0: तो लिया जाए आपसे आज का पहला प्रश्न।
12: यस मैम।
0: ओके, आज का पहला प्रश्न ये है

0: टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, बी सैमुअल मोर, सी गुटेनबर्ग। आपका समय शुरू होता है अब।
1: ऑप्शन ए को ठीक कीजिए, ग्राहम बेल को।
0: कंफर्म है?
1: यस मैम।
0: ओके, तो चलिए गुरुजी आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार है आप दूसरे प्रश्न के लिए?
1: यस मैम।
0: ओके, आपसे आपका दूसरा प्रश्न ये है, रेडियो का आविष्कार कब हुआ था? रेडियो का आविष्कार कब हुआ था? ऑप्शन ए 1908, बी 1895, सी 1687। आपका समय शुरू होता है अब। कंफर्म है?
1: कंफर्म तो नहीं है।
0: तो लॉक कर दो। ओके, तो चलिए गुरुजी आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी 1687 को लॉक करते हैं। और बता दे कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर गलत है। सही उत्तर होगा 1895, ना कि 1687। हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले संडे फिर कॉल करिएगा।
2: हेलो,
0: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिजन के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में।
2: जी नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, नाम बता दीजिए।
2: बिमलेश शर्मा है, बड़दा से।
0: जी, क्या करते हैं बिमलेश जी?
2: पढ़ते हैं।
0: किस क्लास में पढ़ते हैं?
2: और 12th में पढ़ते हैं और पढ़ाते भी।
0: अच्छी बात है। तो आपका आगे का लक्ष्य क्या है?
2: अभी सोचे नहीं है, लेकिन अगर हमको मतलब थोड़ा लगता है कि चाहिए।
0: अच्छी बात है।
2: मतलब अभी सोचे मतलब नहीं है, लेकिन हमको थोड़ा थोड़ा लगता है कि टीचिंग में जाना चाहिए हमको, मतलब पढ़ाने के हिसाब से।
0: जी जी।
2: हाँ, क्योंकि अभी शिक्षकों को पढ़ाते हैं ना, तो इसीलिए लगता है कि टीचिंग में जाना चाहिए।
0: चलिए अच्छी बात है, पढ़ाते हैं तो वैसे अपने इंटरेस्ट का भी पता चलता है।
2: यस मैम।
0: जी, तो बता दीजिए मम्मी पापा का नाम।
2: जी, मम्मी का नाम श्रीमती सुधांशु देवी, पिता का नाम श्री सुभाष शर्मा।
0: ओके, क्या करते हैं पापा?
2: जी किसान है।
0: ओके, आप हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किए हैं तो तैयार हैं आप आज के पहले प्रश्न के लिए?
2: यस मैम।
0: ओके, लिया जाए आपसे आपका पहला प्रश्न।
2: यस मैम।
0: ओके, आपसे आपका आज का पहला प्रश्न ये है,

0: कौन सा राज्य चाय के बगान कहलाता है? कौन सा राज्य चाय का बगान कहलाता है? ऑप्शन ए बिहार, बी असम, सी कर्नाटक। आपका समय शुरू है अब।
1: जी बिहार होगा।
0: कंफर्म है? हाँ
1: नहीं मैम, बिहार होगा।
0: बिहार को फिक्स करें?
1: यस मैम।
0: ओके तो चलिए विमला जी, आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए बिहार को लॉक करते हैं। और बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर ही गलत है। सही उत्तर होगा असम, ना कि बिहार।
1: मतलब दो ही ऑप्शन था,
0: बिहार था, असम था, कर्नाटक था, तीन ऑप्शन था।
1: ओ मैम, तुम असम सुने ही, बस कर्नाटक और बिहार ही सुनाई दिया।
0: तो आपको तो पता होना चाहिए ना कि तीन ऑप्शन है, आप फर्स्ट टाइम तो जुड़े नहीं हैं।
1: यस मैम, ठीक है फिर अगले बार ट्राई करेंगे।
0: जी
2: नमस्कार।
0: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगिम के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में।
2: हम सिविल कुमार बोल रहे हैं।
0: जी कहाँ से बात कर रहे हैं? सिविल
2: मीरगंज हरसौली से।
0: जी आप हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किए हैं तो लिया जाए आपसे आज का पहला प्रश्न।
2: हाँ एकदम।
0: ओके तैयार है आप पहले प्रश्न के लिए?
2: हाँ तैयार है।
0: अपने मम्मी पापा का नाम बता दीजिए।
2: पिताजी का नाम राम किशोर भगत, मम्मी का नाम मालती देवी।
0: क्या करते हैं पापा जी?
2: पापा जी किसान के काम।
0: आप कुछ करते हैं कि पढ़ाई छोड़ के घर पे ही आए ऐसे ही?
2: नहीं अभी एडमिशन डालना है बीए में।
0: ओके
2: हाँ घर पर रहते हैं तो खेती बाड़ी में जो काम होता है वो देख लेता है।
0: ओके तो लिया जाए पहला प्रश्न।
2: जी
0: तो आपसे आपका पहला प्रश्न ये है

0: टेलीविजन का आविष्कार सर्वप्रथम किसने किया था? टेलीविजन का आविष्कार सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन ए थॉमस एडिसन, और ऑप्शन बी जॉन लगीवियर, और ऑप्शन सी अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। आपका समय शुरू होता है अब।
1: ऑप्शन बी को लॉक कीजिए।
0: जॉन लगीवियर कंफर्म है?
1: कंफर्म नहीं है, लेकिन फिर भी लग के सारे चल रहे हैं।
0: तो चलिए सिबुल जी, आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी जॉन लगीवियर को लॉक करते हैं। और बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप दूसरे प्रश्न के लिए?
1: जी।
0: ओके, तो आपसे आपका दूसरा प्रश्न ये है सिबुल जी, रेडियो का आविष्कार कब हुआ था? ऑप्शन ए 1908, ऑप्शन बी 1995, और ऑप्शन सी 1687। आपका समय शुरू होता है अब।
1: ऑप्शन ए होगा। कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन ऑप्शन ए लग रहा होगा।
0: ओके, 1908
1: जी,
0: तो लॉक कर दो।
1: कर दीजिए।
0: ओके, तो चलिए सिबुल जी, आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए 1908 को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल गलत है। सही उत्तर होगा 1895, ना कि 1908। हेलो, कुछ कॉन्टेस्ट में कॉल किए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले संडे फिर ट्राई करिएगा।
2: हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं आप सबसे हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। सुनते रहे रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
4: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
5: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
4: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
5: पता जंगलिया मोहल्ला नूर मेडिकल के पास गोपालगंज। कॉल करें 9452111001।
6: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
7: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर एमडी सादाब के पास, जो है ईएनटी स्पेशलिस्ट।
8: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर एमडी सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ईएनटी केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर आरके मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
6: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
9: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
10: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
11: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
10: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9470434468 पे।
12: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द,
4: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
10: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
7: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
10: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
11: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
2: ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है रेडियो रिमझिम के रोमांचकारी खेल हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। अगर आप भी हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं और आजमाना चाहते हैं अपने ज्ञान और लक को, तो हर रविवार दोपहर 12 बजे से कॉल करें 80-29-94-921 80-29-94-921 पर। आइए लेते हैं अगले प्रतिभागी का कॉल।
13: हेलो, नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में।
13: थैंक यू।
0: नाम बता दीजिए आप अपना।
13: नाम है सलोनी कुमारी।
0: जी, कहाँ से बात कर रहे हैं सलोनी?
13: जी, बंजारी गोपालगंज से।
0: जी, क्या करते हैं?
13: जी, पढ़ते हैं।
0: किस क्लास में?
13: 12 में।
0: जी, आपका लक्ष्य क्या है?
13: वो तो अभी सीक्रेट है।
0: अच्छा, सीक्रेट है, ये अच्छी बात है, मतलब है।
13: हाँ है।
0: ओके, आप पहली बार जुड़ रही हैं हेलो क्विज कॉन्टेस्ट से?
13: हाँ बिल्कुल सही। हाँ बिल्कुल।
0: जी, तो लिया जाए आपसे आज का पहला प्रश्न। ओके, आप अपने मम्मी पापा का नाम बता दीजिए।
13: पापा का नाम कुंदन लाल शाह और मम्मी का नाम सविता देवी।
0: जी, क्या करते हैं पापा जी आपके?
13: पापा का एक किराना का स्टोर है।
0: ओके, चलिए अच्छी बात है। तो लिया जाए आपसे आज का पहला प्रश्न।
13: यस मैम।
0: ओके, तो आपसे आज का पहला प्रश्न ये है आयुषी,

0: 1857 की क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? 1857 की क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, बी जलियांवाला बगीचा, सी स्वदेशी आंदोलन। आपका समय शुरू होता है अब।
1: पहला ए, पहला स्वतंत्रता संग्राम।
0: ओके, कंफर्म है आप?
1: हाँ कंफर्म है।
0: तो लॉक कर दूँ?
1: हाँ लॉक कर दीजिए।
0: ओके, तो सलोनी जी आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार है आप दूसरे प्रश्न के लिए?
1: यस मैम।
0: ओके, आपसे आपका दूसरा प्रश्न ये है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके खिलाफ युद्ध किया था? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके खिलाफ युद्ध किया था? ऑप्शन ए मुगल, बी अंग्रेज, सी मराठा।
1: अंग्रेज।
0: कंफर्म है?
1: हाँ कंफर्म है।
0: लॉक कर दूँ?
1: हाँ लॉक कर दीजिए।
0: आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर को भी लॉक करते हैं। और आपको बता दूं कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर अंग्रेज बिल्कुल सही उत्तर है। तैयार है आप तीसरे प्रश्न के लिए?
1: यस मैम।
0: ओके, आपसे आपका तीसरा प्रश्न ये है, लाल किला किसने बनवाया था? लाल किला किसने बनवाया था?
1: लाल किला और ताजमहल दोनों शाहजहां ने बनवाया था।
0: ओके, तो चलिए सलोनी जी आपके तीसरे प्रश्न के उत्तर भी सही है। तैयार है आप चौथे प्रश्न के लिए?
1: यस मैम।
0: आपसे आपका चौथा प्रश्न ये है, बल्ब का आविष्कार किसने किया था?
1: एडिशन है।
0: एडिशन।
1: हाँ।
0: ओके, आपके चौथे प्रश्न का उत्तर भी बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप पांचवे प्रश्न के लिए?
1: यस मैम।
0: ओके, आपके पास में कोई है?
1: नहीं कोई भी नहीं है।
0: कोई होगा तो हटा दीजिएगा, मुझे आवाज आएगी तो मैं कॉल कट कर दूंगी, रूल है।
1: ठीक है।
0: ओके, आपसे आपका पांचवा प्रश्न ये है, रेडियो का आविष्कार कब हुआ था? रेडियो का आविष्कार कब हुआ था? ऑप्शन ए 1908, बी 1895, सी 1687। आपका समय शुरू होता अब।
1: अठारह सौ पाँच
0: नहीं है, 1908 है।
1: नहीं उसके और ऑप्शन बोलिएगा फिर से एक बार।
0: 1908, 1895 और सी है 1687।
1: 1895।
0: कंफर्म है?
1: यस मैम।
0: लॉक कर दूँ?
1: यस मैम।
0: ओके, तो चलिए आपके पांचवे प्रश्न के उत्तर को भी लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पांचवे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी 1885 बिल्कुल सही उत्तर है। तैयार है आप छठे प्रश्न के लिए?
1: यस मैम।
0: ओके, आपसे आपका छठा प्रश्न ये है, किस तत्व को ब्लैक गोल्ड कहा जाता है? किस तत्व को ब्लैक गोल्ड कहा जाता है? ऑप्शन ए कोयला, बी पेट्रोलियम, सी यूरेनियम। आपका समय शुरू होता है अब।
1: कोयला।
0: कंफर्म है?
1: यस मैम।
0: लॉक करूँ?
1: यस मैम लॉक कीजिए।
0: ओके, तो चलिए सलोनी जी आपके छठे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए कोयला को लॉक करते हैं। और बता दें आपको कि आपके छठे प्रश्न का उत्तर गलत है। सही उत्तर होगा पेट्रोलियम, ना कि कोयला। हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल की बहुत बहुत धन्यवाद, अगले संडे फिर कोशिश करिएगा।
2: नमस्कार मिस।
0: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में।
2: जी,
0: नाम बता दीजिए आप अपना।
2: सुमन कुमार
0: जी,
2: गोपालगंज।
0: अच्छा, गोपालगंज से।
2: जी
0: जी, क्या करते हैं सुमन जी?
2: अभी पढ़ते हैं।
0: किस क्लास में पढ़ते हैं?
2: ग्रेजुएशन कर रहे हैं।
0: और ग्रेजुएशन करके क्या करना है, कुछ सोचा है आपने?
2: टीचिंग लाइन।
0: ओके, अच्छी बात है। तो आप अपने मम्मी पापा का नाम बता दीजिए। सुमन जी,
2: माता जी का नाम श्रीमती बीघन देवी और पिताजी का नाम श्री सुरेश था।
0: क्या करते हैं पापा?
2: पापा किसान है।
0: ओके, लिया जाए आपसे आज का पहला प्रश्न।
2: यस।
0: ओके सुमन जी, आपसे आज का पहला प्रश्न ये है

0: 1857 की क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? 1857 की क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, बी है जलियांवाला बगीचा, सी है स्वदेशी आंदोलन। आपका समय शुरू होता है अब।
1: ए को लॉक कीजिए।
0: ऑप्शन ए
1: प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जी।
0: लॉक कर दूं?
1: यस।
0: ओके, तो चलिए सुमन जी आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप दूसरे प्रश्न के लिए?
1: यस मिस।
0: ओके, आपसे आपका दूसरा प्रश्न ये है, टेलीविजन का आविष्कार सर्वप्रथम किसने किया था? टेलीविजन का आविष्कार सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन ए थॉमस एडिसन, बी जॉन लगी वेयर्ड और सी अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। आपका समय शुरू होता है अब।
1: अलेक्जेंडर ग्राहम बेल को लॉक कीजिए।
0: कंफर्म है?
1: लॉक के सारे।
0: ओके, तो कर दो लॉक।
1: यस।
0: ओके, तो चलिए सुमन जी आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी अलेक्जेंडर ग्राहम बेल को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर गलत है। सही उत्तर होगा जान लगी वियर्ड। हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले संडे फिर कोशिश करिएगा।
2: हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं आप सबसे हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में। सुनते रहे रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
3: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
4: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
3: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में दो नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट प्रभु मार्केट, मोनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
5: सुनिए सुनिए सुनिए,
6: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
5: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
6: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
5: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
7: प्रसाद क्लिनिक,
8: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चमरोग के सफल इलाज के लिए मिले
7: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंज स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज,
8: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
9: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
10: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
9: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
10: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
11: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
12: भरोसे वाले से लेंगे,
11: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
12: और कीमत भी।
11: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
13: SP ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
14: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन्स तो मेरा सर्टिफिकेशन।
15: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए SP ज्वेलर्स।
13: क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
15: 22 कैरेट 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
16: आज यहाँ SP ज्वेलर्स जो है DAV गर्ल्स स्कूल के सामने स्टेशन रोड गोपालगंज,
10: और अब SP ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
16: कॉल करें 85070-32042 पे।
2: ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है रेडियो रिंजन के रोमांचकारी खेल हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। अगर आप भी हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं और आजमाना चाहते हैं अपने ज्ञान और लक को, तो हर रविवार दोपहर 12 बजे से कॉल करें 80029-94-21 80029-94-21 पर। आइए लेते हैं अगले प्रतिभागी का कॉल।
17: हेलो,
18: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंजन के कार्यक्रम हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में।
17: नमस्ते।
18: नमस्ते, नाम बता दीजिए।
17: मैं रुद्र बोल रहा हूँ
18: जी। कहाँ से बात कर रहे हैं रुद्र? क्या करते हैं आप? हेलो, क्या करते हैं आप?
17: पढ़ाई
18: जी। किस क्लास में पढ़ते हैं? किस स्कूल में पढ़ते हैं आप?
17: और सैनिक माइंड।
18: अच्छा, अपने मम्मी पापा का नाम बता दीजिए।
17: मम्मी का नाम कुमारी और पापा का नाम है रवि श्रीवास्तव।
18: पापा का नाम एक बार और बताइए।
17: पापा का नाम है रवि श्रीवास्तव
18: जी। क्या करते हैं आपके पापा जी?
17: जॉब करते हैं।
18: आप हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में कॉल किए हैं, तैयार हैं आप आज के पहले प्रश्न के लिए?
17: हाँ। हेलो, आवाज थोड़ा कट कट आ रहा है।
18: ठीक है, आप कहीं बैठ जाइए जाके, आप टहल रहे हैं ना अभी?
17: अभी ऊपर वाले फ्लोर पे आया हूँ।
18: ओके,
17: तो अभी बैठ रहा हूँ बेड पे जाके।
18: ओके, तो आप हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में कॉल किए हैं तो तैयार हैं आप आज के पहले प्रश्न के लिए?
17: हाँ।
18: लिया जाए आपसे प्रश्न?
17: हाँ।
18: ओके, आप इससे पहले भी हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में कॉल किए हैं?
17: इस कॉल को लेके हो गया छठी बार।
18: अच्छा, आप छठे बार हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में कॉल कर रहे हैं?
17: हाँ, इस कॉल को अगर जोड़ा जाए तो।
18: ओके, चलिए रुद्र जी, आपसे आज का पहला प्रश्न ये है

0: ताजमहल किसने बनवाया था? ताजमहल किसने बनवाया था? ऑप्शन ए अकबर, बी शाहजहां, सी बाबर। आपका समय शुरू होता है अब।
1: ऑप्शन को दोबारा रिपीट कीजिएगा।
0: ऑप्शन ए अकबर, बी शाहजहां, सी बाबर।
1: ऑप्शन बी
0: शाहजहां।
1: हाँ।
0: कन्फर्म है आप?
1: हाँ।
0: लॉक कर दूं?
1: जी।
0: ओके, तो चलिए रुद्र जी, आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी शाहजहां को लॉक करते हैं। और आपको बता दे कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार है आप दूसरे प्रश्न के लिए?
1: जी।
0: ओके, तो रुद्र जी आपसे आपका दूसरा प्रश्न ये है, कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए दिल्ली, बी आगरा, सी लखनऊ। आपका समय शुरू होता है अब।
1: दिल्ली।
0: कंफर्म है?
1: हाँ।
0: लॉक कर दो?
1: हाँ।
0: ओके, तो चलिए रुद्र जी आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर दिल्ली को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर भी सही है। तैयार हैं आप तीसरे प्रश्न के लिए?
1: जी।
0: ओके, आपसे आपका तीसरा प्रश्न ये है, भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन थे?
1: पंडित जवाहरलाल नेहरू।
0: कन्फर्म है?
1: हाँ।
0: ओके, तो लॉक कर दूं मैं?
1: जी।
0: ओके, तो चलिए रुद्र जी आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर भी पंडित जवाहरलाल नेहरू बिल्कुल सही उत्तर है। तैयार है आप चौथे प्रश्न के लिए?
1: हाँ।
0: ओके, चौथा प्रश्न आपसे ये है, लाल किला किसने बनवाया था? लाल किला किसने बनवाया था? ऑप्शन ए अकबर, बी शाहजहां, सी औरंगजेब। आपका समय शुरू होता है अब।
1: ऑप्शन नंबर सी
0: औरंगजेब। कंफर्म है?
1: हाँ।
0: अकबर और शाहजहां नहीं हो सकता?
1: अभी तो कोई कंफर्म नहीं है, ये चैप्टर अभी पढ़ाया ही नहीं गया है।
0: अच्छा अच्छा, तो मैं लॉक करूँ उत्तर को आपके?
1: हाँ।
0: ऑप्शन सी औरंगजेब को लॉक कर दूँ?
1: हाँ।
0: ओके, तो चलिए रुद्र जी आपके चौथे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी औरंगजेब को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके चौथे प्रश्न का उत्तर गलत है। सही उत्तर होगा बी शाहजहां। ठीक है?
1: ठीक है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, आप फिर क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किए, अगले संडे फिर कोशिश करिएगा। ठीक है?
1: ठीक है।
2: तो दोस्तों, ये रहा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का आज का एपिसोड। अगर आप भी हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं और आजमाना चाहते हैं अपने ज्ञान और लक को, तो हर रविवार दोपहर 12 बजे से कॉल करें 8029294921 8029294921 पर और बने हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के विनर। और हमें दीजिए अब जाने की इजाज़त और रखिए अपना ख्याल, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM। नमस्कार।
3: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है। यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 9853252599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9939491551 पे।
4: त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
5: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
4: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
5: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में, और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
4: और सबसे खास बात ये है, ऑन रोड कीमत यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
5: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
4: अभी कॉल करें 9289-22567 या 9774-86165,
5: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH27 चैन पट्टी, गोपालगंज।
6: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
4: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2,00,000 रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
5: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोपराइटर। पहले आए पहले पाए।
4: अभी कॉल कीजिए 9006672131।
5: कॉल कीजिए 9006672131। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
7: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

0: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
1: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
0: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
1: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीठ की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
0: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
2: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
3: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
4: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
5: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
6: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
7: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
8: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज यहाँ सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
9: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
8: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94-704-34-468 पे।

0: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है। लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
0: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
3: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
1: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
0: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट प्रभु मार्केट, मोनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
2: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
3: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
4: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ENT केयर सेंटर, सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
0: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
0: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
0: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710 3992 या 9765

0: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
1: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
2: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
3: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
2: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9847434668 पे।
4: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
5: हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
4: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
5: अभी कॉल कीजिए 9006672131।
4: कॉल कीजिए 9006672131। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
6: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
7: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
8: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ENT केयर सेंटर, सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।

0: दादी, आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
1: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
0: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
1: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
0: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक तकनीक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
1: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
0: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक तकनीक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
2: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-86973। त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
0: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
2: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
0: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
2: और सबसे खास बात ये है, ऑन रोड कीमत यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
0: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
2: अभी कॉल करें 92899-22567 या 97714-8661
0: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 चैन पट्टी, गोपालगंज।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
1: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
0: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
1: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
2: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
1: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
2: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड एक्सिस बैंक के सामने तड़कुल के पास गोपालगंज।
1: याद रहे, शादी विवाह जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है,
2: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।

0: विश्वास बढ़ा। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने बी कामेश्वर राव। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने दिलाई शपथ। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, एक साथ 211 डिग्री कॉलेज शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना बिहार। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, शिवहर और सुपौल जिले में तेज हवा के साथ जताई बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ब्रिक्स में ग्लोबल साउथ के देशों का विश्वास बढ़ा है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के आज दूसरे और अंतिम दिन भागीदार देशों के मुख्य सत्र में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स के भीतर विकसित समाधानों के लाभों को विकासशील देशों की जरूरतों के अनुसार ढाला जाना चाहिए।
1: कि ब्रिक्स में ग्लोबल साउथ के देशों का विश्वास बढ़ा है, क्योंकि ब्रिक्स में उनकी आवाज सुनी जाती है, उनके अनुभव का सम्मान होता है और सॉल्यूशन उनके लिए ही नहीं, उनके साथ मिलकर बनाए जाते हैं। ब्रिक्स की शक्ति हमारी डायवर्सिटी और कोऑपरेशन में है। वी मे बी रूटेड इन डिफरेंट रियालिटीज, बट टूगेदर वी राइज थ्रू कोऑपरेशन एंड ब्लॉसम फॉर ह्यूमैनिटी। हमारी विविधता हमारी पहचान रहे, हमारा सहयोग हमारी प्रेरणा बने और हमारी प्रगति पूरी मानवता के काम आए।
0: प्रधानमंत्री ने आगाह किया है कि प्रौद्योगिकी और महत्वपूर्ण खनिजों यानी क्रिटिकल मिनरल्स का हथियार की तरह प्रयोग प्रगति के मार्ग में एक बड़ी बाधा बन सकता है। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स देशों ने नई तकनीकों को अपनाने में समावेशिता पर विशेष जोर दिया है। श्री मोदी ने कहा कि आपदाओं और बाधाओं ने यह साबित किया है कि आज की परस्पर जुड़ी दुनिया में कोई भी संकट किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता।
1: आज के इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में कोई भी संकट एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता, इसलिए हमने ब्रिक्स समूह में रिजिलियंस बढ़ाने पर विशेष बल दिया है। चुनौतियों को समय रहते पहचानना, उनके लिए तैयार रहना और तुरंत कार्रवाई करना भी उतना ही आवश्यक है। इसी सोच के साथ इन्फेक्शियस डिजीज के प्रिवेंशन और रिस्पॉन्स के लिए ब्रिक्स इंटीग्रेटेड अर्ली वार्निंग सिस्टम पर सहमति बनी है। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए अर्ली वार्निंग डेटा इंटीग्रेशन गाइडलाइन तैयार की गई है।
0: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि ब्रिक्स सम्मेलन से दुनिया भर में भारत का गौरव बढ़ा है। उन्होंने ब्रिक्स का कुशल नेतृत्व करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सम्मेलन के माध्यम से बिहार के मखाना और सत्तू समेत अन्य उत्पाद दुनिया के मंच पर पहुंचे हैं।
2: जिस तरह ब्रिक्स सम्मेलन के माध्यम से दुनिया के 11 देश जो महत्वपूर्ण देश हैं, सब लोगों का सहयोग मिला और ब्रिक्स में जिस तरह बिहार का मखाना, बिहार का सत्तू जिस तरह दुनिया के मानचित्र पर गया, इसके लिए भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं। उनके नेतृत्व में इसी तरह भारत और तेज गति से बढ़ता रहेगा।
0: भाजपा के वरिष्ठ नेता और पटना साहिब से सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ब्रिक्स में भारत की विदेश नीति सफल हुई है।
3: यह बहुत ही ऐतिहासिक सफलता है ब्रिक्स सम्मेलन की। इतनी बड़ी बड़ी जो कंट्रीज हैं, उन्होंने एक वैकल्पिक बहुत प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय मंच रखा है और राष्ट्रपति पुतिन ने एक बहुत बड़ी बात कही कि आज ब्रिक्स का जीडीपी पूरे यूरोप अमेरिका के जीडीपी से ज्यादा है। और जिस तरह आतंकवाद के खिलाफ पहलगाम में जो हुआ, एक जबरदस्त कंडेमनेशन हुआ है, ये बहुत ही बड़ी बात है। तो भारत की विदेश नीति बहुत ही सफल हुई।
0: पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति वल्लूरी कामेश्वर राव ने आज शपथ ली। लोकभवन में आयोजित समारोह में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने उन्हें शपथ दिलाई।
4: आई वल्लूरी कामेश्वर राव, हैविंग बीन अपॉइंटेड चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ पटना, डू स्वियर इन द नेम ऑफ गॉड।
0: न्यायमूर्ति श्री राव ने पटना उच्च न्यायालय के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, महाधिवक्ता तथा वरिष्ठ पदाधिकारी समेत बड़ी संख्या में गणमान्य लोग मौजूद थे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि एक साथ 211 डिग्री कॉलेज शुरू करने वाला बिहार

0: देश का पहला राज्य है। पटना के बापू सभागार में डिग्री कॉलेजों में नवनियुक्त लगभग 2500 सहायक शिक्षकों के उन्मुखीकरण कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि शिक्षक छात्रों के भाग्य बदल रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार के युवाओं के भविष्य को ऊंचाई तक पहुंचाना शिक्षकों की जिम्मेवारी है।
1: जिस गति से आपकी नियुक्ति हुई है, हमें भरोसा है उसी गति से बिहार के छात्र छात्राओं को आप पढ़ाने का काम करेंगे और बिहार का तकदीर बदलने का प्रयास करेंगे। इसलिए मेरी पूरी शुभकामना है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर आप नियुक्त हुए हैं और आप बिहार का भविष्य बदलेंगे, बिहार के गौरवशाली इतिहास को बदलने का काम करेंगे।
0: पर्यटन मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने कहा है कि प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने ब्रांड बिहार के तहत विशेष पर्यटन पैकेज तैयार किया है। उन्होंने कहा कि इस पैकेज के तहत पर्यटक पटना से यात्रा शुरू कर 3 दिनों में बोधगया, राजगीर और नालंदा का भ्रमण कर सकेंगे। मंत्री ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य बिहार की समृद्ध आध्यात्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत से देश दुनिया को परिचित कराना है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक सैंडल AIR News_Patna को फॉलो कर सकते हैं। राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने कहा है कि फिजियोथेरेपी स्वास्थ्य सेवा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने पटना में आयोजित नेशनल फिजियोथेरेपी कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि बदलती जीवन शैली के कारण लोगों की शारीरिक समस्याएं बढ़ रही हैं और ऐसी समस्याओं के निदान के लिए फिजियोथेरेपी प्रभावी चिकित्सा पद्धति है।
1: मैं खुद आभारी हूँ फिजियोथेरेपी प्रोफेशन का, क्योंकि मैं समझता हूँ बहुत लोग समझते हैं कि ये पैरामेडिक का प्रोफेशन है, ऐसा कोई वो नहीं है, ये फुल फ्लेज्ड मेडिकल प्रोफेशन है।
0: प्रदेश में बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। राज्य के 15 जिलों में 48 लाख से अधिक आबादी बाढ़ से प्रभावित है। आपदा प्रबंधन विभाग ने प्रभावित आबादी तक भोजन, राहत सामग्री और दूसरी जरूरी सुविधाएं पहुंचाने के लिए व्यापक स्तर पर इंतजाम किए हैं। एक रिपोर्ट।
2: बाढ़ प्रभावित जिलों में 1251 सामुदायिक रसोई केंद्र के माध्यम से अब तक करीब 88,54,000 लोगों को भोजन उपलब्ध कराया गया है। 13 राहत शिविरों में 12,260 लोगों के लिए आवासन, भोजन और चिकित्सा की व्यवस्था की गई है। आपदा प्रबंधन मंत्री रत्नेश सदा ने कहा है कि बाढ़ प्रभावित लोगों को प्रति परिवार 7,000 रुपए की सहायता राशि दी जा रही है।
3: आपदा में जो भी पीड़ित व्यक्ति है उसके लिए सारी व्यवस्था मुकम्मल की गई है और हमने यहाँ कोनावा में अभी सीओ को निर्देश दिए हैं कि DR की राशि जो 7,000 को मिलेगा, एक भी परिवार को वंचित नहीं होना चाहिए और साथ साथ जो छूट गया उसको सर्वे करा करके उस लिस्ट को पारित करके सरकार को भेजिए, उसको DR की राशि भुगतान की जाएगी।
2: बाढ़ प्रभावित परिवारों को करीब 3,68,000 पॉलिथीन सीट, 65,400 ड्राई राशन पैकेट और 1,400 फूड पैकेट वितरित किए गए हैं। सुरक्षित आवागमन के लिए 1,688 नावें चल रही हैं। पशुओं के लिए 12,844 क्विंटल पशु चारा भी वितरित किए जा चुके हैं। राहत और बचाव कार्य के लिए SDRF की 27 और NDRF की 10 टीमें तैनात हैं। समाचार कच्छ से निधि श्री के साथ राहुल कुमार।
0: प्रदेश में नदियों के जलस्तर में लगातार नजर रखी जा रही है। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार भागलपुर के सुल्तानगंज में गंगा का जलस्तर घट रहा है, जबकि बालतारा और कुर्सेला में कोसी, खगड़िया में बूढ़ी गंडक, कई स्थानों पर गंगा, श्रीपालपुर में पुनपुन, बेनीबाद में बागमती तथा दरौली और गंगपुर सिसवन में घाघरा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इधर वाल्मीकि नगर बराज पर गंडक का जलस्तर बढ़ने की प्रवृत्ति दर्ज की गई है। वीरपुर बराज पर कोसी का जलस्तर स्थिर है, जबकि इंद्रपुरी बराज पर सोन नदी का जलस्तर घट रहा है। प्रदेश में मानसून कमजोर पड़ने से बारिश की गतिविधियों में कमी आई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों में किशनगंज जिले के टेढ़ा गाछ में भारी बारिश हुई है, जबकि सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सुपौल, समस्तीपुर, किशनगंज और सहरसा जिले के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम स्तर की वर्षा हुई है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 24 घंटों में अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, शिवहर और सुपौल जिले में तेज हवा के साथ हल्की से मध्यम स्तर की बारिश की संभावना है।
4: दिनांक 14 सितंबर को राज्य के उत्तर पश्चिम एवं दक्षिण पश्चिम भाग के जिलों अररिया, किशनगंज, मधुबनी, शिवहर, सीतामढ़ी एवं सुपौल जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: अररिया जिले के सभी 2,811 आंगनवाड़ी केंद्रों पर पोषण जागरूकता के तहत पौष्टिक खाद्य सामग्री के संबंध में महिलाओं, बच्चों और परिजनों को जानकारी दी जा रही है। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी कविता कुमारी ने बताया कि सभी महिला पर्यवेक्षिका, प्रखंड समन्वयक और पोषण अभियान से जुड़े कार्यकर्ता अभियान में भागीदारी निभा रहे हैं। इधर अरवल जिले में भी पोषण माह के तहत जागरूकता के लिए अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। पाटलिपुत्र जंक्शन पर दानापुर जोगबनी वंदे भारत एक्सप्रेस का 2 मिनट का ठहराव आज से शुरू हो गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और पटना साहिब के सांसद रविशंकर प्रसाद, सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव और विधायक संजीव चौरसिया ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। रेलवे ने त्योहारों के मद्देनजर कई स्पेशल ट्रेनों के परिचालन को मंजूरी दी है। ये रेलगाड़ियां 1 अक्टूबर से 30 नवंबर के बीच चलाई जाएंगी। पटना जंक्शन, पाटलिपुत्र जंक्शन, मुजफ्फरपुर और जोगबनी से सबसे अधिक विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी। पहले चरण में 16 स्पेशल ट्रेनों की समय सारणी तय की गई है। इन ट्रेनों में पटना चंडीगढ़, पटना फिरोजपुर कैंट, पटना आनंद विहार, जोगबनी आनंद विहार, सीतामढ़ी दिल्ली और मुजफ्फरपुर ऋषिकेश के बीच चलाई जाने वाली ट्रेनें शामिल हैं। इधर रेलवे ने यात्रियों की बड़ी संख्या को देखते हुए पटना से नियमित ट्रेनों में अतिरिक्त स्लीपर कोच जोड़ने का भी निर्णय लिया है। पूर्व मंत्री अब्दुल जलील मस्तान का नई दिल्ली के एम्स में निधन हो गया। वे पिछले कुछ समय से गंभीर रूप से बीमार थे। जलील मस्तान अमौर से 6 बार विधायक रहे हैं। वे वर्ष 2015 में महागठबंधन सरकार में मंत्री थे। उनके निधन पर लोगों ने शोक संवेदना व्यक्त की है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने अपने शोक संदेश में कहा कि अब्दुल जलील मस्तान का निधन समाज और राजनीति के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। अररिया के जिलाधिकारी विनोद दुहन और पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार ने मंडल कारा का निरीक्षण किया और सुरक्षा व्यवस्था, बंदियों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधा और जेल प्रशासन की कार्य प्रणाली का जायजा लिया। सीतामढ़ी जिले की पुलिस टीम ने कन्हौली थाना क्षेत्र से करीब 140 किलोग्राम गांजा जब्त किया है। बरामद गांजे की कीमत करीब 69 लाख रुपए से अधिक आंकी गई है। सुपौल जिले के राघोपुर थाना क्षेत्र से पुलिस ने एक घर में छापेमारी कर 360 लीटर विदेशी शराब जब्त की है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से ग्लोबल साउथ के देशों का विश्वास बढ़ा। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने बी कामेश्वर राव। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने दिलाई शपथ। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, एक साथ 211 डिग्री कॉलेज शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना बिहार। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, शिवहर और सुपौल जिले में तेज हवा के साथ जताई बारिश की संभावना। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा।

0: सवा चार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
1: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
2: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
1: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
2: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
3: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
2: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
3: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
2: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
3: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।

0: श्रोताओं को मेरा यानी रेडियो दोस्त सोनू के तरफ से नमस्कार प्रणाम। समय हो चुका है आपका संदेश मिला कार्यक्रम का, तो ठीक सही समय पे आप सभी के द्वारा संचार के विभिन्न माध्यमों से भेजे गए संदेशों को लेकर हाजिर हो चुका हूँ आप सभी के बीच। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके द्वारा भेजे गए संदेशों पर अपना प्रतिक्रिया देते हैं रेडियो रिमझिम के प्रबंध निदेशक श्री कृपा शंकर श्रीवास्तव जी। तो सर, सबसे पहले आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: यदि आप भी इस कार्यक्रम में शिकायत, सुझाव, प्रशंसा या अपना विचार भेजना चाहते हैं तो इस कार्यक्रम में भेज सकते हैं। इसके लिए हमारा पता है रेडियो रिमझिम, बंजारी मोड़, गोपालगंज, पिन कोड 84 14 28। व्हाट्सएप नंबर है 98527 88 291 और ईमेल आईडी है radiorimjim@gmail.com। आप संचार के जिस माध्यम से चाहें उस माध्यम से अपना शिकायत, सुझाव या प्रशंसा, अपना संदेश पहुंचा सकते हैं। तो फिलहाल अपनी बातों को रोकते हैं और इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं।
1: नमस्कार आदरणीय श्रोता बंधु, आपका प्रिय कार्यक्रम आपका संदेश मिला में तमाम सुनने वाले रेडियो रिमझिम के श्रोताओं को हम सब परिवार नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। बड़े ही हर्ष की बात है कि प्रत्येक सप्ताह रविवार के शाम को 7:45 में और अगले दिन अर्थात सोमवार को सुबह 7:10 पर इस कार्यक्रम में हम लोग मिलते हैं, आपस में बातें करते हैं और पंच परमेश्वर का इस कार्यक्रम में सहयोग मिलता है। रेडियो रिमझिम द्वारा प्रसारित सोमवार से रविवार तक जितने भी कार्यक्रम प्रसारित होते हैं उसमें आप लोगों का सुझाव और विचार जो है हमें सुदृढ़ बनाता है। रेडियो रिमझिम जनता की बातों को, जनता के विचारों को अपनाता है और उसी के अनुरूप प्रसारित करता है। अपने स्थापना काल से ही रेडियो रिमझिम आम जनों से जुड़ा रहा। हमारी माताएं, बहनें, बेटियां अपने विचारों को इस कार्यक्रम के माध्यम से पहुंचाती हैं और उससे रेडियो रिमझिम के कई कार्यक्रमों में, कई तकनीकी क्षेत्रों में हमने बदलाव किया। जहां पंच परमेश्वर का आशीर्वाद, सहयोग, सुझाव हमें सुदृढ़ करता है और कार्यक्रमों को बेहतर करने में हमारी मदद करता है। रेडियो रिमझिम पिछले सप्ताह ऑनलाइन कार्यक्रम जो है हमारे आरजे का तबीयत खराब हो जाने से बाधित रहा। कोशिश है कि आने वाले सप्ताह में जितने भी ऑनलाइन कार्यक्रम हैं सब पूर्व की तरह प्रसारित होना शुरू हो जाएंगे। जो नए लोग जुड़ रहे हैं रेडियो रिमझिम से, विशेष करके युवा वर्ग, उन्हें बताते चले आप रेडियो रिमझिम को 4 माध्यम से सुन सकते हैं। पहला रेडियो के माध्यम से, दूसरा गूगल के प्ले स्टोर में हमारा ऐप है, अपने मोबाइल में डाउनलोड करके उसके माध्यम से सुन सकते हैं, तीसरा इंटरनेट के माध्यम से सुन सकते हैं और चौथा आप अपने वाहन पर भी रेडियो रिमझिम को सुन सकते हैं। यानी तकनीकी विभाग द्वारा हमें बताया गया, दिखाया गया, समझाया गया कि रेडियो रिमझिम की आवाज जो है 4 माध्यमों से देश विदेश प्रदेश में पहुंचता है। आपको पता ही है कि सुबह 5 से रात को 11:10 तक रेडियो रिमझिम के विविध कार्यक्रम प्रसारित होते हैं। युवाओं के लिए, बच्चों के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए, किसानों के लिए, जवानों के लिए, व्यापारियों के लिए या सरकार द्वारा जो भी नीति बनाई जाती है, राज्य हो या केंद्र हो, उसकी भी जानकारी किसी न किसी माध्यम से हम आम जनता तक पहुंचाते रहते हैं। रेडियो केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, रेडियो जानकारी का एक अनुपम उपहार है। जब अपने जिले के चार ब्लॉक में बाढ़ आता है, कोई भी विपदा आती है, तो रेडियो रिमझिम उसके लिए सभी तरह की सूचना प्रेषित करता है, भेजता है, प्रसारित करता है। इसकी जानकारी मौसम विभाग से, जिला प्रशासन के आपदा विभाग से लेकर त्वरित गति से हम आम जनता तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो भी कार्य हो रहा है उसकी भी सूचना देते हैं। गोपालगंज जिला प्रशासन द्वारा प्रतिदिन कौन कौन सी बैठकें की गई, आम जनता के भलाई के लिए कौन सा निर्णय लिया गया, इन सब की सूचना हालचाल के माध्यम से हम देते रहते हैं। कहा जाता है कि जिस व्यक्ति के पास सूचना का अपार भंडार हो, वह व्यक्ति कभी निर्धन और गरीब नहीं हो सकता है। हम अपने अधिकारों को सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त कर सकते हैं। यदि कहीं कोई भ्रष्टाचार होता है, गलती होता है, उसका नंबर भी हम रेडियो रिमझिम द्वारा प्रसारित करते हैं। साइबर फ्रॉड होता है, उसके बारे में भी जानकारी देते हैं। जो भी जानकारी हमें सही स्रोत से प्राप्त होता है, उसे आम जनता तक जल्द से जल्द पहुंचाने का प्रयास करते हैं। आपका संदेश मिला कार्यक्रम हमें आपसे जुड़ने का सप्ताह में एक दिन अवसर देता है, और इस अवसर पर हम लोग विभिन्न मुद्दों पर बातचीत करते हैं। सबसे अच्छी बात है, जो रेडियो रिमझिम को सुनता है, देश विदेश प्रदेश कहीं से भी अपने विचारों को, अपने सुझावों को रेडियो रिमझिम तक लिख सकता है, पहुंचा सकता है। और आज जो है कई ऐसे उदाहरण हैं, एग्जाम्पल हैं, जो श्रोताओं के बातों को मानते हुए रेडियो रिमझिम में अपने कार्यक्रम में, अपने तकनीकी शैली में बदलाव किया है। रेडियो रिमझिम बिहार का एकमात्र ऐसा रेडियो स्टेशन है जो राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने का अवसर मिला है। जिला स्तर या प्रांतीय स्तर पर भी हमेशा पीठ थपथपाया जाता है, पुरस्कृत किया जाता है। मेरा मानना है कि हम जिसके लिए काम कर रहे हैं वह हमारे लिए सर्वोच्च है, और उसके आदेश का अनुपालन करना, मानना हमारा नैतिक धर्म भी है, कर्तव्य भी है। आदरणीय श्रोता बंधु, आप लोगों का बहुत सारा संदेश अगस्त 2026 में हमारे पास पहुंचा, लेकिन पिछले कार्यक्रम में हमने बताया था कि अपने पारिवारिक कामों से मैं लगातार 20-21 दिन रेडियो रिमझिम के कार्यों से अलग था, इसलिए बहुत सारा संदेश सोनू जी लेकर बैठे हैं। पिछले सप्ताह हमने कुछ संदेशों का उत्तर दिया, और इस सप्ताह जो है जो बचे हुए संदेश हैं और नए संदेश भी आ रहे हैं, उनका उत्तर देंगे। हमने जीवन में कई बार महसूस किया भ्रमण करते समय कि आज जो है, आज की जो पीढ़ी है पहले के पीढ़ी से अलग है, आज का जो जनरेशन है पहले के जनरेशन से अलग है। यदि आज से 50 साल पहले का जनरेशन देखा जाए, तो कोई भी काम करने के पहले समाज परिवार का एक भय बना रहता था, लेकिन धीरे धीरे परिवार जो है टूटते जा रहा है, हम हमारी पत्नी और बच्चे तक सीमित होते जा रहा है। और आने वाले समय में जिस तरह विदेशों में हमने सुना है, यूरोप कंट्री में, कि जहां बच्चा 18 साल का हुआ तो माई बाप से वह अलग अपना परिवार या जीवन यापन का कार्य शुरू कर दिया, और माँ बाप जो है वृद्धा आश्रम चले गए, वही प्रवृत्ति जो है आने वाला समय में दिखाई दे रहा है। भारत के कई राज्यों में समय समय पर हमें भी भ्रमण करने का अवसर मिलता है कि हम जो है नजदीक से शहरी जीवन का अध्ययन करते हैं, ग्रामीण परिवेश से निकले हैं और गांव में रहना पसंद करते हैं, लेकिन यह जो बदलाव है केवल शहर तक सीमित नहीं है, यह बदलाव जो है छोटे छोटे गांवों तक पहुंच चुका है। लोग जो है अंतर्मुखी न होकर आत्ममुखी होते जा रहे हैं और यह जो है सामाजिक स्तर पर एक गिरावट के तरह देखा जाएगा। पहले कोई भी काम करने से पहले हम जो है हजार बार सोचते थे, लेकिन आज का जो जनरेशन है, युवा पीढ़ी है, उसमें हमको कितना फायदा है इस बात पर ज़्यादा जोर देता है। इसे समय का बदलाव कहा जाए या वैज्ञानिक उन्नति कहा जाए या जनरेशन गैपिंग कहा जाए, जो भी कहा जाए, लेकिन यह एक बदलाव होता है। हम ऐसे व्यक्तियों में से हैं जिसे 6 दशक देखने का अवसर मिला। हम अपने बाप दादा को देखे, हम जो है अपने हम उम्र के लोगों के साथ रहे और आज जो है नई पीढ़ी को देख रहे हैं। इसमें जो है भारी बदलाव हो रहा है। पहले शिक्षा में नैतिक बल पर, मोरलिटी पर ज़्यादा जोर दिया जाता था, आज जो है बच्चे को ATM बनाने के लिए हम लोग पढ़ा रहे हैं कि कौन सा पढ़ाई पढ़े कि ज़्यादा से ज़्यादा धन अर्जित करे। और पहले जो है यह देखा जाता था कि शिक्षा के माध्यम से यह बच्चा जो है कितना विनम्र, सुशील और नैतिकवान बनता है, और कहा भी गया है कि जिस शिक्षा में नैतिकता नहीं हो, मोरलिटी नहीं हो, वह केवल धन अर्जित करने का एक संसाधन बन जाता है। आदरणीय श्रोता बंधु, आज भी जिस समाज में अपने घर में बड़े बुजुर्गों का सम्मान होता है, वह घर जो है खुशहाल होता है, और जिस घर में बड़े बुजुर्गों का परित्याग होता है, तिरस्कार होता है, वह घर परिवार जो है धीरे धीरे बिखरने लगता है। मेरा मानना है कि जो घर परिवार के बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन हैं, उनके पास अनुभव का बहुत बड़ा खजाना है। जैसे कहा जाता है कि भारत वर्ष के कर्नाटक राज्य में कोलार में सोने का खजाना है और वहाँ जो है निकाला जाता है, ठीक उसी तरह जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, उनके जीवन का अनुभव जो भी व्यक्ति अपनाता है, उसका जीवन सरल और सरस हो जाता है। हमने यह जीवन में अनुभव किया है, क्योंकि बातें मेरे पास बहुत है, जो जीवन का अनुभव है उसे मैं साझा नियमित और लगातार करता रहूँगा। और चूंकि घड़ी का इशारा है कि आपका बहुत सारा संदेश है, उसका भी प्रत्युत्तर हमें देना है, तो मेरे साथ सोनू जी बैठे हैं और वह प्रश्नों को पढ़ेंगे और मैं पूरी ईमानदारी और सच्चाई से उन प्रश्नों का उत्तर दूंगा।
0: जी सर, हर सप्ताह की तरह इस सप्ताह भी संचार के विभिन्न माध्यमों से बहुत सारे संदेश पहुँचे हुए हैं। सबसे पहला संदेश पहुँचा हुआ है राम अयोध्या शाह जी का कुचायकोट से। नमस्कार पूरे रेडियो रिमझिम परिवार को, मैं हालचाल और प्रादेशिक समाचार तथा राष्ट्रीय समाचार ऐप से सुनते हैं। निर्गुण का समय निश्चित किया जाए और उसे कम से कम 30 मिनट समय दिया जाए। पिछले 2 सप्ताह से बिरहा अच्छा नहीं चला, बाकी रेडियो रिमझिम शानदार तरीके से चल रहा है, इसके लिए धन्यवाद। तो सर, इनके संदेशों पर अपना प्रतिक्रिया दे।
1: आदरणीय शाह जी, आपके पूरे परिवार को रेडियो रिमझिम परिवार के तरफ से हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि आप जो है रेडियो रिमझिम 90.4 को सुनते हैं, और जो मुख्य चीज है हालचाल और प्रादेशिक समाचार, जिसे आप नियमित सुनते हैं, यह जानकर काफी अच्छा लगा। और जो रेडियो रिमझिम को सुनता है वही अपने बातों को सही और सटीक ढंग से आपका संदेश मिला में पहुंचाता है। हमारे सुनने वालों की संख्या लाखों लाख है, लेकिन संदेश जो है सैकड़ों की संख्या में आते हैं। यह दर्शाता है कि जो लोग दिल से जुड़े हैं, मन से जुड़े हैं, रेडियो रिमझिम के प्रति समर्पित हैं, उन सभी श्रोताओं को हम सदैव नमन करते हैं। और हमारे कई ऐसे शानदार श्रोता हैं जो संदेश तो नहीं भेजते हैं, लेकिन रेडियो रिमझिम के कार्यालय में फोन करके शनिवार और रविवार को पता करते हैं कि हम उपलब्ध हैं कि नहीं। यह बात दर्शाता है कि आपका संदेश मिला कार्यक्रम सुनने के लिए वह जो है बहुत ही आतुर रहते हैं। उन सभी सदस्यों को हम अपनी पूरी टीम के तरफ से सदैव नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। आदरणीय शाह जी, आपने कहा कि निर्गुण का समय बढ़ाया जाए। वैसे भी प्रतिदिन शाम को 4 बजे से 30 मिनट निर्गुण प्रसारण होता है और 30 मिनट भोजपुरी गीतों का प्रसारण हम लोग करते हैं। यह हमारा शेड्यूल है, कार्यक्रम है। हो सकता है कभी ऑपरेटर 5 मिनट कम लगा दिए हों या 5 मिनट अधिक लगा दिए हों, तो निर्गुण जो है नियमित और सही समय पर चलता है। बिरहा के बारे में कहा जाता है तो यह बिरहा जो है पूर्व में भी चला था। आपका जब संदेश आया तो हमारे जो कार्यक्रम अधिशासी पदाधिकारी हैं या जो देख रेख करते हैं उन्होंने चेक किया तो वह निर्गुण पहले भी चला था और इस बार भी चला है। क्योंकि हम बता चुके हैं कि रेडियो रिमझिम जब कोई विशेष कार्यक्रम चलाता है तो उसको कई चरणों में देखा जाता है कि यह कार्यक्रम हमारे श्रोताओं के हित में है कि नहीं, तब उस कार्यक्रम को हम प्रसारित करते हैं। तो निर्गुण को और बिरहा को चेक किया गया तो वह सही समय पर और सही दिशा में चल रहा था। तीसरी बात, आपने कहा हालचाल के बारे में, तो आपके साथ जो हमारे युवा साथी सुन रहे हैं तो रेडियो पर रात को 9:05 में और सुबह 7 बजे नियमित हालचाल चलता है, लेकिन रात को 12 बजे से पहले हमारा प्रयास होता है कि हालचाल को रेडियो रिमझिम के नाम से जो YouTube बना है उस पर भी हम लोग डाल देते हैं और उस पर भी लोग बड़े मजे से और चाव से केवल ऑडियो सुनते हैं। और इसलिए हम लोग ऑडियो डालते हैं केवल आवाज, क्योंकि जब हम फोटो के साथ आवाज को सुनेंगे तो 1.5 GB, 2 GB का इंटरनेट या नेट जो मोबाइल को मिलता है एगो हालचाल सुनने में ही आधा समाप्त हो जाएगा। इसलिए ऑडियो डाला जाता है कि नेट भी बचा रहे और सारी सूचनाएं भी मिल जाए। तो हम जो भी काम करते हैं सबसे पहले अपने श्रोताओं को के हित को ऊपर रखते हैं और अपने हित को नीचे रखते हैं। यही कारण है कि रेडियो रिमझिम 2008 से 2026 हो गया। जो श्रोताओं की संख्या थी वह लगातार बढ़ता रहा, नए लोग जुड़ते रहे, पुराने लोग अपनी बातों को हम तक पहुंचाते रहे। और यह जो कार्यक्रम है आपका संदेश मिला, यह आम जनता से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है जिसमें आप अपने व्यक्तिगत बातें रेडियो रिमझिम के कार्यक्रमों के बारे में भी हम तक पहुंचाते हैं। और इससे सबसे बड़ा लाभ हमारे श्रोताओं को यह होता है कि जहाँ हमारी कमियाँ रह जाती है कार्यक्रमों में, जहाँ हमें सुधार करना होता है तुरंत करते हैं, त्वरित गति से करते हैं। यानी प्रसारणकर्ता और श्रोताओं के बीच का यह कार्यक्रम एक संगम है जिसके वजह से रेडियो रिमझिम का कार्यक्रम बेहतर होते रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार
0: जी। सर, अगला संदेश पहुंचा हुआ है अमित कुमार बैठा जी का पोखरभिंडा सिवान से। नमस्कार सर, रेडियो रिमझिम का सभी कार्यक्रम चल रहा है लेकिन दिन में ऑनलाइन कार्यक्रम क्यों नहीं चल रहा है, कृपया बताया जाए। बाकी कार्यक्रम बेहतर है, समय से रेडियो रिमझिम का संचालन हो रहा है, तो सर इनके संदेशों पर अपना प्रतिक्रिया दे।
1: आदरणीय अमित कुमार जी, आपके पूरे परिवार को रेडियो रिमझिम परिवार के तरफ से हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। आपका प्यार भरा संदेश हमें मिला, इसके लिए हम आपके पूरे परिवार को, आपके पूरे जिले वासियों को धन्यवाद देते हैं। ऑनलाइन कार्यक्रम न चलने का कारण कार्यक्रम के शुरुआत में हमने बताया है कि जो हमारी आरजे थी वह अस्वस्थ हो गई थी, जिसके कारण हमने ऑनलाइन कार्यक्रम का प्रसारण नहीं कर पाया और आने वाले सप्ताह में हम शुरू कर देंगे। लेकिन रेडियो रिमझिम का सीमित संसाधन है, सीमित मानव बल है, जिसके बदौलत हम अपने कार्यक्रमों को प्रदेश, देश और विदेश तक पहुंचाते हैं। कभी कभी किसी का अस्वस्थता के कारण, मानव बल की कमी के कारण कोई कोई कार्यक्रम हम बाधित हो जाता है। जितना कष्ट आपको होता है उतना ही एक प्रसारणकर्ता होने के नाते हमें भी होता है। लोग बोलते हैं, अपनी बातों को रखते हैं, स्वस्थ मनोरंजन करते हैं, बड़ा ही आनंदमयी कार्यक्रम ऑनलाइन होता है। रात में हो, दिन में हो, सभी लोग खुलकर अपने बातों को रखते हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से जो ऑनलाइन होता है, छोटी छोटी बातें भी हमारे आदरणीय श्रोता आरजे तक पहुंचाते हैं। हमारे जो आरजे हैं, जो रेडियो पर बोलते हैं, वह अपनी बातों को हम तक पहुंचाते हैं। और जब दोनों का कोऑर्डिनेशन होता है, समन्वय होता है, तब कार्यक्रम और बेहतर हो जाता है। तो हमारे परिस्थिति को देखते हुए आप सकारात्मक सहयोग जो लंबे समय से कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे और आपका संदेश मिला कार्यक्रम में अपनी बातों को पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
0: जी सर, अगला संदेश पहुंचा हुआ है। गाना चलते टाइम ही बहुत प्रचार आ जाता है, यह सबसे बड़ी गलत बात है। गाना प्ले हो रहा है, इस बीच में प्रचार आ जाता है, इस तरह गाने का कोई मजा ही नहीं रहता। इस संदेश को भेजे हुए हैं विजय शाह जी, तो सर इनके संदेशों पर अपना प्रतिक्रिया दे।
1: आदरणीय विजय शाह जी, आपके पूरे परिवार को रेडियो रिमझिम परिवार के तरफ से हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। यह जब संदेश आपका मिला, उसी समय जो हमारी टेक्निकल टीम है वह जो है जांच फरक शुरू कर दी थी। आपकी बात जो है 100% सही था। हमें अभी भी याद है, रात को 11 और 1 बजे के बीच में हमारी टेक्निकल टीम ने जो सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी हुआ था, जहां से हम प्रसारित करते हैं, उसको जो है वे लोग ठीक ठाक किए। यह बात हमारे टीम को समझ में नहीं आ रहा था शुरुआती दौर में। जब हम लोग सुनते थे तो लगता था कि श्रोता अधिक हैं, इसलिए गाना को थोड़ा काट दिया गया है। जब लगातार इस तरह की बातें होने लगी, तो अभी हम लोग विचार कर रहे थे कि अब हम लोग देखें, तभी आपका जो है यह संदेश मिला, तो हमारी शंका जो है पुष्ट हो गई कि एकदम सही बात है। और 11 बजे रात से 1 बजे रात तक हमारी टेक्निकल टीम जो है इस पर लगी, सॉफ्टवेयर को जहां गड़बड़ियां थी ठीक की और हमें रिपोर्ट अगले दिन किया गया। तो हम इसके लिए आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और आप जैसे आदरणीय श्रोताओं के प्रति अपने हृदय में अपार प्रेम और श्रद्धा रखते हैं कि जब भी कोई रेडियो रिमझिम के प्रसारण में गड़बड़ी हो, फोन के माध्यम से, व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से जरूर सूचित करें। कई हमारे नए श्रोता हैं, कहते हैं कि हमें नंबर कहाँ से मिलेगा, तो रेडियो रिमझिम के फेसबुक पर जब आप जाइएगा तो रेडियो रिमझिम के सभी कार्यक्रमों का नंबर, कार्यालय का नंबर, एक पोस्टर बनाकर लिख दिया गया है, आप वहां से नोट करें और हमको सूचित करें। कई श्रोता ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हम तो फेसबुक चलाते नहीं हैं, तो हमको नंबर कहां से मिलेगा। तो आप ध्यान रखें, जो भी हमारे आरजे ऑनलाइन कार्यक्रम में बैठते हैं, उस कार्यक्रम का नंबर हर 15 मिनट के बाद या 30 मिनट के अंदर एक बार जरूर नए श्रोताओं के लिए बताते हैं कि हमारा नंबर यह है, तो आप उस पर भी हमें सूचित कर सकते हैं। आपका सकारात्मक सहयोग जो है रेडियो रिमझिम को सही दिशा में ले जाने का एक छोटा सा सहयोग है। इसके लिए एक बार पुनः हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, नमन करते हैं।
0: जी सर, अगला संदेश पहुंचा हुआ है शैलेश पांडे जी का। पूरे रेडियो रिमझिम को नमस्कार है। अपने जिले का और पूरे बिहार का लोकप्रिय चैनल रेडियो रिमझिम है। आपने संदेश मिला में बताया कि 26% सर्वे में रेडियो रिमझिम का रिजल्ट आया है, यह जानकर बहुत खुशी हुआ। इसी तरह रेडियो रिमझिम लोगों का सेवा करते रहे, तो सर इनके संदेशों पर अपना विचार दे।
1: आदरणीय पांडे जी, आपके पूरे परिवार को रेडियो रिमझिम परिवार के तरफ से हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। हमारे आदरणीय श्रोता, आपका संदेश मिला कार्यक्रम को बड़े ही ध्यान से सुनते हैं। इस संदेश के माध्यम से हमें महसूस हो रहा है, प्रतीत हो रहा है। हमने बताया था कि 3 महीने तक एक संस्थान द्वारा रेडियो रिमझिम के 15 किलोमीटर रेडियस में आवर्ती में एक सर्वे किया गया कि कितने लोग जो है रेडियो से, ऐप से, इंटरनेट से या वाहन से रेडियो रिमझिम को सुनते हैं, कौन सा कार्यक्रम सुनते हैं, कौन सा कार्यक्रम उन्हें बेहद अच्छा लगता है। 3 महीने के बाद वह रिपोर्ट जो है उच्च स्तर पर पहुंचाया गया, जहां से हमें यह खबर मिला कि रेडियो रिमझिम गोपालगंज के 15 किलोमीटर रेडियस में केवल 26% लोग जो है सुनते हैं। देश विदेश और दूसरे प्रदेशों में कितने लोग सुनते हैं वह अलग विषय है, लेकिन 26% का मतलब यह हुआ कि हमारी गोपालगंज की जनसंख्या 2011 में यदि 25 लाख है या 28 लाख है, हम जो है बता रहे हैं एक अनुमान के तहत, और 2026 तक कितनी हुई है, 2011 के सेंसस से बता रहे हैं, 2026 में कितनी हुई है अंदाज कर रहे हैं कि 35 लाख के करीब हुई होगी या 30 लाख, तो उसका जो है 26% काफी होता है। और हमें लगता है कि इतनी बड़ी जनसंख्या, जहां सोशल मीडिया का जमाना है, उस समय होना अपने आप में बड़ी बात है। तो जिन लोगों ने सर्वेकर्ता के साथ सहयोग किया, उनको हम इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और उम्मीद करते हैं कि भविष्य में भी आप लोगों का सकारात्मक सहयोग मिलेगा। आदरणीय पांडे जी, रेडियो रिमझिम का यह प्रयास होता है कि हम स्वस्थ मनोरंजन, सही जानकारी, हम लोग यूट्यूबर नहीं हैं। एक रेडियो स्टेशन की स्थापना करने में कई चरणों से सरकारी विभाग के माध्यम से भारत सरकार तक पहुंचना पड़ता है, तब जाकर जो है स्वीकृति प्राप्त होती है। इसलिए बड़े ही सावधानी से एक निष्ठावान और भारतीय संविधान के अंतर्गत रहते हुए अपने कार्यक्रमों का हम प्रसारण करते हैं। सरकार द्वारा जो भी गाइडलाइन हमें दिया गया है, उसी परिधि में रहकर बेहतर काम करने का प्रयास किया जाता है। और उस स्थिति में यदि इतनी बड़ी जनसंख्या रेडियो रिमझिम को सुनती है, यह जो है अपने आप में उपलब्धि है। इसके लिए हम तमाम श्रोताओं के प्रति आदर और सम्मान व्यक्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि भविष्य में भी आप लोगों का इसी तरह का सकारात्मक सहयोग रेडियो रिमझिम परिवार को मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
0: जी सर, अगला संदेश पहुंचा हुआ है भगवानपुर पंचदेवरी से रोशन सिंह जी का। रेडियो रिमझिम को हमारे क्षेत्र में ऐप के माध्यम से सुना जाता है, कार्यक्रम अच्छा है, विज्ञापन संबंधित और भारतीय संस्कृति की कहानियां भी सुनाई जाए, तो सर इनके संदेशों पर अपना प्रतिक्रिया दें।
1: आदरणीय श्रोता बंधु, आपके पूरे प्रखंड वासियों को, ग्रामवासियों को रेडियो रिमझिम परिवार के तरफ से हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। दूर दराज क्षेत्र में रहते हुए यदि आप रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम को सुनते हैं, और उससे भी अच्छी बात है कि आपका संदेश मिला, कार्यक्रम में आप शामिल होते हैं, यह एक प्रोत्साहन का कार्य करते हैं। इसके लिए हम हृदय के गहराइयों से आपके प्रति आदर और सम्मान व्यक्त करते हैं। आदरणीय श्रोता बंधु, हमारे कई कार्यक्रम ऐसे हैं जैसे भारत की कहानियाँ, बिरहा के माध्यम से कहानियाँ, सोठी बिरजाभार की कहानियाँ, विक्रम बैताल की कहानियाँ, जो हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति और पूर्वजों की वीरता की कहानी सुनाता है और हम लोगों के अंदर एक अदृश्य शक्ति और नैतिकता भरता है और स्वस्थ मनोरंजन के साथ हमें बेहतर कार्य करने का प्रेरणा देता है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने बताया है कि हमारे समाज में 99% से ज्यादा लोग अच्छे, सच्चे और बेहतर हैं, लेकिन केवल 1% के कारण हम लोग अपने घरों में, गाड़ी में, मकान में ताला लगाते हैं। 99% से ज्यादा लोग अच्छे हैं और उस समाज में हम लोग रहते हैं। आज भी जब कोई व्यक्ति बाइक से, साइकिल से टकराता है, गिरता है, तो वहाँ के अगल बगल के लोग अपना सारा काम छोड़कर उस व्यक्ति को उठाने, बैठाने, अस्पताल भेजने का काम करते हैं। इससे प्रतीत होता है कि हमारे समाज में अच्छे लोगों की प्रचुरता है, संख्या अधिक है। जहाँ आज के जमाने में बाप बेटा में नहीं पट रहा है, पुत्र और माता में कहीं कहीं वैचारिक मतभेद हो जा रहा है, वहाँ समाज में सहयोग करने वाले लोगों की संख्या आज भी काफी है। हो सकता है नैतिक बल की कहीं कमी हो, लेकिन आज भी लोग बेहतर हैं। कई जगह देखा जाता है कि सकारात्मक लोगों की संख्या अधिक है, नकारात्मक लोगों की संख्या कम है। गांव में देखिए तो 90% से 95% से ज्यादा लोग एक दूसरे के सहयोगी हैं। बस 2-4% जो है न खाएंगे और न खाने देंगे के नीति पर चलते हैं। तो यह समाज है, सबका साथ, सबका विकास होना चाहिए और सबको साथ लेना होना चाहिए। जिस तरह हमारे शरीर में 5 उंगली है, 5 डिजाइन में वह दिखता है, लेकिन यह 5 जब मिल जाता है तो एक मुक्का के तरह काम करता है। उसी तरह समाज में सभी लोगों का सकारात्मक सहयोग से समाज मजबूत होता है, देश मजबूत होता है और संसार में हमारी छवि एक मजबूत देश के नागरिक के रूप में होती है। कहा जाता है कि पहले भारतीय पासपोर्ट को बड़ा कम ध्यान दिया जाता था, जो समाचार पत्रों में हमने भी पढ़ा है। आज जो है बड़े मजबूत स्थिति में देखा जा रहा है। जैसे जैसे आर्थिक रूप से देश या परिवार मजबूत होता है, वैसे वैसे दूसरे के नजर में वह बेहतर होते जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
0: जी सर, अगला संदेश पहुंचा हुआ है। नाजिर हुसैन माझागढ़ से भेजे हैं। पूरे रेडियो रिमझिम टीम को सलाम। ऑनलाइन कार्यक्रम दिन में शुरू किया जाए। स्वच्छता की कहानी आपने रेडियो रिमझिम के माध्यमों से सुनाया, यह काफी अच्छा था। इसे फिर से एक बार रिपीट किया जाए। तो सर, इनके संदेशों पर अपना प्रतिक्रिया दें।
1: जनाब नाजिर हुसैन साहब को रेडियो रिमझिम परिवार के तरफ से नमन है, प्रणाम है। आपके पूरे परिवार को, आपके क्षेत्रवासियों को भी नमन और प्रणाम है। स्वच्छता व्यक्तिगत जीवन में भी बहुत ही जरूरी है, मेरा भी मानना है। स्वच्छता जो है व्यक्ति को बर बीमारी से जो है अलग रखेगा। साफ सफाई, घर, बिछावना, शरीर कुछ भी हो, यदि हम थोड़ा सा समय दे देते हैं तो यह जो है हमारे लिए बेहतर होता है। भारत सरकार और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयास से स्वच्छता पर बल दिया जा रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है और इज्जत घर बनाया जा रहा है। जो शौचालय होता था उसका नाम जो है इज्जत घर हो गया है। वह जो है राज्य सरकार और केंद्र सरकार के संयुक्त प्रयास से यह कार्यक्रम व्यापक स्तर पर चल रहा है। गांव-गांव में भी डस्टबिन अब रखा जा रहा है। शहर में तो पहले से था, लेकिन गांव में भी स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उसके लिए स्वच्छता कर्मचारी भी रखे गए हैं प्रत्येक वार्ड में, जहाँ तक हमें जानकारी है। भारत सरकार के आदेश से हमने इस कार्यक्रम को बनाया और चलाया और आने वाले 17 सितंबर को सुबह 7:30 पर इसका तीसरा एपिसोड हम प्रसारित करने जा रहे हैं। 3 एपिसोड हमने स्वच्छता पर बनाया है। कई प्रखंडों में हम गए, लोगों से बातचीत किए, जो स्वच्छता कर्मी है उनसे भी बात किए, महिला हो पुरुष हो, सब लोगों ने अपने अपने विचारों को रखा। मेरा मानना है कि सरकार कोई भी कानून बनाए या कोई भी नियम बनाए तो हमें भी उसमें योगदान देना है, अपना सहभागिता करना है। यदि हम सब लोग छोटा छोटा प्रयास करें तो हम लोग का जीवन जो है बेहतर हो जाएगा। हम जो 20-21 दिन नहीं थे, इसी बीच दिल्ली जाने का हमें अवसर मिला, तो हम जिस ट्रेन में जा रहे थे तो देखे कि लोग जो है चाय पी के कप को स्लीपर में थे तो कप को जो है उठा के ट्रेन में जहाँ शौचालय बना है उसके बगल में डस्टबिन जो है बना हुआ था। लोग जो है अपने सीट पर से जाकर उस कागज के कप को उस डस्टबिन में डाल रहे थे। यह जो है मेरे नज़र में बहुत बड़ा बदलाव है। आज भी कई लोग जो है मूंगफली ट्रेनों में खाते हैं तो जिस पॉलिथीन में या बर्तन में खा रहे हैं, हमने देखा कि उसका जो खोइया है उसको जो है उसी पॉलिथीन में रखे हैं और खाने के बाद ले जाकर उस डस्टबिन में डाल रहे हैं। तो यह जो है एक क्रांतिकारी बदलाव है और हमें भी अपने जीवन में अपनाना चाहिए। बचपन में शिक्षक, माता पिता स्वच्छता पर विशेष बल देते थे कि बिना नहैले खाना ना मिली। विद्यालय में चेक होता था कि नाखून आपका बढ़ा है कि नहीं, आप नहाए हैं कि नहीं, यह जो है विद्यालय में भी होता था। आज के दौर में क्या होता है यह तो हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन यह सब चेक होता था। तो स्वच्छता हमारी सभ्यता संस्कृति का एक अंग है और उसे हमें अपनाना चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए रेडियो रिमझिम ने इस कार्यक्रम को बनाया। आपको नाजिर हुसैन साहब अच्छा लगा, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं और उम्मीद करते हैं कि इन सब कार्यक्रमों का सुनने के बाद दूसरों को भी बताएं। इस तरह के रचनात्मक सहयोग से स्वच्छता जागरूकता बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
0: जी सर, अगला संदेश पहुंचा हुआ है व्यास राम जी का। सर नमस्कार, आपका संदेश मिला कार्यक्रम और SMS फरमाइश हमें काफी अच्छा लगता है। रात को समय मिलता है तो सुनते हैं। शिक्षा के साथ और क्या करना चाहिए कि व्यक्ति शून्य से शिखर तक जाए। भाईचारा और लड़कियों पर जो संदेश देते हैं वह बहुत अच्छा लगता है। तो सर, इनके संदेशों पर अपना प्रतिक्रिया दे। साथ ही समय का इशारा है कि कार्यक्रम को समापन करना चाहिए, तो प्रतिक्रिया देते हुए कार्यक्रम को समापन करें और विदा ले।
1: आदरणीय व्यास जी, आपके पूरे परिवार को, आपके क्षेत्रवासियों को, ग्रामवासियों को हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। आपका संदेश मिला कार्यक्रम में, आप लोग जैसे श्रोताओं के प्रति हम विशेष स्नेह रखते हैं। काफी अच्छा लगता है कि आप रेडियो रिमझिम के कार्यक्रमों पर भी चर्चा करते हैं, अपनी भी बातें उसमें जोड़ देते हैं। अच्छा लगता है, पारिवारिक मिलन भी हो जाता है। रेडियो रिमझिम के जितने भी श्रोता हैं मेरे समझ से एक परिवार के सदस्य के तरह हैं। हमने कई बार देखा है कि रेडियो रिमझिम का स्थापना दिवस हो, 15 अगस्त, 26 जनवरी राष्ट्रीय पर्व हो या अन्य कोई फंक्शन हो, जब भी हम सूचना देते हैं सैकड़ों के संख्या में हमारे आदरणीय श्रोता अपना मूल्यवान समय देते हैं। इसके प्रति तो हम आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आदर और स्नेह व्यक्त करते हैं। आपने प्रश्न रखा, शिक्षा के साथ व्यक्ति आगे कैसे बढ़े। हमने बचपन से सुना है और महसूस किया है कि जिस परिवार में शिक्षित लोग रहते हैं वहाँ रहन सहन, खान पान, बोल चाल सब कुछ बदल जाता है। शिक्षा जो है एकाकार है, जो व्यक्ति के जीवन में हर तरह के सुख सुविधा प्रदान कर देता है। मानव जीवन जो है धन्य हो जाता है। शिक्षा का मतलब जो है विनम्रता, नम्रता और दूसरे के प्रति आदर और सम्मान रखने का एक छोटा सा प्रयास है। और जिस व्यक्ति के पास शिक्षा है, नम्रता है, वहाँ पर लक्ष्मी जी अपने आप पहुँच जाती है। सरस्वती और लक्ष्मी का जब संयोग होता है वह व्यक्ति शून्य से शिखर के तरफ चला जाता है। शिक्षित व्यक्ति ही अपने जीवन में, अपने परिवार में उन्नति के शिखर पर लेकर चला जाएगा और उसके साथ सही दिशा में परिश्रम भी होना चाहिए। जैसे हमको एक गाछ काटना है तो नाखून कटनी से हम गाछ को नहीं काटेंगे, उसके लिए आरी है, टांगी है। तो हम सही काम को सही दिशा में सही यंत्र के माध्यम से करेंगे तभी हम शून्य से शिखर तक पहुँचेंगे। और जीवन में थोड़ा सहना रहना यह अच्छी बात है। हम जहाँ भी रहते हैं भाईचारा और प्रेम से रहें, इससे बड़ा चीज कुछ भी नहीं है। वही समाज परिवार विकास करता है जहाँ शांति व्यवस्था बनी रहती है। गाँव में जब हम लोग थे तो लोग कहते थे कि जिसके घर केस मुकदमा नहीं होता है, डॉक्टर के पास आना जाना कम होता है, वह परिवार जो है उन्नति के तरफ बढ़ते जाता है। अर्थात हमें अपने शिक्षा पर विशेष ध्यान देना है। और लड़कियों की शिक्षा तो अति महत्वपूर्ण है। जो हमारे देश के दार्शनिक हैं उन्होंने कहा है कि जब एक लड़का पढ़ता है तो वह कमाकर अपने परिवार को चलाता है, लेकिन जब एक लड़की पढ़ती है तो पूरा परिवार जो है शिक्षित हो जाता है। यह बात आज भी उतना ही सत्य है जितना पूर्व में था। तो हमें जो है बच्चों के शिक्षा पर विशेष ध्यान देना

0: चाहिए और सदाचारी होना चाहिए और दूसरे के प्रति आदर और सम्मान रखना चाहिए, आप जो है शून्य से शिखर के तरफ चले जाएंगे। यह मेरा एक छोटा सा सुझाव है। आदरणीय श्रोता बंधु, आप लोगों से बात करते करते समय कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता है, मन में बहुत बातें रहती है लेकिन समय जो है अपना इशारा करने लगता है कि अब आपको इस कार्यक्रम से निकलना होगा। तो अब मुझे जाने की इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए और पूरे समाज में शांति व्यवस्था के लिए अपना योगदान देते रहिए। इसी के साथ आप सबको एक बार पुनः रेडियो रिमझिम परिवार के तरफ से हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं और जाने की इजाज़त लेते हैं। नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।
1: तो श्रोताओं, ये रहा आज का संदेश मिला कार्यक्रम। यदि आप भी इस कार्यक्रम में अपना शिकायत, सुझाव, प्रशंसा या अपने विचारों को भेजना चाहते हैं तो आप भी भेज सकते हैं। इसके लिए हमारा पता है रेडियो रिमझिम, बंजारी मोड़, गोपालगंज, पिन कोड 84 14 28 तथा व्हाट्सएप नंबर है 98527 88 291 और ईमेल आईडी है radiorimjim@gmail.com। आप जिस माध्यम से अपने शिकायत, सुझाव या प्रशंसा या अपने विचारों को भेजना चाहते हैं उस माध्यम का उपयोग करके हम तक पहुंचा सकते हैं। तो फिलहाल इस कार्यक्रम से हमें भी दीजिए जाने की इजाज़त। सुनते रहिए रेडियो रिमझिम, जो हमेशा से कहता है सुनो दिल से। नमस्कार।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सीरिया रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

0: लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
1: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर से सस्ता कहीं नहीं।
0: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डीलक्स 77,426 रुपए में,
1: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
0: और सबसे खास बात ये है ऑन रोड कीमत, यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
1: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
0: अभी कॉल करें 92899-22567 या 97714-8665
1: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 चैन पट्टी, गोपालगंज। क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
0: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
1: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
0: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
1: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
2: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स को समाधानों का मंच बताया। 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के समापन पर श्री मोदी ने नई दिल्ली घोषणा पत्र के सभी निष्कर्षों को समयबद्ध कार्यों में बदलने की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने शिखर सम्मेलन के दौरान विश्व नेताओं के साथ 15 द्विपक्षीय बैठकें की, अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के प्रमुखों के साथ भी मुलाकात की। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, भारत को प्रयोगशाला में उत्पादित हीरो और आभूषण क्षेत्र में विश्व का नेतृत्व करने का लक्ष्य रखना चाहिए। इंडोनेशिया के जावा सागर में नौका पलटने से 6 लोगों की मौत, लगभग 130 लापता। भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीम ने चीन के मोकी में जूनियर एशिया कप खिताब जीता। और क्रिकेट में महिला T20 एशिया कप के फाइनल में भारत और मौजूदा चैंपियन श्रीलंका के बीच दुबई में मैच जारी। वहीं दिल्ली में T20 श्रृंखला के पहले मैच में भारत और अफगानिस्तान आमने सामने। अब समाचार विस्तार से। नई दिल्ली में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आज संपन्न हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर बल दिया कि ब्रिक्स की विविधता ही इसकी पहचान बनी रहे, सहयोग प्रेरणा हो और प्रगति मानवता के हित में योगदान दे। दो दिन के शिखर सम्मेलन के आखिरी दिन समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स सिर्फ देशों का समूह नहीं बल्कि समाधानों का पारिस्थितिकी तंत्र है।
1: आप सबकी मौजूदगी ब्रिक्स की बढ़ती रेलेवेंस, ओपननेस और इंक्लूसिवनेस का प्रमाण है। पिछले दो दिनों की हमारी चर्चाओं ने हमारा विश्वास और मजबूत किया है कि ब्रिक्स केवल देशों का समूह नहीं, सॉल्यूशंस का एक इकोसिस्टम है।
0: श्री मोदी ने आशा प्रकट की कि शिखर सम्मेलन में अपनाया गया नई दिल्ली घोषणा पत्र साझा विजन और भविष्य के सहयोग के लिए स्पष्ट दिशा देगा।
1: हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें एडॉप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा। हमें सभी आउटकम्स को समयबद्ध एक्शन और लास्ट माइल इम्पैक्ट से जोड़ना होगा। हमारे फ्रेमवर्क फाइल से आगे बढ़कर रियल लाइफ में इम्पैक्ट पैदा करे, इसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स अब अपने तीसरे दशक में प्रवेश कर रहा है, इसलिए दुनिया अब इस समूह से सिर्फ विचारों और वायदों की नहीं बल्कि ठोस परिणामों की उम्मीद करती है। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स के अगले अध्यक्ष के तौर पर चीन को शुभकामनाएं दी। इससे पहले आरंभिक भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स के भीतर विकसित समाधानों के लाभ केवल समूह तक सीमित नहीं होने चाहिए।
1: ब्रिक्स में ग्लोबल साउथ के देशों का विश्वास बढ़ा है क्योंकि ब्रिक्स में उनकी आवाज सुनी जाती है, उनके अनुभव का सम्मान होता है और सॉल्यूशन उनके लिए ही नहीं उनके साथ मिलकर बनाए जाते हैं। ब्रिक्स की शक्ति हमारी डाइवर्सिटी और कोऑपरेशन में है। वी मे बी रूटेड इन डिफरेंट रियालिटीज बट टूगेदर वी राइज थ्रू कोऑपरेशन एंड ब्लॉसम फॉर ह्यूमैनिटी।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने सम्मेलन के दूसरे और आखिरी दिन ब्रिक्स सहयोगी देशों के नेताओं का स्वागत किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: दो दिनों तक चले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास पर केंद्रित रहा। इनमें वैश्विक संस्थाओं में सुधार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, आतंकवाद, शांति और सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य और सतत विकास जैसे विषय शामिल रहे। ब्रिक्स देशों के नेताओं ने भविष्य में महामारी से निपटने के लिए बेहतर सहयोग और संक्रामक बीमारियों की समय रहते पहचान के लिए एक साझा चेतावनी प्रणाली विकसित करने का समर्थन किया। पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी नेताओं ने चिंता जताते हुए अधिकतम संयम बरतने, बातचीत और कूटनीति के समस्याओं का समाधान खोजने पर जोर दिया। साथ ही आम नागरिकों और नागरिक बुनियादी ढांचे की सुरक्षा की जरूरत पर बल दिया। इसके अलावा ब्रिक्स नेताओं ने आतंकवाद के सभी रूपों और उसके हर तरह की गतिविधियों की कड़ी निंदा की। नई दिल्ली घोषणा पत्र से आर्थिक विकास और वैश्विक शासन के क्षेत्रों में ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग और मजबूत होने की उम्मीद है। साथ ही ग्लोबल साउथ की आवाज को भी मजबूती मिलेगी। यह शिखर सम्मेलन वैश्विक राजनीति, अर्थव्यवस्था और बहुपक्षीय सहयोग के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण रहा। पश्चिम एशिया की स्थिति राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा से यह स्पष्ट हुआ कि ब्रिक्स अब केवल आर्थिक सहयोग का मंच नहीं रहा बल्कि वैश्विक राजनीतिक विमर्श में भी ब्रिक्स की भूमिका लगातार बढ़ रही है। ब्रिक्स टीम के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विदेश मंत्रालय ने कहा कि नई दिल्ली में आज संपन्न ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के कई ठोस और विकास केंद्रित परिणाम निकले। विदेश मंत्रालय में आर्थिक संबंधों के सचिव सुधाकर दलेला ने नई दिल्ली में कहा कि अलग अलग विषयों पर 50 से अधिक ठोस परिणाम हासिल किए गए। उन्होंने इसे भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता की बड़ी कामयाबी बताया।
3: दोनों दिनों की बैठक का उद्देश्य अलग अलग था। कल विशेष सत्र में सदस्यों ने वैश्विक शासन और बहुपक्षवाद पर सीधे और स्पष्ट विचार रखे तथा नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाया। आज खुले सत्र में इस सहमति को व्यापक ब्रिक्स परिवार और ग्लोबल साउथ के साझेदार देशों तक पहुंचाया गया।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने आज ब्रिक्स सम्मेलन से इतर विश्व नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें की। पिछले तीन दिन में श्री मोदी ने राष्ट्र अध्यक्षों और सरकार के प्रमुखों के साथ 15 बैठकें की। उन्होंने दुनिया के नेताओं और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रमुखों के साथ कई अनौपचारिक बैठकें भी की। एक रिपोर्ट।
4: प्रधानमंत्री मोदी ने आज कजाकिस्तान, मिस्र, इंडोनेशिया, फिलीपींस, दक्षिण अफ्रीका, बुरुंडी, नाइजीरिया और युगांडा के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। श्री मोदी ने कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम जोमार्तो तोकायेव के साथ बैठक में आपसी संबंधों में प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ताह अस्सीसी के साथ भी बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इस दौरान क्षेत्रीय घटनाक्रम और भारत मिस्र की साझेदारी से कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश कई क्षेत्रों में साझेदारी को मजबूत करना जारी रखेंगे। श्री मोदी ने फिलीपींस के राष्ट्रपति आर मार्कोस जूनियर के साथ भी बातचीत की। वहीं दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के साथ बैठक में श्री मोदी ने भारत दक्षिण अफ्रीका रणनीतिक साझेदारी के सभी पहलुओं की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने बुरुंडी के राष्ट्रपति, नाइजीरिया और युगांडा की उपराष्ट्रपति के साथ भी बैठक की। इससे पहले कल श्री मोदी ने इथियोपिया, मलेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, वियतनाम और चीन के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। शुक्रवार को प्रधानमंत्री ने रूस और ईरान के नेताओं के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र महासचिव से भी मुलाकात की। समाचार कक्ष से देवेंद्र त्रिपाठी।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
6: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
7: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
6: अब तक इस योजना से 9,50,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भारतीय रत्न और आभूषण उद्योग से ये सुनिश्चित करने का आह्वान किया है कि प्रयोगशाला में उत्पादित हीरों का संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र और विनिर्माण श्रृंखला पूरी तरह से भारतीय हाथों में रहे। उन्होंने आज मुंबई में 52वें भारत रत्न और आभूषण पुरस्कार समारोह में कहा कि प्रयोगशाला में उत्पादित हीरों से इसके व्यापार का स्वरूप बदल रहा है। श्री शाह ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने देश में कई बड़े परिवर्तन किए हैं।
8: सरकार ने 12 साल में देश के अंदर कई आमूलचूल परिवर्तन किए हैं। हमारा देश 2014 में फ्रेजाइल 5 में गिना जाता था, आज टॉप 5 में गिना जाता है। अभी पहली तिमाही के आंकड़े आए, 7.8% का ग्रोथ रेट, हमें सबसे तेजी से बढ़ती हुई बड़ी अर्थव्यवस्था विश्व भर में बनाकर गौरव के साथ टॉप पर है।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सहयोगी दल और कई स्वयंसेवी संगठन 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक देश भर में सेवा संकल्प अभियान चलाएंगे। मुंबई में आज श्री शाह ने कहा कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और इस वर्ष अक्टूबर में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में उनके सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज आगर मालवा से मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 40वीं किस्त जारी की। इसके अंतर्गत राज्य की 1,25,00,000 से अधिक पात्र महिलाओं के बैंक खातों में 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे हस्तांतरित की गई। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली के कृषि विज्ञान केंद्रों और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में किसानों से बातचीत की। श्री चौहान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सरकार कृषि विज्ञान केंद्रों को किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए भरोसेमंद केंद्र बनाने की दिशा में काम कर रही है। एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय कल से 18 सितंबर तक नई दिल्ली में संयुक्त परिचालन समीक्षा और मूल्यांकन कोर कार्यक्रम आयोजित करेगा। 5 दिन के इस कार्यक्रम का उद्देश्य वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों को सुरक्षा से जुड़े वर्तमान राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों से अवगत कराना है। अमेरिका ईरान संघर्ष से खाड़ी क्षेत्र में अशांति फैलने के साथ ही इसका असर अन्य क्षेत्रों में भी पड़ रहा है। इसे देखते हुए इस सप्ताह राजनयिक प्रयासों पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। हॉर्मुज जल डमरू मध्य और व्यापक क्षेत्रीय सुरक्षा पर चर्चा के लिए ईरान और खाड़ी देशों की कल ओमान में बैठक होगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
9: स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और रेड सी में समुद्री सुरक्षा को लेकर चिंता बनी हुई है। इस बीच इस हफ्ते एक बार फिर डिप्लोमेटिक कोशिशों पर नजर है। ईरान और खाड़ी देशों के बीच सोमवार को ओमान में बैठक होने की उम्मीद है, जिसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और क्षेत्रीय सुरक्षा पर चर्चा होगी। ईरान का कहना है कि स्ट्रेट में जहाजों के आने जाने के लिए एक संभावित रूट को लेकर ओमान के साथ उसकी समझ बनी है। इस बैठक से बातचीत का रास्ता खुल सकता है और तनाव कम करने में मदद मिल सकती है, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को तुरंत दोबारा खोलने पर सहमति की संभावना कम है, क्योंकि ईरान ने कहा है कि यह अमेरिका के उसकी शर्तें मानने पर निर्भर करेगा। दुबई से आकाशवाणी न्यूज के लिए मनीष शिवा।
0: इंडोनेशिया में खराब मौसम के कारण जावा सागर में 240 से अधिक यात्रियों को ले जा रही एक नौका पलट गई। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है। करीब 130 यात्री और चालक दल के सदस्य लापता हैं। बचाव दल ने अब तक 107 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया है। तलाश और बचाव अभियान जारी है। भारतीय जूनियर महिला और पुरुष हॉकी टीम ने जूनियर हॉकी एशिया कप का खिताब जीत लिया है। चीन के मोकी में खेले गए फाइनल में भारतीय महिला टीम ने चीन को 1-0 और पुरुष टीम ने कोरिया को 4-1 से हराया। इस जीत के साथ भारत की महिला और पुरुष दोनों टीम ने जूनियर हॉकी विश्व कप का टिकट भी पक्का कर लिया है। क्रिकेट में T20 महिला एशिया कप का फाइनल भारत और श्रीलंका के बीच दुबई में खेला जा रहा है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 12 ओवर में बिना किसी नुकसान के 121 रन बना लिए हैं। उधर दिल्ली में भारत के साथ 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में अफगानिस्तान ने ताजा समाचार मिलने तक 17 ओवर में 6 विकेट पर 127 रन बना लिए हैं। बिहार के बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बाढ़ से 15 जिलों में 48 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं।
10: बाढ़ प्रभावित जिलों में 1,251 सामुदायिक रसोई केंद्रों के माध्यम से अब तक करीब 88,54,000 से अधिक लोगों को भोजन उपलब्ध कराया गया है। आपदा प्रबंधन मंत्री रत्नेश सदा ने कहा कि बाढ़ प्रभावित लोगों को प्रति परिवार 7,000 रुपए की सहायता राशि दी जा रही है। सुरक्षित आवागमन के लिए 1,688 नावें चल रही हैं। राहत और बचाव कार्य के लिए SDRF की 27 और NDRF की 10 टीमें तैनात है। पटना से निधिश्री।
0: इस बीच मौसम विभाग ने कल गुजरात में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स को समाधानों का मंच बताया। 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के समापन पर श्री मोदी ने नई दिल्ली घोषणा पत्र के सभी निष्कर्षों को समयबद्ध कार्यों में बदलने की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने शिखर सम्मेलन के दौरान विश्व नेताओं के साथ 15 द्विपक्षीय बैठकें की। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, भारत को प्रयोगशाला में उत्पादित हीरो और आभूषण क्षेत्र में विश्व का नेतृत्व करने का लक्ष्य रखना चाहिए। और क्रिकेट में महिला T20 एशिया कप के फाइनल में भारत और मौजूदा चैंपियन श्रीलंका के बीच दुबई में मैच जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
11: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमझिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
12: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
13: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
12: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
13: अभी कॉल कीजिए 90-066-7231।
12: कॉल कीजिए 90-066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
14: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
13: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
12: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
13: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
12: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
13: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
12: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
13: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
12: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
15: ठक ठक।
16: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
17: अच्छा मिला ही नहीं।
16: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
18: जी हाँ कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
16: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
18: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
19: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
20: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
21: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
13: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
22: दादी, आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
23: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
22: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
23: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
22: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर, गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा, जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
23: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
22: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
13: संजय फ्रैक्चर
1: फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-86973।
2: सुनिए सुनिए सुनिए,
3: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
2: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
3: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।

0: अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523 5599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99 39 41 51 51 पे।
1: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
2: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
3: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
4: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
3: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
4: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष विशेषज्ञों द्वारा।
3: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
4: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
3: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
4: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
5: नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। नहाए खाए के साथ तीज का त्योहार शुरू। डेंगू के बढ़ते खतरे से लोगों में हुई परेशानी। आंगनवाड़ी पर गोद भराई कार्यक्रम का हुआ आयोजन। यूरिया के कालाबाजारी पर प्रशासन सख्त। शराब और धोखाधड़ी के मामले में अलग अलग जगहों से आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र, अब हालचाल विस्तार से। पूरे जिले में धूमधाम से तीज का त्योहार मनाया जा रहा है। 16 श्रृंगार कर महादेव को प्रसन्न करने वाला तीज रविवार को नहाए खाए के साथ प्रारंभ हो गया। सोमवार को महिलाएं व्रत रखेंगी। इस दौरान महिलाएं साड़ी से लेकर श्रृंगार तक की सामग्री खरीदने के लिए आज विभिन्न दुकानों पर पूरे दिन खरीदारी करती हुई दिखाई दी, जिसके वजह से शहरों में भारी भीड़ देखी गई। सुबह से ही दुकानों पर महिलाओं की भीड़ लग गई थी। फल और अन्य पूजा के सामग्री के दुकानों पर भी आज पूरे दिन भीड़ भाड़ देखा गया। साड़ी और श्रृंगार के साथ ही महिलाएं राजस्थानी चूड़ी का सर्वाधिक खरीदारी कर रही थी। महिलाएं अपनी पसंद के अनुसार कई कंपनियों की साड़ी भी खरीद रही थी। कपड़ा बाजारों से लेकर चूड़ी, मेहंदी और श्रृंगार तथा पूजन सामग्री की दुकानों पर आज पूरे दिन रौनक रहा। बदलते हुए मौसम के वजह से अब डेंगू का खतरा भी बढ़ रहा है। बताया जा रहा है कि जिले में आधा दर्जन लोगों में डेंगू की पुष्टि होने की बात भी सामने आई है। शहर के हनुमानगढ़ी की मुन्नी कुमारी, सरिया वार्ड नंबर 1 की रंजू देवी और बसडीला के सुनील कुमार समेत लगभग आधा दर्जन मरीजों में डेंगू का सिम्टम दिखाई दिया। स्थिति बिगड़ने पर बेहतर इलाज के लिए कुछ को गोरखपुर रेफर भी किया गया है। बताया जा रहा है कि भोरे के सबया निवासी अमन तिवारी के 8 वर्षीय पुत्र समृद्ध तिवारी को भी डेंगू का शिकायत मिला। परिजन इन्हें स्थानीय क्लिनिक में इलाज के लिए ले गए थे। शुरुआती स्तर पर डेंगू की जांच नहीं कराई गई। इलाज के बावजूद जब बच्चे की हालत बिगड़ने लगी तो परिजन गोरखपुर ले गए, वहां डेंगू की पुष्टि हुई। स्थिति गंभीर होने के वजह से इलाज में लोगों को परेशानी हो रही है। स्वास्थ्य विभाग भी लगातार लोगों से डेंगू के प्रति अलर्ट रहने का अपील कर रहा है। अपने आसपास कहीं भी पानी जमा न होने दें, कूलर और अन्य जगहों पर जमे पानी को बदलते रहें, साथ ही सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करें और फूल फूल बांह के कपड़े पहन कर ही घूमे। बुखार जैसे ही समझ में आए तो उसको जांच कराएं। सदर अस्पताल में सभी जांच निःशुल्क हैं, इसलिए अगर बुखार या किसी तरह का कोई गड़बड़ी दिखता है तो तुरंत अस्पताल ले जाएं, जहां जांच करने के बाद सही समय पर सही इलाज शुरू हो जाने से स्थिति भयावह नहीं होगी। अधिकारियों ने सदर अस्पताल में डेंगू वार्ड का निरीक्षण भी किया। अधिकारियों ने कहा कि बुखार को सामान्य समझकर नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जिले में अब तक आधा दर्जन मरीजों में डेंगू की पुष्टि की गई है। शहर में मच्छरों का प्रकोप बढ़ने के बावजूद नियमित फॉगिंग को लेकर नगर परिषद की कार्य प्रणाली पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कागजों में फॉगिंग कराए जाने की सूचना मिलती है, लेकिन मुख्य सड़कों के साथ गली मोहल्लों और उन स्थानों पर नियमित फॉगिंग नहीं हो रही है जहां मच्छरों का प्रकोप अधिक है। नालियों और कहीं भी जमा पानी इत्यादि के आसपास फॉगिंग बिल्कुल नहीं हो रही है। इसके कारण मच्छरों के पनपने की आशंका बढ़ जाती है। लोगों ने शहर में व्यापक स्तर पर फॉगिंग और लार्वा नष्ट करने के लिए अभियान चलाने की मांग की है। जिले के विभिन्न निजी पैथोलॉजी सेंटरों में भी बुखार से पीड़ित मरीजों की डेंगू की जाँच डॉक्टर करवा रहे हैं। कई मरीजों में रिपोर्ट पॉजिटिव आने की बात भी सामने आ रही है। स्वास्थ्य विभाग के स्तर पर सरकारी रिकॉर्ड में मरीजों की संख्या कम बताई जा रही है, इससे डेंगू के वास्तविक प्रकोप को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार डेंगू संक्रमण के गंभीर मामलों में शरीर के कई अंग प्रभावित हो सकते हैं, लीवर पर असर पड़ सकता है और कुछ गंभीर मरीजों में किडनी समेत अन्य अंगों में भी जटिलताएं उत्पन्न हो सकती हैं। डेंगू की आड़ में जांच के नाम पर सावधानी बरतने की भी जरूरत है। बेहतर जांच और बेहतर रिपोर्ट से ही सही समय पर सही इलाज हो सकेगा। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी ICDS गोपालगंज के द्वारा विजयपुर परियोजना अंतर्गत आंगनवाड़ी केंद्र संख्या 99 पर पोषण माह के परिप्रेक्ष्य में गोद भराई कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें दीप प्रज्वलित कर सभी को लाभान्वित किया गया। श्रीमती रंजना कुमारी द्वारा पोषण से संबंधित एवं गर्भावस्था के दौरान किन किन बातों पर ध्यान रखा जाना चाहिए उसे गर्भवती और उनकी सास को जानकारी दी गई। गर्भावस्था में सामान्य से 350 कैलोरी अतिरिक्त रोज लेने की बात बताई गई। दिन में 3 बार मुख्य भोजन और 2 बार हल्का नाश्ता करने की भी बात कही गई। दाल, हरी पत्तेदारी सब्जियां, अंडा, दूध, मौसमी फल, मोटा अनाज जरूर खाने के लिए सलाह दिया गया। साथ ही 180 दिन तक रोज एक आयरन फॉलिक एसिड की गोली भी रात में खाने के बाद नींबू पानी या आंवला के रस के साथ लेने की सलाह भी दी गई। किसानों को निर्धारित दर पर खाद उपलब्ध कराने और खरीफ फसल की तैयारी को लेकर कृषि मंत्री ने जिला प्रशासन को आवश्यक निर्देश दिया है, जिसको लेकर जिला प्रशासन अलर्ट है। कृषि से जुड़ी योजनाओं और किसानों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की समीक्षा करते हुए उन्होंने खाद की कालाबाजारी और निर्धारित दर से अधिक कीमत वसूली पर कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया है, जिसको लेकर अब प्रशासन अलर्ट है और कहीं भी खाद की कालाबाजारी करते हुए अगर पकड़ा जाएगा तो ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होगी। यूरिया की बिक्री निर्धारित दर पर सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। कृषि मंत्री ने स्पष्ट कहा है कि कोई भी खुदरा उर्वरक विक्रेता किसानों से यूरिया के लिए 266 रुपए से अधिक नहीं ले सकता है। अगर इससे अधिक कीमत पर यूरिया बेचने वाले को पकड़ा गया तो उन पर नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। उर्वरक बिक्री केंद्रों की लगातार अब जिला प्रशासन के द्वारा निगरानी शुरू कर दी गई है। किसानों को भी किसी भी परिस्थिति में अधिक कीमत पर खाद खरीदने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा, इसके लिए प्रशासन अलर्ट है। किसानों को भी कहा गया है कि अगर कहीं भी यूरिया या खाद की कालाबाजारी होती है तो आप तुरंत जिला प्रशासन को इसकी सूचना दें। आज पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी के निर्देश पर जिले के सभी थानों पर गुंडा परेड का आयोजन हुआ, जिसमें सूचीबद्ध असामाजिक तत्वों को थाने पर बुलाकर उन्हें कड़ी चेतावनी दी गई, साथ ही उन्हें किसी भी प्रकार की आपराधिक एवं असामाजिक गतिविधियों से दूर रहने का निर्देश दिया गया। साथ ही सभी थानों पर चौकीदारी परेड का भी आयोजन हुआ, जिसमें चौकीदारों को अपने अपने क्षेत्र में सतर्क और सक्रिय रहते हुए संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने, असामाजिक तत्वों और जेल से छूटे हुए पेशेवर अपराधियों की गतिविधियों पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया गया। साथ ही आसूचना तंत्र को और अधिक मजबूत करने और शराब तस्करी तथा अवैध शराब निर्माण पर प्रभावी रोक लगाने के लिए और क्षेत्र में शांति सुरक्षा और कानून व्यवस्था कायम रखने के लिए सभी चौकीदारों को निर्देशित किया गया। माझा थाना की पुलिस ने गश्ती के दौरान दानापुर में एक शराब कारोबारी को पकड़ा है। बताया जा रहा है कि वरीय पदाधिकारियों के निर्देश पर दानापुर के राम बढ़ाई शाह की दुकान के पास पुलिस ने छापेमारी की, जहां दो तीन व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगे। पुलिस बल ने खदेड़ कर सभी को पकड़ा। पकड़े गए आरोपियों में राम बढ़ाई शाह पिता बाढ़ू शाह साकिन दानापुर थाना माझागढ़ को गिरफ्तार किया गया है। इसके पास से 59 छोटी पुड़िया में लिपटी हुई गांजा जैसा मादक पदार्थ पाया गया है। गिरफ्तार आरोपी पर अब NDPS एक्ट में मामला दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। पकड़े गए आरोपी ने पुलिस को बताया है कि वह उक्त मादक पदार्थ जादोपुर के छोटू महतो से खरीद कर लाता है और अपनी दुकान में बिक्री करता है। इसके अन्य साथियों की भी अब गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। 4 वर्षीय पाठ्यक्रम CBSE सत्र 2025-29 के द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा 28 सितंबर से शुरू होगी। परीक्षा 6 अक्टूबर तक 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। जयप्रकाश विश्वविद्यालय ने परीक्षा कार्यक्रम जारी करते हुए विषयों को ग्रुप ए और ग्रुप बी में बांटा है। ग्रुप ए के विषयों की परीक्षा पहली पाली में और ग्रुप बी के विषयों की परीक्षा दूसरी पाली में होगी। विद्यार्थियों को 18 सितंबर तक परीक्षा फॉर्म भरने का मौका दिया गया है। परीक्षा के बाद 13 से 16 अक्टूबर तक प्रायोगिक परीक्षा होगी। परीक्षा कार्यक्रम जारी होने के बाद जिले के संबंधित कॉलेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों ने तैयारी तेज कर दी है। विश्वविद्यालय की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार पहली पाली सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली 1 बजे से शाम 4 बजे तक आयोजित की जाएगी। विश्वविद्यालय ने परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए ग्रुप ए में जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, गणित, राजनीति विज्ञान, दर्शन शास्त्र, संस्कृत और कॉमर्स को रखा है। इन विषयों के अलावा दूसरी पाली में भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, हिंदी, उर्दू, AIH&C, संगीत एवं ग्रामीण अर्थशास्त्र विषयों को रखा गया है। विश्वविद्यालय में PG नामांकन की दूसरी मेधा सूची जारी होते ही छात्रों की परेशानी सामने आ गई है। सूची में नाम आने के बाद विद्यार्थी नामांकन कराने कॉलेज पहुंचे तो कई छात्रों का डिटेल समर्थ पोर्टल पर अपडेट नहीं मिला। मेधा सूची में नाम होने के बावजूद भी पोर्टल पर जानकारी नहीं दिखने से छात्र पूरे दिन कॉलेज और ऑनलाइन पोर्टल के बीच चक्कर लगाते रहे। ऑनलाइन की तारीख शुरू हो चुकी है, लेकिन पोर्टल की स्थिति ने विद्यार्थियों के सामने नया संकट खड़ा कर दिया है। बताया जा रहा है कि विश्वविद्यालय ने PG CBSE प्रथम सेमेस्टर सत्र 2026-28 की दूसरी मेधा सूची जारी की है। इसके आधार पर 12 तारीख से 16 सितंबर तक नामांकन होना है। चयनित अभ्यर्थियों को निर्धारित अवधि में कागजातों का सत्यापन कराने के साथ ही नामांकन शुल्क जमा भी करना है, लेकिन पोर्टल पर डिटेल नहीं आने से कुछ छात्र परेशान है। कृषि अनुसंधान परिषद के पूर्वी अनुसंधान परिसर पटना के द्वारा केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ ऑनलाइन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें लगभग 186 लोगों ने भाग लिया, जिसमें 101 किसान भी शामिल थे। केंद्रीय मंत्री ने किसानों, वैज्ञानिकों और अन्य हितधारकों को पिछले रबी मौसम में रिकॉर्ड उत्पादन के लिए बधाई दी। उन्होंने आगामी रबी मौसम की बेहतर तैयारी के लिए भी स्थानीय परिस्थितियों और जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए ठोस कार्य योजना बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि रबी योजना किसानों की जरूरतों के आधार पर गांव, प्रखंड और जिला स्तर पर तैयार होकर राज्य और राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचनी चाहिए। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। नहाए खाए के साथ तीज का त्योहार शुरू। डेंगू के बढ़ते खतरे से लोगों में हुई परेशानी। आंगनवाड़ी पर गोद भराई कार्यक्रम का हुआ आयोजन। यूरिया के कालाबाजारी पर प्रशासन सख्त। शराब और धोखाधड़ी के मामले में अलग अलग जगहों से आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
7: अरे तो उसे डांटती क्यों हो? उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
0: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
7: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
6: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
8: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
9: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 86-034-48-652 पे।
10: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
11: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
10: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज, और लखपतिया मोर, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
12: सारेगामा वीकेंड क्लासिक पर हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी एक जबरदस्त एपिसोड हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें 70 के दशक के बड़े ही अनोखे गाने आपके सामने आने वाले हैं, और कुछ ऐसे गाने जो शायद आपके सामने आते ही नहीं, और उनकी उन गानों की जिंदगी से जुड़ी कुछ बेहतरीन दास्तानें भी आपके साथ बांटी जाएंगी, उन कलाकारों की जिंदगियों से जुड़ी कुछ अनोखी कहानियां आपके साथ बांटूंगा। लेकिन उससे पहले 70 के दशक का ये गाना फिल्म कटी पतंग से, किशोरदा की आवाज और हमारे आनंद बख्शी साहब के बोल, पंचमदा का संगीत, शक्ति साहब ने इस फिल्म को बनाया, फिल्म का नाम कटी पतंग। ये जो मोहब्बत है और उसके बाद वो गाना दम मारो दम, हरे राम हरे कृष्णा में नहीं होता तो क्या होता, कुछ ऐसा ही होने वाला था। ये किस्सा भी आपके साथ जरूर बांटूंगा।

बेहतरीन गाने कुछ बड़े ही अनोखे किस्से आपके साथ बांटे जा रहे हैं। तो जरा चलते हैं उस दौर में जहां पर देवानंद साहब ने सोचा कि क्यों ना एक फिल्म बनाई जाए, हरे राम हरे कृष्ण। इसका संगीतकार चुने गए आरडी बर्मन और गीतकार आनंद बख्शी। अच्छा, इन लोगों ने सारे ही बड़े अच्छे गाने बनाए, पर एक गाना ऐसा था जो सामने आया तो देव साहब को लगा कि यार ये गाना फिल्म में ठीक नहीं लगे। और गाना था बख्शी साहब के सिगरेट पीने के स्टाइल पे, दम मारने के स्टाइल पे। गाना आप समझ गए, दम मारो दम। अच्छा, ये गाना बड़ा अच्छा था, लेकिन देव साहब को लगा कि भाई ये गाना जो है ना जरा ओवर पावर कर जाएगा बाकी गानों को। मतलब उसमें बात कुछ इस तरह की कही जा रही है कि भाई नशे के खिलाफ आप जाएं, और ये गाना जो है दम मारो दम कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो नशे को ग्लोरीफाई कर देगा। पर आर डी बर्मन साहब और आनंद बख्शी साहब ने कहा कि देखिए, आप तो कह रहे हैं कि दम मारो दम और मिट जाए गम, पर उसके बाद जो है वो तो कहता है कि भगवान का नाम ना बदनाम करो और इस तरह की बातें वो हीरो करता है आके, तो वो तो बात बरकरार रहेगी। नशे के तो खिलाफ आप फिल्म बना रहे हैं, ये गाना तो बस उस नशे को डिपिक्ट कर रहा है। तो देव साहब ने कहा नहीं, ये गाना मुझे ठीक नहीं लग रहा और लिहाजा ये फिल्म में नहीं होगा। अब ये गाना खत्म होने वाला था, पर आनंद बख्शी साहब और आर डी बर्मन साहब ने बड़ी जुगल लड़ाई और कहा कि भले ही 2 मिनट के लिए रखें इस गाने को, कम से कम रखें जरूर देव साहब, नहीं तो फिल्म का मजा किरकिरा हो जाएगा। और कमाल की बात यह है कि यह गाना वाकई फिल्म के सबसे मकबूल गानों में से एक गिना गया। और हाँ, फिल्म ने ये संदेश जरूर दिया कि अगर आप नशा करते हैं, दम मारते हैं, तो दम निकल जाता है साहब, रिश्ते

फिल्म की बात थी, और जब इस गाने का जिक्र किया है तो ये गाना तो जरूर हम सुनेंगे, और उसके बाद एक ऐसा गाना भी आपके सामने आएगा जिसे सुनने के बाद पब्लिक तो खुश हुई थी पर अवार्ड मिलने के बाद मन्ना डे साहब को जरा नाराजगी थी, ये कमबख्त इस गाने के लिए अवार्ड मिला मुझे, कौन सा था वो गाना, क्यों मन्ना डे साहब नाराज थे, ये दास्तां भी आपके साथ जरूर बांटी जाएगी सिर्फ सारेगामा वीकेंड क्लासिक पर।

0: मोनिका,
1: वो आ गया। देखो देखो वो आ गया।

0: मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
2: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
3: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
2: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
4: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
2: संपर्क करें 9939365923।
5: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
6: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
7: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराएं नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहां है डॉक्टर कुंदन सिंह, MBBS, MS, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
8: हमारे यहां दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
7: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
9: बड़े ही अनोखे किस्से और कुछ बेहतरीन गाने 70 की दहाई के, यानी कि 70s के जो हैं, वो आपके सामने आ रहे हैं। अभी एक ऐसा गाना आपके सामने आएगा जिसने राज कपूर साहब को जरा हिला दिया था, मतलब इस फिल्म ने हिला दिया था। फिल्म का नाम मेरा नाम जोकर, और राज कपूर साहब ने बड़ी उम्मीदों से इस फिल्म को बनाया था और म्यूजिक भी बड़ा अच्छा था, पर फिल्म उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी थी। लेकिन इस फिल्म में एक ऐसा गाना था जिसने मन्ना डे साहब को उनका बड़ा ही पॉपुलर अवार्ड जो है वो जितवाया था। वो ज़माने में वो पॉपुलर अवार्ड मिल जाए तो लोग कहते थे कि भाई कमाल हो गया। अब जब मन्ना डे साहब को इस गाने के लिए अवार्ड दिया गया तो मन्ना डे साहब ने कहा कि यार कमाल करते हैं आप लोग, मुझे अवार्ड देना था तो देते लागा चुनरी में दाग के लिए, या फिर और भी बड़े अच्छे अच्छे गाने मैंने गाए। अब ये क्या गाना है कि भाई ज़रा इधर देख, उधर देख, ऊपर देख, नीचे देख, यहाँ देख, वहाँ देख, इस गाने के लिए मुझे अवार्ड दिया गया? ये अजीब सी बात है। ए मेरे प्यारे वतन के लिए दिया जाता काबुली वाला का जो गाना था तो मैं मानता भी कि हाँ भाई कमाल कर दिया, लेकिन ये मेरा नाम जोकर के इस गाने के लिए अवार्ड दिया, तो जरा वो खिन्न हो गए थे। पर अवार्ड तो अच्छा लगता ही है साहब, और अवार्ड इस गाने के लिए मिला। इस गाने का जिक्र हुआ है तो जरा सुनते हैं मेरा नाम जोकर के इस गाने को, और उसके बाद संजीव कुमार साहब और जया बहादुरी के बीच में कुछ ऐसे रिश्ते थे जिन्हें लेकर संजीव साहब बहुत ही ज़्यादा गर्वान्वित महसूस करते थे, पर कमबख्त एक रिश्ता ऐसा था जो छूट गया। कौन सा था वो रिश्ता और कौन से थे बाकी के रिश्ते जिनकी वजह से संजीव कुमार बड़े खुश होते थे जया जी को लेकर, जया जी का नाम सुन के? ये एक बड़ी अनोखी कहानी है, बहुत जल्द आपको सुनाने वाला हूँ, सिर्फ सारेगामा वीकेंड क्लासिक पर।
10: ए भाई

सारेगामा वीकेंड क्लासिक जैसा कि नाम है, हर हफ्ते ये शो हम आप तक पहुंचाएंगे और आप अपने ईमेल आईडीज हमसे शेयर करें ताकि ये वीडियोस जो हैं वो आप तक पहुंचते रहें, आप हमसे जुड़ते रहें, हम आपसे जुड़ते रहें, पुराने गाने सुनते रहें। डू सब्सक्राइब सारेगामा ओल्ड हिंदी सॉन्ग।

0: प्रसाद क्लिनिक।
1: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
0: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंज स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज।
1: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
2: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
3: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
2: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
3: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
3: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
2: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
4: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
3: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
5: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
3: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
5: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
3: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
5: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
3: संपर्क करें 8470103992 या 9765065750।
6: बड़े ही अनोखे अनसुने किस्से आपके साथ बांट रहा हूँ और 70 के दशक के कुछ बड़े ही अनोखे गाने। अब देखिए साहब, ऐसा है कि जरा चलते हैं उस वक्त में जहाँ पे संजीव कुमार साहब बड़े खुश थे। इनके कुछ रिश्ते ऐसे थे जया बहादुरी जी के साथ जिन्हें लेकर ये फूले ना समाते, लेकिन एक रिश्ता ऐसा था जो निभा नहीं पाए। भाई क्या थे वो रिश्ते? भाई फिल्मी रिश्ते थे। अब फिल्म परिचय में जया जी जो हैं वो संजीव कुमार साहब की बेटी बनी थी, शोले में संजीव कुमार साहब की बहू बनी थी, अनामिका में प्रेमिका बनी थी और फिल्म कोशिश में पत्नी बनी थी। लेकिन साहब एक रिश्ता ऐसा था जो निभा नहीं पाया। वो मालूम क्या, संजीव कुमार अक्सर अपने इंटरव्यूज में कहते थे कि मैं कभी भी जया का बेटा नहीं बना, काश हम दोनों माँ बेटे बनते तो बड़ा मजा आता है। तो फिल्मों ने इस तरह के रिश्ते संजीव कुमार साहब और जया बच्चन जी के सामने रखे, जो कि इन दोनों ने बखूबी निभाए। बस ये मलाल रह गया कि काश जया जी माँ होती और संजीव कुमार उनके बेटे। ऐसा भी राय साहब फिल्म इंडस्ट्री में, इन बातों पे भी जरा गौर फरमाइए आप। और अभी एक गाना जो है फिल्म अनामिका से, मैं चाहता हूँ इसे हम सुने। गाना तो कहता है कि बाहों में चले आओ, और उसके बाद एक ऐसा किस्सा, मतलब राज कपूर साहब की प्रॉपर्टी वगैरह नीलाम हो गई थी, पर एक अंग्रेजी कॉमिक्स ने जो है राज कपूर साहब की जिंदगी को बचाया था। कौन से थे वो कॉमिक्स, क्या थे वो हालात, राज साहब कैसे बचे थे, ये दास्तां आपके साथ बहुत जल्दी बांटी जाएगी

0: अच्छा तो हम चलते हैं।
1: 70 की दहाई के यानी कि 70s के कुछ बड़े ही अनोखे गाने आपके साथ बांट रहा हूं, और साथ ही कुछ बड़े ही अनोखे अनसुने किस्से हमारे सुनहरे दौर के कलाकारों की जिंदगियों से जुड़े। देखिए साहब, ये तो आप और मैं दोनों ही जानते हैं कि फिल्म मेरा नाम जोकर बॉक्स ऑफिस पर वो कमाल नहीं कर पाई थी जिसकी उम्मीद की जा रही थी। बात यहां तक आई कि राज कपूर साहब का स्टूडियो वगैरह नीलाम हो गया था, प्रॉपर्टीज नीलाम हो गई थी, और कोई इनके साथ काम करने को तैयार नहीं था। मतलब लोग कहते थे कि ये आदमी जो है ये दीवाना हो गया है और ये ठीक से काम नहीं कर पाएगा, ये सारी बातें थी। लेकिन एक अंग्रेजी कॉमिक्स ने राज कपूर साहब की जिंदगी को जरा तब्दील कर दी, और मेरा नाम जोकर का जो फर्स्ट हाफ था उसने भी किया था। हुआ दरअसल यूं कि जब मेरा नाम जोकर वो काम नहीं कर पाई जिसकी उम्मीद की जा रही थी, तो राज साहब ने अपनी टीम को बुलाया और कहा कि भाई मेरा नाम जोकर की जो पहला हाफ है ना, उसको लेकर एक कहानी बन दीजिए। तो सबने कहा भाई कहानी तो है, पर इसको कैसे करेंगे, कैसे लाएंगे सामने। और तब राज साहब ने अंग्रेजी कॉमिक आर्चीज का सहारा लिया, कहा कि देखो टीनेजर्स को ये पसंद आता है, तो कुछ ऐसे एलिमेंट्स रखेंगे जो कि जो युवा पीढ़ी है उसको पसंद आए, और शर्त यह है कि एक नई लड़की होगी और मेरा बेटा चिंटू यानी कि ऋषि कपूर इस फिल्म का हीरो होगा। तो के अब्बास साहब, बीबी साठे साहब, इन लोगों ने मिलके जो है फिर वो स्क्रिप्ट जो है वो तैयार की। लक्ष्मीकांत करणलाल ने जबरदस्त संगीत दिया, आनंद बख्शी साहब ने बड़े ही अनोखे बोल लिखे, और जब ऋषि कपूर स्टार बने, टीन सेंसेशन बने, तो बहुत सारे ऐसे एक्टर्स जो अभी तक हीरो के किरदार निभाते थे, मतलब कॉलेज गोइंग हीरो के किरदार निभाते थे, उन्होंने कॉलेज वाले रोल निभाने बंद कर दिए। और इस तरह से एक अंग्रेजी कॉमिक और मेरा नाम जोकर के पहले हाफ ने राज कपूर साहब को मदद की कि भाई ये कमबैक कर सके, और क्या कमबैक किया, फिल्म का नाम तो आप समझ गए, बॉबी। अब जरा बॉबी की चाबी हो गई है साहब, जरा इन हालातों को सुनते हैं।
0: बाहर से कोई अंदर ना आ सके, अंदर से कोई बाहर।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिद्म 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: नई दिल्ली में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आज संपन्न हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर बल दिया कि ब्रिक्स की विविधता ही इसकी पहचान बनी रहे, सहयोग प्रेरणा हो और प्रगति मानवता के हित में योगदान दे। दो दिन के शिखर सम्मेलन के आखिरी दिन समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स सिर्फ देशों का समूह नहीं बल्कि समाधानों का पारिस्थितिकी तंत्र है।
1: आप सबकी मौजूदगी ब्रिक्स की बढ़ती रेलेवेंस, ओपननेस और इंक्लूसिवनेस का प्रमाण है। पिछले दो दिनों की हमारी चर्चाओं ने हमारा विश्वास और मजबूत किया है कि ब्रिक्स केवल देशों का समूह नहीं सॉल्यूशंस का एक इकोसिस्टम है।
0: श्री मोदी ने आशा प्रकट की कि शिखर सम्मेलन में अपनाया गया नई दिल्ली घोषणा पत्र साझा विजन और भविष्य के सहयोग के लिए स्पष्ट दिशा देगा।
1: हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें एडॉप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा। हमें सभी आउटकम्स को समयबद्ध एक्शन और लास्ट माइल इम्पैक्ट से जोड़ना होगा। हमारे फ्रेमवर्क फाइल से आगे बढ़कर रियल लाइफ में इम्पैक्ट पैदा करे, इसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स अब अपने तीसरे दशक में प्रवेश कर रहा है, इसलिए दुनिया अब इस समूह से सिर्फ विचारों और वादों की नहीं बल्कि ठोस परिणामों की उम्मीद करती है। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स के अगले अध्यक्ष के तौर पर चीन को शुभकामनाएं दी। इससे पहले आरंभिक भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स के भीतर विकसित समाधानों के लाभ केवल समूह तक ही सीमित नहीं होने चाहिए। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने सम्मेलन के दूसरे और आखिरी दिन ब्रिक्स सहयोगी देशों के नेताओं का स्वागत किया। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नई दिल्ली में आज संपन्न ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के कई ठोस और विकास केंद्रित परिणाम निकले। विदेश मंत्रालय में आर्थिक संबंधों के सचिव सुधाकर दलेला ने कहा कि अलग अलग विषयों पर 50 से अधिक ठोस परिणाम हासिल किए गए। उन्होंने इसे भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता की बड़ी कामयाबी बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ब्रिक्स सम्मेलन से इतर विश्व नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें की। पिछले तीन दिन में श्री मोदी ने राष्ट्राध्यक्षों और सरकार के प्रमुखों के साथ 15 बैठकें की। उन्होंने दुनिया के नेताओं और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रमुखों के साथ कई अनौपचारिक बैठकें भी की। प्रधानमंत्री मोदी ने आज कजाकिस्तान, मिस्र, इंडोनेशिया, फिलीपींस, दक्षिण अफ्रीका, बुरुंडी, नाइजीरिया और युगांडा के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। प्रधानमंत्री ने बुरुंडी के राष्ट्रपति, नाइजीरिया और युगांडा के उपराष्ट्रपति के साथ भी बैठक की। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भारतीय रत्न और आभूषण उद्योग से यह सुनिश्चित करने का आह्वान किया कि प्रयोगशाला में उत्पादित हीरों का संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र और विनिर्माण श्रृंखला पूरी तरह से भारतीय हाथों में रहे। उन्होंने आज मुंबई में 52वें भारत रत्न और आभूषण पुरस्कार समारोह में कहा कि प्रयोगशाला में उत्पादित हीरों से इसके व्यापार का स्वरूप बदल रहा है। श्री शाह ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने देश में कई बड़े परिवर्तन किए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के सहयोगी दल और कई स्वयंसेवी संगठन 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक महीने भर देश भर में सेवा संकल्प अभियान चलाएंगे। मुंबई में आज श्री शाह ने कहा कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और इस वर्ष अक्टूबर में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में उनके सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होंगे। इंडोनेशिया में खराब मौसम के कारण जावा सागर में 240 से अधिक यात्रियों को ले जा रही एक नौका उलट गई। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है। करीब 130 यात्री और चालक दल के सदस्य लापता हैं। बचाव दल में अब तक 107 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया है। तलाश और बचाव अभियान जारी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गणेश चतुर्थी के पूर्व संध्या पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि भगवान गणेश ज्ञान, समृद्धि और शुभ शुरुआत के प्रतीक हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेशमा तिवारी। The The 18th BRICS Summit concluded in New Delhi today, with Prime Minister Narendra Modi underscoring that the BRICS' diversity should remain its identity, cooperation its inspiration, and its progress should contribute to the cause of humanity. In his closing remarks on the final day of the two-day summit, the Prime Minister said BRICS is not merely a grouping of nations, but an ecosystem of solutions. He said the discussions over the past 2 days had further strengthened this conviction. Mr. Modi expressed hope that the New Delhi Declaration adopted at the summit would provide clear direction for a shared vision and future cooperation. He stressed the need to translate all outcomes into time-bound actions that deliver last-mile impact.
1: हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें एडॉप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा। हमें सभी आउटकम्स को समयबद्ध एक्शन और लास्ट माइल इंपैक्ट से जोड़ना होगा। हमारे फ्रेमवर्क फाइल से आगे बढ़कर रियल लाइफ में इंपैक्ट पैदा करे, इसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे।
2: Earlier in his opening remarks, Prime Minister Modi said special emphasis had been placed on enhancing resilience within the BRICS grouping, as pandemics, climate disasters and supply chain disruptions have shown that no crisis remains confined to one region in today's interconnected world. Prime Minister Narendra Modi held a series of high-level bilateral engagements on the sidelines of the BRICS summit in New Delhi. Over the past 3 days, Mr. Modi held 15 meetings with heads of state and government, besides several pull-aside meetings with world leaders and heads of international institutions. The meetings provided an opportunity to strengthen bilateral ties, discuss issues of mutual interest, and exchange views on regional and global developments. Union Home Minister Amit Shah has called upon the Indian gems and jewellery industry to ensure that the entire ecosystem and manufacturing chain of lab-grown diamonds remains firmly in Indian hands. Addressing the 52nd India Gems and Jewellery Awards ceremony in Mumbai, Mr. Shah said that lab-grown diamond market, in terms of volume, is expected to become nearly 50 times the size of the current diamond market, describing it as a monumental opportunity for India. In Indonesia, the death toll has risen to 6 after a ferry carrying more than 240 people overturned due to bad weather in the Java Sea today. Nearly 130 passengers and crew members remain missing. Indonesian rescuers said at least 107 people have been rescued so far, as search and rescue operations continue around the vessel's last known location. India has condemned the attack on the commercial vessel MT Al-Gaya off the coast of Oman today. In a statement, the Indian embassy in Oman said 13 Indian crew members have been rescued so far, while search and rescue operations are continuing for one missing Indian national. The embassy said it is closely monitoring the situation and coordinating with Omani authorities in the ongoing search and rescue operation. It also thanked the Omani authorities for their support in rescuing the Indian nationals. President Draupadi Murmu has extended greetings on the eve of Ganesh Chaturthi. In her message, the president said that Lord Ganesha symbolizes wisdom, prosperity, and auspicious beginnings. President Murmu prayed that Lord Ganesha brings happiness, peace, good health, and prosperity into everyone's lives. In men's cricket, India defeated Afghanistan by 7 wickets in the first T20 international of the 3-match series in Delhi tonight. Chasing a target of 157 set by Afghanistan, India scored 157 for 3 in 13.4 overs. Earlier, Afghanistan made 156 for 8 in their stipulated 20 overs. In hockey, India's men's and women's teams have clinched the Junior Asia Cup titles at Mo Chi in China today. Both the Indian men's and women's teams have also qualified for the Junior Hockey World Cup by winning their respective Asia Cup titles. And that is the end of this news bulletin.
3: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव
4: रात्रि न्यूज के बाद रेडियो रिमझिम परिवार को दीजिए इजाजत केवल रेडियो से। आप हमें ऐप पर पूरी रात सुन सकते हैं। सो अगर आपने ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है तो अभी गूगल के प्ले स्टोर में जाएं, रेडियो रिमझिम लिख के सर्च करें और हमारे ऐप को डाउनलोड कर लें। उसके बाद पूरी रात आप रेडियो रिमझिम का आनंद ले सकते हैं सिर्फ और सिर्फ ऐप पर।

0: एह उमर के उमंग में सन्हैया के रंग में अतु दूसरा के संग में जाता रहा अतने अफसोस रही कि तू हमार ना भइल
1: चुप रह हमके माफ कर दो

0: जाता नहीं जान, अपन ख्याल रखिया।
1: जा, अकेले खुश रहिया।
2: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपने भाषा की पहचान, रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: हेलो।
1: हाँ हेलो।
0: हाँ सोना।
1: हाँ कौन?
0: आवन तनी कोना।
1: अरे कौन बोल रहे हो?
0: अरे हम तार पूछू बेबी, नंबर भी डिलीट कर दियो क्या?
1: अरे नहीं नहीं
0: भाई, आवन डीजे बजाता बस तार आवाज सुनाते नहीं के।
1: बस दो मिनट रुक जाना।
0: हेलो।
1: हाँ हेलो।
0: हेलो।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: करे चक्कर में 20 गो अगुआ फेर देनी रे दादा।
1: बुलाती है मगर जाने का नहीं।
2: तू जो है आप सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो।

0: Now pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
0: Pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
2: जब फोन घंटी बजती है तो कहते हैं हेलो
3: हेलो हेलो
4: हेलो। नमस्ते नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आप सबकी दोस्त मनोरमा और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM और समय हो गया हेलो माई चॉइस कार्यक्रम का, तो समय के साथ बिल्कुल हाजिर हूं। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
5: हेलो
6: जी, नमस्ते।
5: नमस्ते जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में। धूप तो निकला हुआ है, अभी धूप का छाव
6: गाना तो
5: बहुत अच्छा
6: है जी। पौन जीत
5: जी, तो फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
6: जी जी, नमस्ते।
5: नमस्ते, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM
6: जी।

0: हेलो
1: सर मैम,
0: नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगकिंग 90.4 FM में। बता दीजिए। हेलो,
1: हाँ बोलिए मैम।
0: हाँ जी, गाना बता दीजिए।
1: ये मेहंदी का बूटे रंग अनोखे नहीं है गाना, तो हमको तुमसे प्यार है उसी में क्या है कि क्या पता गाना फिल्म में क्या है।
0: ये मेहंदी के बूटे इनके रंग अनोखे, यही वाला
1: जी मैम।
0: अच्छा जी, वैसे अपना नाम बता दीजिए।
1: मैम सुनीता देवी हजीरपुर से।
0: अच्छा जी, तो आप कैसी हैं? ठीक है ना?
1: जी मैम ठीक है, आप कैसी हैं?
0: जी मैं भी बढ़िया हूँ। बहुत देर से कॉल की है
1: मैम, पूजा करते करते करते करते समय हो गया। अब तो देखे कि सोचे का कि टाइम तो माने पूजा करके खाना खा रहे थे, तो अभी देखे कि अभी सोचे का कि ट्राई करे, अगर लग जाए तो बात हो जाएगा, नहीं तो ठीक है मैम।
0: और गाना जो बताई हूँ डेडिकेट भी करना चाहती हूँ।
1: जी मैम, आपको, भारती मैम को, सनी भैया को, और सनी मैम जो मैम है, सनी की क्या नाम है पहले थी?
0: सोनी।
1: हाँ सोनी, अब नहीं आएंगी मैम?
0: अब ये तो मुझे नहीं पता, ये तो हमारे
1: सही था। ये तो बात है, उनका मन का बात तो ही न जाने, मगर बहुत अच्छा उनका आवाज था। आप लोग का भी आवाज बहुत अच्छा है, मगर बहुत माने अच्छे से बात करती थी। अब आप लोग भी बात अच्छे से करते हैं, लोग माने घुसाइएगा नहीं,
0: मतलब हम कहा लग पाएंगे। बात आप सही बोल रही हैं।
1: ऐसा ही बात है, तब आप सब बोलिए, घर परिवार सब कोई ठीक है ना मैम?
0: जी सब कोई ठीक है।
1: चलिए मेरा भी ठीक है।
0: तो फिर प्ले करते हैं गाना आपका
1: मैम? ओ वाला तो दोनों गाना हम सुनते ही नहीं किए, गाना तो सुनते हैं छोटा वाला मोबाइल से, दिन भर सुनते हैं, 9 बजे रात को भी सुनते हैं, 9 बजे रात तक।
0: जी
1: नहीं, सही 9:30 बजे सोनू भैया आते हैं, क्या पता वो आते हैं कि रिकॉर्डिंग बजाया जाता है, मगर ये नहीं पता है कि मैंने उरा को बोलते हैं कि मैं मैसेज करने के लिए, तो मैंने मैसेज लू करते हैं तो गाना भी बजता है।
0: जी तो आप उसने फरमाइश की थी या फिर हेलो माय चॉइस की थी?
1: नहीं आपसे तो की थी।
0: तो आप सुनती हैं ना?
1: जी मैम सुनते हैं।
0: जी
1: हो सकता है मैम कि मोबाइल जब डिस्चार्ज हो जाता है ना तो चार्ज में लगा देते हैं, तो हो सकता है बजा दी होंगी।
0: जी मैं गाना सबका बजाती हूँ क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रहा है, तो गाना तो सबका बजेगा ही।
1: जी मैम मेरा नहीं ही गलती होगा।
0: चलिए कोई बात नहीं, तो सुनीता जी प्ले करते हैं गाना आपका। जी सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिंगकिंग 90.4 FM।
1: थैंक यू।

0: सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।
2: Now pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
2: Pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
4: The phone ring, they bajte hai, to kehte hai hello.
5: तो दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
6: हेलो,
7: नमस्कार मैडम जी।
6: नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
7: जय किशोर बोल रहा हूँ।
6: अच्छा जी, सुने अपना गाना?
7: हाँ जी सुने थे, बहुत बढ़िया आपने सुना। एक शिकायत है मैडम, प्रचार बहुत लंबा कर दिए आप लोग। प्रचार थोड़ा कम करिए, ज्यादा लंबा हो रहा है।
6: अच्छा,
7: आपका बहुत अच्छा प्रोग्राम चलता है, लेकिन आप हेलो फरमाइश भी चालू करिए।
6: जी जी, बहुत जल्द होगी चालू।
7: गाना सुना दीजिएगा।
6: मैं गाना आपको सुनवाऊंगी। बता दीजिए कि आप कहाँ से बोल रहे हैं?
7: हम बोल रहे हैं राजस्थान।
6: और आपका नाम?
7: जय किशोर।
6: अच्छा जय किशोर, तो क्या है आज की फरमाइश आपकी?
7: दीदी असली का गाना सुना दीजिएगा, बलमुआ आजा जल्दी आजा।
6: ओके, और डेडिकेट भी करना चाहते हैं
7: कि आपको पहले सुनने वाले सब।
6: ओके जी, फिर प्ले करते हैं गाना आपका।

0: हाँ
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
0: नमस्ते मैडम।
1: नमस्ते,
0: मुझे किस सुनना है?
1: जी सुनाएंगे, आप अपना नाम बता दीजिए पहले।
0: मेरा नाम उमा शंकर सिंह है।
1: और कहाँ से बोल रहे हैं आप?
0: मैं बोल रहा हूँ उत्तराखंड से।
1: अच्छा जी, तो क्या है आज की फरमाइश?
0: फरमाइश है ये पर्दा हटा दो, ये मुखड़ा दिखा दो।
1: और ये डेडिकेट भी करना चाहते हैं?
0: हाँ, आप सभी लोगों को डेडिकेट रहेगा, जितने लोग सुन रहे हैं सभी लोगों को डेडिकेट रहेगा, और रानी हरप्पा को भी डेडिकेट रहेगा, बाकी हमारे उत्तम सोनी है, दिलीप भाई है, कामरान भाई है, कामरान भाई सब सुनने जाए।
1: फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
0: ठीक है, ओके।
2: ये

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: Jab phone ki ghanti bajti hai to kehte hain
4: दोस्तों। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में। वालेकुम अस्सलाम। हम तो बिल्कुल बढ़िया वानी, आपन बताई। तो क्या होता
6: क्या होता
5: क्या हुई रोग से बात होता
6: हम इंतजार करती है बात कॉली आज जाए खाना न बनाए।
5: चलिए, कार्यक्रम से बहुत लगाव हो गया ना।
6: जी मैडम जी, टाइम हो जाला तो सोचे नहीं पहले बतिया ली तब कमा कर दे।
5: चलिए ठीक है, कुछ नहीं ऐसे नाम बता
6: दिया। बात करते बोलो से आदत हो गई है, बाकी काम 10 मिनट बाद हुई था कि फोन पहले।
5: बिल्कुल,
6: ऐसे भी आज थोड़ी बतिया नहीं हमको, कल 2012 से बात मैंने बोला रही है
5: ना। ना वैसे बताइए तो रोग वाले से बात करके बड़ा अच्छा लगे हमके भी।
6: जब बात हो जाए वाला से तो मानी के चला बात बन गए, फिर जितने लेट हो रहा होता है घर में चले बात हुई थी ना।
5: अच्छा चलिए ठीक, वैसे नाम बता दिया अपन।
6: रेशमा बोलते हैं पठान पट्टी से।
5: अच्छा, तो घर पर नहीं बताई, घर परिवार में सब कुछ ठीक था।
6: हाँ मैडम जी, सब कुछ ठीक, अपन कहें।
5: जी सब
6: ठीक है, सब
5: ठीक है।
6: आज के फरमाइश ये बा, हिंदी गाना सुनने के बाद ज्यादा तो याद नहीं है, बता देते नहीं समझ में आ जाते ही बजा दे। हिंदी गाना नहीं क्या, चटाना भी नहीं आता बताना भी नहीं आता।
5: कौन सा?
6: चटाना भी नहीं आता बताना भी नहीं आता, बा गाना।
5: हाँ
6: हाँ बाह बजा दी, याद नहीं किया तो याद रहा तो बता।
5: चलिए कोई बात नहीं कि ये बजा दे, मगर ना मिली तो कौन और बजा सकते नहीं।
6: हाँ ना मिल
5: जाए आप सुनवाई के भी चाहते नहीं।
6: हाँ तो रौरा सुने मैम लोग बोले वाली सुनी में साथी में सब कुछ जितना लोग सुनते सब कुछ सुनबे करे।
5: चलिए तो फिर प्ले करते हैं और गाना।
6: जी मैडम जी बजा दी।
5: जी सुनते रहे सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4। Thank you.

0: हेलो।
1: हाँ जी, बहुत स्वागत है आपका रेडियो रेंजी 90.4 FM में। जी नाम बता दीजिए अपना।
0: हमारा नाम है बधु नारायण मुनि।
1: और कहाँ से?
0: ग्राम भलू से, जिला सिवान, जामू बाजार।
1: अच्छा, तो कैसन बनी रुआ?
0: ठीक बनी। जय भवानी।
1: जय भवानी। तो बता दी आज की फरमाइश।
0: आज के फरमाइश बा तोरा मन दर्पण कहलाए। काजल फिल्म का गाना है
1: जी।
0: ये काजल फिल्म का गाना है, तोरा मन दर्पण कहलाए। ये भजन है।
1: अच्छा,
0: ये भजन है और इसको रवि साहब ने संगीत दिया है, लिखा है साहिल लुधियानवी साहब।
1: ठीक है, और गाना सुनाएंगे?
0: गाना तो सुनवाएंगे सब आपको भी और रेडियो रेंजिंग के पूरे परिवार को भी और पूरे सिवान, जहाँ तक ये हमारी आवाज जा रही है वहाँ तक सभी जितने श्रोता हैं सबको।
1: ओके जी, तो फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
0: ठीक है जी।
1: जी
0: आपका सुनने को मिलेगा
1: आज नहीं तो कल बजे।
0: ठीक है जी।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: Jab phone din de bajti hai to kehte hain hello.
4: तो दोस्तों ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: नमस्ते जी, बहुत बहुत रेडियो 90.4 FM।
6: कैसी है मैम?
5: मैं तो ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं? वैसे कहाँ से बोल रही हैं आप? और आपका नाम? कृति जी। तो कैसी हैं आप?
6: बताइए भारती मैम कैसी है?
5: भारती मैम भी अच्छी हैं।
6: आप नहीं आई हैं?
5: नहीं,
6: इनका तो नहीं चल रहा है तो ऐसा नहीं लग रहा है।
5: जी जी, वो भी बहुत जल्द चलेगा।
6: और सब बताइए?
5: और सब तो बढ़िया है, आप बताइए? खाना हो गया आपका? जी। तो क्या है आज की
6: फरमाइश?
5: कौन सा
6: बता रहे हो?
5: सुनिए से हमारा पीछे तोड़ा मारा हाथ, कहिया से

0: जी वेलकम। और ये गाना आप किसी को डेडिकेट भी करना चाहती हैं?
1: जी आपको
0: ओके तृप्ति जी, तो फिर मैं प्ले करती हूँ गाना आपका।
1: जी थैंक यू मैम।
0: जी वेलकम। सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: हेलो जी, नमस्कार मैडम जी।
1: जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
0: जी मैडम जी, मैं सुनील साहू मधुसूदन जिला गुना मध्य प्रदेश से।
1: जी क्या हाल चाल है जी आपका?
0: बस मैडम जी, दुकान पर बैठे सिलाई कर रहे हैं।
1: अच्छा, बारिश वरिश हो रहा है?
0: बारिश मारिश ने हो रहा है, पानी गया चला गया अब तो वापस।
1: अच्छा
0: जी,
1: बढ़िया। तो खाना वाना हो गया है आपका?
0: जी हो गया, दाल बाटी बनाई थी आज। आइए भोजन कर लीजिए।
1: जी जी बिल्कुल आएंगे।
0: जी कौन, भारती जी बोल रही है क्या?
1: नहीं।
0: सोनी जी?
1: नहीं।
0: मनोरमा जी?
1: हाँ जी।
0: जी तो मैडम जी, मेरी पिक्चर का नाम तो पता नहीं, लेकिन अल्ताफ राजा का गाना है, थोड़े इंतजार का मजा लीजिए।
1: थोड़े इंतजार का मजा लीजिए,
0: अल्ताफ राजा ने गाया है ये। इसके और प्यार का मजा लीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। अल्ताफ राजा का है ये।
1: जी जी बिल्कुल।
0: और ये गाना आप तीनों मैडमों को डेडिकेट रहेगा, गजराज सिंह लोधी है, गोपाल ओझा जी है, जितेन धाकड़ जी है, और जितने भी सभी रेडियो रिमझिम सुन रहे हैं उनको ये गाना डेडिकेट रहेगा सुनील साहू जी की ओर से।
1: ओके जी, तो फिर गाना प्ले करते हैं आपका।
0: कब बजेगा ये?
1: शाम को।
0: जी मैडम धन्यवाद।
1: ओके जी, तो प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: धन्यवाद।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।
1: Now pick it up, hello. Now pick your phone up, hello. Pick it up, hello. Now pick your phone up, hello.
2: जब फोन घंटे बजती है तो कहते हैं hello, hello, hello, hello, hello.
3: तो दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
4: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंग 90.4 FM में। नमस्कार जी, सब ठीक बात बताएं। गाना दो लाइन बता देती तो सही रहे। एक बार गाना क्योंकि सुनाई के लिए क्या आता है।
5: गाना तो बहुत लोग सुनने वाला सबसे नाम आज ऐसे भी लेकर
4: अपना नाम बता
5: सुनने वाला आप गाना सुन। हमारा नाम पर मतलब अभी तो संजाम में है।
4: मौसम कैसा बने की
5: मौसम है ना, बारिश की हल्का हल्का भय होने गोपालगंज में।
4: गोपालगंज में भी ठीक था, कभी धूप होता कभी छाँव होता।
5: ऐसा ही बार धूप निकले तो अच्छा होता, बारिश तो अभी नहीं सही गया।
4: चलिए तो फिर
5: आज बाजी काल
4: अपना तो कल बाजी रही दोनों दिन में जी। तो प्ले करते नहीं सुनत रही सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: हेलो नमस्ते मैडम।
1: नमस्ते जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रेंजी 90.4 FM में।
0: महाराष्ट्र हाँ गाना सुनने का
1: बता दीजिए।
0: आज का जो फिल्म है आज का जो मतलब गोरी हकरारिया गाना सुनने का।
1: कौन सा?
0: गोरी हकरारिया हरी हरी चोरिया।
1: गोरी कलैया।
0: हाँ गोरी कलैया आज का जो मतलब
1: जी। और गाना सुनवाना भी चाहते हैं
0: आप? पहले आपको सुनाएंगे, दोस्त मित्र को सुनाएंगे।
1: ओके, तो फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
0: हाँ दोस्त मित्र का ऐसा। ओके मैडम नमस्ते।
1: नमस्ते, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिंग 90.4 FM।

0: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
1: Now pick it up, pick it up. Hello? Now pick your phone up.

0: Pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
2: जब फोन घंटे बजती है तो कहते हैं हेलो
1: हेलो हेलो हेलो.
3: तो दोस्तों ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में. मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं. नंबर है 8009294911. जी हाँ, 8009294911. तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल.
4: हेलो
5: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंग 90.4 FM में. नमस्ते. जी नेहा जी, कैसी हैं?
4: अच्छा,
5: जी जी मैं तो ठीक हूँ. और नाश्ता पानी हो गया?
4: चलिए
5: बढ़िया. तो क्या है आज की फरमाइश?
4: कौन
5: बात नहीं की, अरे सोच के बता दी, 2 मिनट में.
4: मैडम जी का गाना बहुत अच्छा होता है.
5: क्या बोल रही है, एक बार और बताइए. तो
4: बोल रही हूँ आपका आवाज बहुत अच्छा होता है. दीदी मैडम जब आती है तो पहले
5: जी
4: ऐसा ही आपका आवाज आता है, इसीलिए घर पर बोलते
5: हैं. चलिए, वैसे आप भी बहुत अच्छा बात करती हैं.
4: मेरा बहुत अच्छा बन जाता है.
5: नहीं नहीं आपका भी आवाज अच्छा. तो फिर गाना याद आया आपको?
4: गाना याद सुना दीदी, साहिबा.
5: अच्छा, और गाना किसी को सुनाना भी चाहती हैं आप?
4: गाना हाफी मैडम को जितना सब सुनता है इसको, दो सब सुनता है सब उससे.
5: ओके नेहा जी, तो फिर गाना प्ले करते हैं आपका. नमस्ते. सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिंग 90.4 FM.

0: हेलो अस्सलाम वालेकुम मैम।
1: वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगटोन 90.4 एफएम में।
0: जी मैम, मैं सिकंदर से बोल रहा हूँ। मैं स्कूटर
1: कैसे हैं आप?
0: अच्छे हैं मैम, आप कैसे?
1: जी मैं भी बढ़िया हूँ।
0: बोलते हैं मैम की गाना सुने के बाद
1: बता दी,
0: तो जब मियाँ बीवी में तकरार होता है, मियाँ बाहर होता है, बीवी अंदर सोती है, यही वाला गाना सुन।
1: क्या आप गा के मुझे बता सकते हैं दो लाइन?
0: नहीं आता है मैम।
1: चलिए कोई बात नहीं, तो सुनाना भी चाहते हैं?
0: सबसे पहले आपको मैं जितने रेडियो रिंगटोन सुने सभी सुन, और एक कमरान भाई है उनको सुनाना चाहते हैं।
1: जी जी, प्ले करते हैं गाना आपका।
0: कब बजेगा मैम?
1: आज नहीं तो कल बज ही जाएगा।
0: ठीक है
1: जी, तो प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिंगटोन 90.4 एफएम।
0: अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम। जब जब

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।
2: Now pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
2: Pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
4: जब फोन की घंटी बजती है तो कहते हैं hello,
3: hello.
5: दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
6: हेलो
7: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
6: नमस्कार मैम, कैसे हैं?
7: नमस्कार, मैं ठीक हूँ, आप बताइए।
6: अभी ठीक है, आप लोग दोहा से?
7: जी, वैसे कहाँ से बोल रहे हैं आप?
6: हम बोल रहे हैं ओम साइकिल बंजारी रोड ट्यूशन के सामने, गोपालगंज से राघव जी।
7: जी, तो कैसे हैं आप?
6: बहुत बढ़िया है, आप लोग सुनाइए, आप लोग कैसे हैं?
7: जी, हम लोग भी बढ़िया है।
6: चलिए, बढ़िया के काम है
7: जी। वो नाश्ता हो गया आपका?
6: जी जी, नाश्ता हो गया है, अभी दुकान पे मैं। आपका नाश्ता हुआ है?
7: हाँ हाँ, हो गया। तो फिर क्या है
6: आपका नाम मैम?
7: जी, मेरा नाम मनोरमा।
6: मनोरमा, अच्छा, आज दूसरी बार बात हो रही है।
7: जी जी,
6: आज सॉन्ग चला दीजिएगा, नफरत की दुनिया छोड़ छोड़ के प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार।
7: क्या आप दो लाइन गा के मुझे बता सकते हैं?
6: मैम, गाना तो मैं नहीं गाता हूँ, मैं सिलाई करता हूँ।
7: चलिए कोई बात नहीं, गाना
6: कहिएगा तो थोड़ा बहुत गुनगुना देंगे।
7: जी जी, बिल्कुल।
6: नफरत की

0: बस इतना ही
1: जी। इतना अच्छा तो गा रहे हैं आप।
0: कहाँ इतना गा रहे हैं आप लोग के, आप लोग सब शो चलाते हैं तो आप लोग का अच्छा आवाज आता है।
1: नहीं नहीं आप भी बहुत अच्छा गा रहे हैं, इसीलिए तो बोले आपसे कि गा के बताते तो सही रहता।
0: उतना हम लोग का टैलेंट नहीं है गाना गाने में।
1: नहीं नहीं ऐसा कोई बात नहीं, आप बहुत अच्छा गा हैं। पर जो गाना बताए वो गाना डेडिकेट भी करना चाहते हैं?
0: पहले तो आपको और जितना रेडियो दोस्त सुन रहे हैं सभी लोगों के साथ में सुनना चाहता हूँ। और आइए आपके लिए चाय स्पेशल आया है पीने के लिए।
1: जी जी बिल्कुल आ रहे हैं, तो फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
0: थैंक यू मैम।
1: जी सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4 FM।
0: थैंक यू।

0: हेलो,
1: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो इंजन 90।
0: सलामकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम।
0: मैं अहमद अली, कारियाबाद नंबर 1 से। कैसी है मैम?
1: मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, आप बताइए।
0: हम तो अच्छे हैं। भारती मैम बोल रही हैं?
1: नहीं
0: मनोरमा मैम।
1: जी
0: योर बॉय योर चॉइस क्यों नहीं हो रहा है मैम? नहीं है क्या भारती मैम?
1: नहीं, कुछ प्रॉब्लम हो गया इसकी वजह से नहीं चल रहा है, 2 दिन बाद चलेंगे।
0: अच्छा चलिए कोई बात नहीं। आप कैसी हैं?
1: मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, आप ठीक ठाक है ना?
0: हाँ हम लोग तो अच्छा ही है। सुर चल नहीं रहा है इसीलिए दिल नहीं लग रहा है, खाली गाना दे रहा है।
1: चलिए, सो भी बहुत जल्द चलेगा।
0: हाँ ये सुर चलता है।
1: जी
0: तो आज हमको सॉन्ग सुना दीजिए दीदार मूवी से, दिन ब दिन मोहब्बत बढ़ती जाएगी।
1: क्या गा के बता सकते?
0: गा के क्या बताए मेरे सनम, बस यूं ही है ना, मोहब्बत बढ़ती जाएगी है ना, दिन ब दिन मोहब्बत बढ़ती जाएगी।
1: जी जी ये गाना आप किसी को सुनाना भी चाहते हैं?
0: हाँ सबसे पहले तो आपको
1: जी
0: और अख्तरी को और भारती मैम को, दिलीप भाई को, कमरान भाई को, राघव जी को, समीर भाई को और जो भी रेडियो रेंजन जहाँ से सुन रहे हैं सभी को, असलम भाई है, फिरोज भाई है, सभी के साथ
1: ले सकते हैं आपका।
0: थैंक यू मैम गाना सुनाने के लिए।
1: जी वेलकम, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: ओके।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: जब फोन की घंटी बजती है तो कहते हैं hello, hello, hello, hello, hello.
4: तो दोस्तों ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।

0: हेलो, हाँ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगिंग 90.4 FM में।
1: जी अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम
1: जी, मैं हाजरा बात कर रही हूँ सूरत से।
0: जी कैसी हैं आप?
1: अच्छी हूँ, अपना बताइए।
0: जी मैं भी बढ़िया हूँ।
1: सुना है
0: जी,
1: कभी शाम ढले तो मेरे दिल में आ जाना, मेरे जो पुराना वाला सॉन्ग है ना, वही वाला।
0: आप दो लाइन गा के सुनाएंगे मुझे?
1: ये गाना है ना जो कि कभी शाम ढले तो मेरे दिल में आ जाना।
0: जी जी
1: वही गाना। और दूसरा गाना गा के सुना सकते हैं?
0: ओके तो सुना दीजिए

0: बस मैम जी आपको बहुत अच्छा गा रही हैं जी। थैंक यू मैम। सुनवाना चाहती हूँ आपको, अपने हस्बैंड जी को और ऑल फ्रेंड्स जितने सुनने रहे हैं उन सभी को।
1: ओके जी, तो फिर प्ले करती हूँ गाना आपका।
0: जी मैम
1: जी, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिंगजिम 90.4 FM।

0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंग 90.4 FM में।
1: नमस्ते
0: जी। जी क्या हाल चाल बा?
1: हाल चाल तनी गड़बड़ा
0: जी। आवाज कट के आवत है?
1: हां रुको के कट जाता है नीचे भाग जाता है और वो तो
0: कहतनी कट
1: जाना सुना दी
0: बता दी एक बार और बता दी
1: मेरे अंदर तुम्हारा काम है बदनाम है।
0: जी और ये गाना सुनवाए के भी चाहते नहीं तो फिर प्ले करते हैं जब गाना।
1: नमस्ते
0: नमस्ते सुनत रहे सबके साथ रेडियो रिंग 90.4 FM।

0: Now pick it up,
1: hello.
0: Now pick your phone up,
1: hello.
0: Pick it up,
1: hello.
0: Now pick your phone up,
1: hello.
2: जब फोन की घंटी बजती है तो कहते हैं हेलो
3: हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो
2: भागे भागे फिरते हैं।
4: तो श्रोताओं, अभी आप हेलो माई चॉइस सुन रहे थे और अब समय हो चुका है शो को समाप्त करने का। तो यदि आप चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना तो आप भी जुड़ सकते हैं। नंबर है 8029494 पर कॉल करके। तो अब हमें दीजिए जाने की इजाजत और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM। नमस्कार।
5: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
6: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
5: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से। आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो, रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

रंगत है, खुशबू है, नगमा है, जादू है।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: हम हैं इस पल।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: हर का गौरव सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिद्म 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: कर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।